मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 भाद्रपद माह की दूसरी तिथि तदनुसार 24 अगस्त 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे।

0: इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरु में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देश भर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री, पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शिव की भक्ति में क्या चाहिए? सिर्फ विश्वास, आपका और प्रभु का सच्चा मन और सरल स्वभाव, यही तो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है।

शिव की महिमा अनंत है, अपरंपार है, शब्दों से परे है, और इन्हें शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है।

बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले, सच्चे मन और भाव को जानने वाले ईश्वर शिव की महिमा अपरंपार है।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, और हम बात कर रहे हैं शिव की महिमा का। शिव की महिमा का कोई भेद नहीं, राजा हो या रंक, देवता हो या असुर, सभी उनकी शरण में आते हैं और वो उनका उद्धार करते हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में सुनिए राजा राम मोहन राय के विचार।
1: राजा राम मोहन राय का जन्म 12 मई 1772 को बंगाल के राधानगर स्थान में हुआ था। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनके विचार बहुत उदार हो गए थे। उन्होंने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना की। ये धर्म ब्रह्म समाज नाम से प्रचलित हुआ। इसमें उन्होंने एक ईश्वर की मान्यता पर जोर दिया। किसी भी तरह के अंधविश्वास, जादू टोना या कुप्रथा को इसमें स्थान नहीं था। उपनिषदों को उन्होंने अपने धर्म का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज में फैली तमाम कुरीतियों को जड़ से मिटा डालने का संकल्प किया था। 5-6 साल की छोटी उम्र में ही उन दिनों बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे। बाल विवाह की इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने जनता का आह्वान किया। जनता से ये अपील की कि वे खुद इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन जनता तो मानो गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे उठाने के लिए भारी धमाकों की जरूरत थी। पति के मरने के बाद सती विधवा नारी को उन दिनों जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। राम मोहन राय ने इस समस्या के

0: पहलू का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि इस कुप्रथा को जारी रखने में घर के मुखियाओं का भी पूरा हाथ होता है। पति के मरने के बाद विधवा औरत के भरण पोषण का पूरा भार उन पर आ पड़ता है। इस भार से बच जाने के लिए वे उस कुप्रथा को जारी रखना ही ज्यादा पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद समाज में विधवा स्त्रियों का घोर अनादर किया जाता है। उनके सिर के बाल कटवा दिए जाते हैं, उन्हें कोई भी गहना पहनने नहीं दिया जाता। सफेद किनारी वाली धोती के अलावा कोई रंगीन कपड़ा वे नहीं पहन सकती। लोग उनकी छाया से छू जाने में भी पाप समझते हैं। राममोहन रॉय ने इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए उन्होंने दो तरह के अभियान चलाए। एक अभियान अंग्रेज सरकार द्वारा कानून बनवाने का और दूसरा जनता में इसके खिलाफ वातावरण तैयार करने का। वे ये जानते थे कि आज का सभ्य और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बर्बर कुप्रथा का कभी समर्थन नहीं कर सकता था। उनका विश्वास था कि यदि स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और उन्हें अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दी जाए तो वे भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सकती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए वे प्राचीन भारत की लीलावती, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों का उदाहरण दिया करते। इन नारियों ने अपनी विद्वत्ता से सारे भारतवर्ष का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया था। स्त्रियों को अपने पिता की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था। राममोहन राय ने स्त्रियों के सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए उन्हें संपत्ति पाने का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। विधवा विवाह में भी वे कोई दोष न मानते थे। यदि एक पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है तो स्त्री ऐसा क्यों नहीं कर सकती? इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं पर ध्यान दिया।
1: राजा राममोहन राय के विचार अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम में। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे धान की फसल में कीट नियंत्रण। डॉक्टर निशी सेवक से सुरेश कुमार की बातचीत।

0: खरीफ के फसल में धान की फसल का बड़ा महत्व है। तो अपने किसान भैया बहनी हरिन अपने धान की खेती में तरह तरह के रोग कीट पतंगा लग जाए से तरह तरह की समस्याएं आ जाती। तो आज अपने कार्यक्रम के बीच में बहनी डॉक्टर निशी सेवक आयन हैं और जौन अपन खेती किसानी के विशेषज्ञ हैं। तो अपने कार्यक्रम में हम पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और हम आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि धान के फसल में जो प्रमुख कीट हैं इनके रोकथाम बदे हमार किसान भैया बहनी हरिन कौन उपचार करें ताकि उनका ई समस्या से निजात मिल सके, बताओ
1: जी। धान की फसल बहुत ही प्रमुख फसल है और इसमें बहुत सारे कीट लगते हैं
0: जी,
1: तो इनके बारे में हम जानेंगे आज। और मेरी सबसे पहले आग्रह है किसान भाइयों से कि जब भी हम कीटों का निरीक्षण करते हैं और उनके ऊपर कोई भी रासायनिक प्रयोग करते हैं तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनका कीटों का क्षति स्तर क्या है।
0: जी
1: कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो कीट देखा और नियंत्रण करना और छिड़काव करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम इसको देखेंगे कि हर कीट का क्या क्षति स्तर है और अगर वो आपको दिख रहा है तभी आप छिड़काव को प्रारंभ करें। तो मैं आपको कीट बताती हूँ। ये है धान का तना छेदक, ये बहुत ही प्रमुख कीट है, इसको स्टेम बोरर भी कहते हैं और ये छोटी

0: तितली होती है और इसका जो सूड़ी है वो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है और ये तनों में घुसकर डेड हार्ट कर देते हैं, पेड़ को डेड हार्ट बना देते हैं, मतलब सूखी कलियां हो जाती हैं पेड़ की
1: जी।
0: तो अगर आपको इसका क्षति स्तर दिखाई देता है, जैसे 10% डेड हार्ट सूखी कलियां अगर आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप इनमें छिड़काव शुरू कर सकते हैं। छिड़काव अच्छा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कार्बोफ्यूरॉन 3G 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रोपाई के 10 से 15 दिन बाद आप इसको शुरू करें।
1: अच्छा,
0: दूसरी बात एक और मैं बताऊंगी कि एकीकृत जो है आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके तहत एकीकृत कीट प्रबंधन जिसको कहते हैं IPM, और ये बहुत ही आवश्यक है आजकल। इसमें हम सारे विकल्पों को लेकर चलते हैं और इसमें हम प्राकृतिक शत्रु का भी उपयोग करते हैं इन कीटों को संभालने के लिए और इनको नियंत्रित करने के लिए। तो जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत ही खास ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम कार्ड्स का किसान भाई सब जानते हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए इसके लिए, धान के तने छेदक के लिए। ये 50,000 परजीवी प्रति एकड़ 10 से 12 दिन के अंतर पर इसको छोड़ना चाहिए।
1: अच्छा,
0: दूसरा मैं आपको बताती हूँ जो कीट है, इसमें पत्ती लपेटक, इसको लीफ फोल्डर भी कहते हैं, ये पत्तियों को मोड़कर अंदर से खा जाता है उनको
1: जी।
0: तो इसके इस्तेमाल के लिए आप देखिए, जैसे नीम तेल 1500 PPM 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ की छिड़काव पे करें।
1: हाँ।
0: और दूसरा आपको हम बताएं, अगर आपको रासायनिक प्रयोग करना है तो क्लोरपाइरीफॉस है 20 EC, ये 1.25 लीटर प्रति 500 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर पे आप इसका इस्तेमाल करें। और इसका मैं आपको क्षति स्तर बता देती हूँ, ये है प्रति पौधा एक पत्ता अगर आपको मुड़ा हुआ दिखाई देता है तो आप इस पे रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नीम तेल और ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपको दिखाई देता होगा लेडी बर्ड बीटल दिखाई देती है पेड़ों में, मकड़ियाँ दिखाई देती हैं, ये सब भी इन कीटों को प्राकृतिक रूप से खाती हैं।
1: हाँ।
0: और तीसरा कीट मैं आपको बताती हूँ, ये है भूरा धान फुदका, इसको फुदका कहते हैं, बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं और ये रस चूस लेते हैं सारा पत्तियों से और पत्तियां जलकर सूख जाती हैं, बिल्कुल सूख जाती हैं और फलियां नहीं लगती हैं। और आप देखेंगे कि इसका जो क्षति स्तर है मैं आपको बताना चाहूंगी, प्रारंभिक अवस्था में 10 कीट प्रति पौधा, बाद की अवस्था में अगर आप देखते हैं पेड़ की बाद की अवस्था में तो 20 कीट प्रति पौधा या 1 से 2 कीट प्रति तना आपको दिखाई देता है बाद की अवस्था में, तो आप इसके ऊपर रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रसायन में आप पाइमेट्रोजिन 50WG 120 से 130 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इस पर छिड़काव करें। दूसरा, आप जैविक विकल्प की ओर अगर जाते हैं तो आप बेवेरिया बैसियाना, सारे किसान भाई इसको जानते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं
1: जी,
0: 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका आप प्रयोग करें।
1: अच्छा,
0: उसी प्रकार से जैसे ये भूरा धान का फुदका है, हरा धान का फुदका भी आपको मिलेगा, वो भी बहुत इसी प्रकार की क्षति को वो पहुंचाता है
1: जी।
0: और मैं आपको बताऊं एक और कीट है जो है गंधी बग।
1: हाँ।
0: गंधी कीट जो है उसको गंधी बग कहते हैं, गंधी कीट कहते हैं, और जब आप देखेंगे इसका प्रकोप खेत में ज्यादा हो गया है तो एक अलग सी बदबू आती है
1: जी
0: खेतों में, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ये गंधी कीट है। और इसका जो क्षति स्तर है वो आप देखेंगे दूधिया अवस्था में, ये सबसे ज्यादा आता है दूधिया अवस्था में, 1 कीड़ा प्रति पौधा ही क्षति पहुंचाता है।
1: अच्छा,
0: तो
1: अच्छा।
0: उसी टाइम पे आपको ये रसायन इस्तेमाल आप कर सकते हैं
1: जी,
0: जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बरिल, इसके लिए
1: 50 WP
0: 1.25 किलो प्रति 500 लीटर पानी प्रति एकड़, फूल आने से पहले ही आप इसका इस्तेमाल करें
1: जी।
0: दूसरा, नीम बीज करंज तेल स्प्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: नीम के जितने भी आप, जैसे नीम तेल है, नीम के बनाए हुए जितने भी आप देखते हैं रसायन है, वो सब इस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं
1: जी,
0: फूल आने के पहले से। एक और आपको मैं बताऊं जो बहुत ही मुख्य कीट है, थ्रिप्स, पत्ती फोल्डर और थ्रिप्स बहुत मुख्य है, ये सब पत्तियों को चूसते हैं, उनको बेरंग कर देते हैं, पत्तों को और पूरे पेड़ों को चूस लेते हैं, और इनकी पहचान ये है कि पत्तियों पर सिल्वर धब्बे आपको दिखाई देंगे।
1: अच्छा।
0: और पत्ते पीले पड़ जाते हैं इसमें
1: जी।
0: तो इसके लिए आप शुरुआत से ही नीम तेल 2% 2 से 2.5 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप इस पर छिड़काव करें। और इसकी पहचान ये है कि अगर 6 कीट प्रति पौधा दिखाई देने लगे तो क्षति स्तर की यही पहचान है।
1: अच्छा,
0: आप इसको जो है अपना रसायन का प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: एक और मैं

0: आपको बताती हूँ। केसवर्म जो है वो क्या करता है कि वो पत्तों को कतर कर पानी में उसके केस बना लेता है, गोल करके रहता है और पानी पे ये तैरते हैं। तो इसका जो क्षति स्तर है वो एक लार्वा प्रति पौधा, आप समझ लीजिए एक लार्वा प्रति पौधा आपको दिखाई दे तो आप इसके ऊपर छिड़काव शुरू करें। और पहले से ही आप नीम तेल 1500 ppm 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से आप इस पे छिड़काव कर सकते हैं। और अगर रासायनिक की तरफ जाना है स्पिनोसैट 45 SC 60 ml प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव करें।
1: अच्छा
0: देखिए जैसा कि मैंने बात करी कि एकीकृत मैनेजमेंट के लिए कीट प्रबंधन के लिए ये बहुत आजकल जरूरी है कि सारे उपायों को हमें साथ में लेकर चलना है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे सांस्कृतिक उपाय कल्चरल जिसको कहते हैं, इसमें खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, फसल अवशेष को जला देना चाहिए, रोपाई से पहले पौधों की पत्तियों की टिप को काट देना चाहिए जिसको क्लिपिंग कहते हैं
1: जी,
0: और खेत खरपतवार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए। जल प्रबंधन, जैसे कि अगर फुदका प्लांट हॉपर अगर लगता है उसका प्रकोप आपको दिखता है तो उसके प्रकोप पर 3 से 4 दिन खेत से पानी निकालना चाहिए
1: जी।
0: और जैविक उपाय बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाना चाहिए, जैसे नीम आधारित कीटनाशक का नियमित उपयोग करें पेड़ों पर। ये हमारे तो और प्राकृतिक शत्रु हैं उनको ये क्षति नहीं पहुंचाते हैं और जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको ये जरूर वो करते हैं।
1: अच्छा।
0: रासायनिक उपाय जो हैं वो आप तभी प्रयोग करें जब जरूरत पड़े, जैसे थ्रेशोल्ड लेवल जो मैंने आपको क्षति स्तर बताया, जब कीटों का क्षति स्तर पहुंच जाए तभी आप रासायनिक उपायों का प्रयोग करें।
1: अच्छा, तो बहने आप हमारे कार्यक्रम में आयन और धान की फसल में जो प्रमुख कीट हैं उनके नियंत्रण और रासायनिक खाद साथ साथ एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में जो उन फरियाए की जानकारी दीन, ये जानकारी दे खातिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर निशि सेवक से सुरेश कुमार की बातचीत। विषय था धान की फसल में कीट नियंत्रण। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अशोक कुमार को। विषय है अवसाद कारण लक्षण और उपचार।
1: अवसाद एक समान मानसिक बीमारी है जिसका समय से इलाज न होने पर गंभीर रूप ले सकती है, जो कि नकारात्मक सोच एवं अधिक तनाव के कारण होती है, जिसका असर व्यक्ति की कार्य क्षमता पर भी पड़ता है। अगर किसी को एक बार अवसाद हो जाता है तो इसकी पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। ये महिलाओं में 8-12% होता है और पुरुषों में 20-25% होता है। अवसाद से ग्रस्त लोग विशेष रूप से उदास, चिंतित या अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। इस तरह के लोग खुदकुशी करने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से नींद की कमी या अधिकता, थकान और चेहरे की अभिव्यक्ति की कमी, दर्द या पाचन समस्या के लक्षण हो सकते हैं। व्यवहार में बदलाव जैसे चिड़चिड़ापन रहना, बेचैनी महसूस होना, सामाजिक गतिविधियों में मन न लगना, एकांत रहना, गुस्सा करना, अधिक रोना और अपराध बोध इत्यादि बदलाव आने लगते हैं। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति ज़्यादातर निराशा की बातें करते रहते हैं। वो खाली खाली सा महसूस करते हैं। भ्रम, असंतोष जैसे विचार मन में आ जाते हैं। किसी भी बात के लिए अपने आप को अपराधी समझना, इस तरह की अनेक नकारात्मक सोच मन में आने लगती है। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा सिर दर्द की शिकायत करते हैं।

0: भूख कम लगती है या भूख ज़्यादा लगती है, जिससे वजन कम या ज़्यादा हो सकता है, पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। अवसाद किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है, यह एक मस्तिष्क विकार है। मस्तिष्क के कई तरह के रसायन काम करते हैं, इसके बदलाव के कारण हार्मोन्स में परिवर्तन होने से अवसाद हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को लगातार दर्दनाक घटनाएं, हिंसा, उपेक्षा, गरीबी, दुर्व्यवहार आदि से भी अवसाद हो सकता है। तनाव या उसके लक्षणों को कम करने में खुद की मानसिक मजबूती बहुत आवश्यक है। जीवन शैली में बदलाव करके इसके लक्षणों को रोका जा सकता है। नियमित व्यायाम से सकारात्मक भावनाएं एवं सोच पैदा होती है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना भी, किसी भी तरह के नशे से दूर रहना और स्वस्थ भोजन करने से अवसाद की समस्या से दूर हो सकते हैं। अवसाद का सबसे बड़ा समाधान यह है कि अब इस बीमारी से बचाव संभव है। जैसे ही आपको अगर कोई परेशानी लगे तो सबसे पहले मनोचिकित्सक से अपने आप को अवश्य दिखाएं। अवसाद के लक्षण पता करने के लिए कुछ जांच कराना पड़ता है, जिसमें वायरल संक्रमण या थायराइड की जांच होती है, जिससे शारीरिक कारण के होने का पता चलता है। मनोचिकित्सक द्वारा मनोवैज्ञानिक कारणों का पता लगाने के लिए मानसिक स्तर की जांच की जाती है। अवसाद की समस्या से रोगी के लक्षणों के आधार पर मनोचिकित्सक के द्वारा दो प्रकार की थेरेपी को अपनाया जाता है। CBT संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। CBT लोगों के सोच और व्यवहार की नकारात्मक शैली को बदलने में मदद करता है। IPT पारस्परिक उपचार थेरेपी उन लोगों को जो परेशान होकर व्यक्तिगत रिश्तों के माध्यम से अवसाद में चले गए हैं, वैसे लोगों को समझाने में मदद करता है। अवसाद ग्रस्त व्यक्ति के व्यवहार में आए बदलावों को लेकर परिवार के सदस्यों को उसका समर्थन करना चाहिए। और एंटी डिप्रेसेंट दवा से भी इस बीमारी का इलाज होता है। एंटी डिप्रेसेंट दवा का पर्याप्त मात्रा में सेवन एंटी डिप्रेसेंट दवा का सेवन बिना मनोवैज्ञानिक की सलाह से ना लें। अवसाद के लक्षण आने पर तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करें।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार को। विषय था अवसाद कारण लक्षण और उपचार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद 7 बजे सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 7:30 पर सुनिए कमल कुमार का बांसुरी वादन, 12:15 पर पीसीआर व्यास का ख्याल गायन और 10:30 पर मधुसूदन भावे का ख्याल गायन। 8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज।

10:05 पर सुनिए वॉइस ऑफ प्रयागराज। लोकगीत का कार्यक्रम सुनेगा 10:30 पर। दिन में 11 बजे होगा एक ही कलाकार कार्यक्रम। 12:30 पर श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। 1:15 पर सुनिएगा गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में निखार के साथ रूपक।

2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा एनसीईआरटी का उमंग। शाम 5 बजे नन्ही दुनिया कार्यक्रम सुनेगा। 5:15 पर योजन सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम युवाड़ी। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में शिवलाल गुप्ता के गाए लोकगीत के साथ सुनिए नागेंद्र मणि मिश्र का लोकभाषा कविता पाठ।

सात बजकर 31 मिनट पर हिंदी कार्यक्रम में सुनिए सूर्य नारायण की वार्ता सुनिए दलित साहित्यकार और प्रतिरोध के स्वर। 8:30 मिनट पर विज्ञान जगत कार्यक्रम होगा, गजलों पर आधारित कार्यक्रम सुनेगा कहकशा। रात 9:30 मिनट पर ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: मीडियम वेव 202.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निज क्षेत्रम् अंतरिक्षानुसंधान क्षेत्रे प्रवर्तितुं प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विक वातावरणस्य निर्माणं भवेत् तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अंतरिक्ष क्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
2: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य विंशति नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्ष दिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमंत्री अंतरिक्ष क्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्यय सम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अंतरिक्ष क्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्ष

शितुं समर्थं सुदृढं अंतरिक्ष क्षेत्रीयं परितंत्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः रूस देशस्य द्विदिवसीयायै आधिकारिक यात्रायै मॉस्को नगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेश मंत्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूस

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिक्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

रामचरितमानस में अभी आप सुन रहे थे, संगीत सतीश भाटिया का था और आज आपने सुना इसका 38वां भाग। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। सबसे पहली रचना हमने ली है केदारनाथ फिल्म से, आवाज अमित त्रिवेदी का, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अमित त्रिवेदी का।

आप सुन रहे हैं फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में शिवाय फिल्म से आवाज मिथुन, मोहित चौहान की, बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत मिथुन का।

काम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आंख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर

0: के भीतर बसा शिवाय।
1: ही शिवा तुझ में।
2: शिवाय फिल्म के इस खूबसूरत भजन के साथ ही फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का किया आग्रह। कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में व्यक्त किया अपना विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 4 कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। कहा, सरकार ने सुनिश्चित की है रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर। बाढ़ प्रभावित प्रदेश के 19 जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और इस क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तराशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। उन्होंने इस क्षेत्र में युवाओं के काम की सराहना भी की। प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले करीब 354,000 रसोइयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा अब उन्हें हर साल 5,00,000 रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। लखनऊ में कल आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।
4: हम प्रदेश भर की 353,000 से अधिक रसोइयों

0: कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर आए हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोईया के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की, तीसरा प्रत्येक रसोईया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना, और चौथा आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1000 रुपए करने के लिए हम एकत्र हुए हैं।
1: स्वाधीनता संग्राम सेनानी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी के 91वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के झंडे वाला पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री योगी ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की यादों को जीवित रखने के लिए प्रदेश सरकार स्मारकों के निर्माण का काम जारी रखेगी।
2: राज्य सरकार उन सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों अमर बलिदानियों की स्मृतियों के लिए उनके स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरंतरता देगी। उन सभी महापुरुषों की मूर्तियों पे छाजन लगाने, पार्क को नव निर्माण करने, उन्हें सुरक्षित करवाने के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
1: जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 15 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने कल काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, यामानाशी प्रांत और जापान के बीच संबंधों को लंबे समय तक और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल ग्रीन हाइड्रोजन सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश और यामानाशी प्रांत के विकास को बढ़ावा देना है। इससे पहले जापानी मेहमानों का मंदिर पहुंचने पर रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ आ रहा है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल युवाओं और मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उनसे संवाद करेगा, साथ ही बीएलओ से उनके अनुभव और सुझाव साझा करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ है। सावन के आखिरी सोमवार पर आज की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर मुरादाबाद अमरोहा के ब्रजघाट तक करीब 60 किलोमीटर सड़क को आज तक के लिए 0 ट्रैफिक कर दिया गया है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि वहां हाईवे पर 106 स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं।
3: सावन के आखिरी सोमवार के परिपेक्ष में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। सारे जो भारी वाहन है वो ऑलरेडी डायवर्ट कर दिए गए हैं। रास्ते को एक तरफ कर दिया गया है, जहां पर एक तरफ कावड़ चल रही है, दूसरे तरफ पर जो हल्के वाहन है वो अभी के लिए चल रहे हैं।
1: वाराणसी में वाहनों की आवाजाही से भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने रूट कंट्रोल लागू किया है। आगामी 26 अगस्त को मिलाद उन नबी मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले जलसों और जुलूस के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लोगों से सेंटर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
4: इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फरंगी महल लखनऊ की जानिब से रबी अव्वल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि मुसलमानों से अपील की गई है कि 12 रबी अव्वल यानी मिलादुन नबी 26 अगस्त को है। ये मौका वो है उस दिन बड़े पैमाने पर जलसे होते हैं और 12 रबी अव्वल को जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस में इस बात का ख्याल रखें कि जो रास्ते मुकर्रर किए गए हैं उन्हीं रास्तों से जुलूस निकालें और जुलूस में कोई भी ऐसा नारा ना लगाएं जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हों। इसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो रूट मुकर्रर किया गया है उसी पर सिर्फ जुलूस निकाला जाए।
1: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिषद के मुताबिक वर्तमान समय में

0: फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये पिछले वर्ष से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 सहित मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा है कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इस इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों में 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान भी जताया है। उधर बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। संत कबीरनगर जिले में घाघरा और सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से धनघटा क्षेत्र के करीब 18 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का किया आग्रह। कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में व्यक्त किया अपना विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के परिषदीय स्कूलों में काम करने वाले रसोइयों के लिए 4 कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। कहा, सरकार ने सुनिश्चित की है रसोइयों के लिए सामाजिक सुरक्षा। सावन के आखिरी सोमवार पर आज सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम सहित प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर, बाढ़ प्रभावित प्रदेश के 19 जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए कमल कुमार का बांसुरी वादन राग बैरागी भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पूरन कुमार।

भैरव। इनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पूरन कुमार मिश्रा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए आकाशवाणी वाद्य वृंद रचना।

0: आप सुन रहे थे वाद्य वृंद रचना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भी कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। ये प्रतिनिधि विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार,

0: सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से इस फोरम का आयोजन हो रहा है। नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आएंगे और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक और नीति संबंधी रास्ते तलाशेंगे। इस फोरम को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला भी संबोधित करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से बुधवार तक कर्नाटक के मैसूरु में आदिवासी भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन आदिवासी भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और रसद संबंधी कई सेवाओं को कवर करेगा। इससे पहले प्रवक्ता मोहसिन रेजाई ने कहा था कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य मौजूदा टकराव का केंद्र बिंदु बना हुआ है। ईरान का कहना है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग बंद है और अनधिकृत टैंकर यातायात के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भारत के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित करना विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रशांत सिन्हा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने कल अपने 11वें संडे बर्ड वॉक के साथ ट्री वॉक एट एनजेडपी का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया। ये कार्यक्रम चिड़ियाघर की चल रही नागरिक विज्ञान पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जैव विविधता के प्रलेखन, निगरानी और संरक्षण जागरूकता में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रकृति प्रेमियों, छात्रों, वन्यजीव फोटोग्राफरों, जैव विविधता शोधकर्ताओं, इंटर्न और स्वयंसेवकों के साथ प्रकृति और संरक्षण में रुचि रखने वाले नागरिकों ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। नीलसन आईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत में 2036 तक 10 करोड़ 80 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में ये संख्या 10 करोड़ 30 लाख है। रिपोर्ट में प्रतिदिन $90 से अधिक खर्च करने वाले लोगों को धनी उपभोक्ताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। 2026 में भारत में लगभग 2 करोड़ 60 लाख धनी उपभोक्ता होने का अनुमान है। अगले दशक में इनकी संख्या में 8 करोड़ 20 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में बढ़ती आबादी और मध्यम वर्ग के आधार पर भारत को मात्रा वृद्धि वाला बाजार बताया गया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, रायसेन समेत 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भोपाल समेत

0: देश के कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाम दिल्ली से रीवा पहुंचकर अतिवृष्टि और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और राहत शिविरों में जरूरी इंतजाम के निर्देश दिए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सच्ची खुशी करुणा, आत्मसम्मान और संतोष से मिलती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत का सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना समाज में सहयोग और सद्भाव के बंधन को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि करुणा आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, जबकि संतोष इच्छाओं की पूर्ति की ओर ले जाता है। महाराष्ट्र में आज सुबह अमरावती जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई में आग लगने की घटना में 3 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इकाई में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार शिशुओं सहित लगभग 50 से 60 शिशुओं का इलाज चल रहा था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से पूरी होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। 4 जुलाई को शुरू हुई इस यात्रा में 10 जत्थों में कुल 477 तीर्थयात्रियों ने कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन किए। और अब खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत आज कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 300 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। इस पारी में देवदत्त पड्डीकल का लगातार दूसरा टेस्ट शतक और कप्तान शुभमन गिल का अर्धशतक शामिल है। श्रीलंका के असिथा फर्नांडो ने 3 विकेट लिए। भारत 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। बात शतरंज की। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनिजा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। हंगरी के नागी कनिजा में आयोजित टूर्नामेंट 9वें और अंतिम दौर में प्रणेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए जर्मनी के वादिम पेट्रोवस्की को हराया। तमिलनाडु के कराईकुडी के इस खिलाड़ी ने इजराइल के और ब्रॉनस्टीन, यूक्रेन के आंद्रेई वोलोकितिन और भारत के कार्तिक वेंकटरमन के साथ बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर खिताब जीता। हंगरी में भारतीय दूतावास ने प्रणेश को खिताब जीतने पर बधाई दी। हॉकी की बात करें तो भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम दौर में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ऑस्ट्रेलिया ने अधिक गोल के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत पूल ई में तीसरे स्थान पर रहा। अब भारतीय टीम गुरुवार को वैगनर हॉकी स्टेडियम में 5वें स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि टीम भारत इंग्लैंड पुरुष मिश्रित दिव्यांगता T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज 2026 के लिए इंग्लैंड दौरे से लौट आई है। श्री शाह ने कहा कि देश के लिए गौरव हासिल करने के लिए टीम के प्रयास और दृढ़ संकल्प भारत के युवाओं को प्रेरित करते हैं। पवित्र श्रावण मास की अंतिम सोमवारी के पावन अवसर पर आज पूरा झारखंड शिव भक्ति के अनूठे रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: हर हर महादेव।
4: देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे लाखों कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तड़के मंदिर के कपाट खुलते ही पारंपरिक सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण शुरू हुआ। अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, AI आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: हर हर महादेव।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। स्टार्टअप्स प्रमुखों से प्रधानमंत्री की अपील जनसत्ता में है, अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐसा माहौल बनाए कि दुनिया निवेश के लिए प्रेरित हो। वहीं अमर उजाला ने इसरो प्रमुख के हवाले से लिखा है, 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में चरणबद्ध तरीके से होगा स्थापित, रक्षा में अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान पंजाब केसरी में है। पश्चिम बंगाल में 5 रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर कहा, भारत में वैश्विक पोत निर्माण का केंद्र बनने की क्षमता। अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर लोक सत्य का कहना है, पड़ोसियों पर भारत की नजर, आउटरीच सत्र के लिए नेपाल और बांग्लादेश को मिला न्योता, दोनों पड़ोसियों के साथ नई शुरुआत का बन सकता है अवसर। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय

0: चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का राहत भरा बयान दैनिक भास्कर में है। देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। मोबाइल सिम पर आज से नए नियम, एक नाम पर 9 से ज्यादा कनेक्शन नहीं होंगे। नवभारत टाइम्स लिखता है, यूजर की पहचान का सत्यापन अब होगा जरूरी। सरकार ने पहचान का नया बायोमेट्रिक लॉक लगाया।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में कनिजा ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M wins Kenitza Open title in Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
3: दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेकथ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the two-day 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. More from our correspondent.
4: The two-day conference will be held in hybrid format, combining physical and virtual modes. Over 850 officers from various security forces and police forces from across the country will deliberate on various contemporary matters and challenges to national security during the conference. This annual strategic forum enables coordination among intelligence, paramilitary and police leadership on internal security, border management and emerging threats. During the DGP-IGP conference,

0: to surpass China in affluent consumers by 2036. And finally, the Indian Express cites railways roll out waterless urinals for pilots of India's most powerful locomotives. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls upon country's space sector to create an ecosystem that attracts global space talent to India. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. Iran decides to impose service fees on vessels transiting Strait of Hormuz. IMD issues orange alert for heavy rain in Chhattisgarh, Bihar, Odisha and East Madhya Pradesh today. And in chess, India's Grandmaster Pranesh M. wins Kenitza Open title in Hungary. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के खलाई शोबे से एक इको निजाम तश्कील देने की अपील की है, जिससे दुनिया भर से बासलाहियत और होनहार अफराद भारत की तरफ रागिब हो सकेंगे। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज मॉस्को में तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में तआवुन से मुतालिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस आयद करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर प्रनेश एम ने हंगरी में कंजिसा ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे के स्टार्टअप पर जोर दिया है कि वो अपनी कोशिशों में इस्तेकलाल को बरकरार रखें और खलाई शोबे का एक मजबूत इको निज़ाम तश्कील दें, जो दुनिया भर से बासलाहियत अफराद को अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखता हो। जनाब मोदी ने ये बात हाल ही में 20 खलाई स्टार्टअप्स के CEOs और बानी अफराद के साथ बातचीत के दौरान कही। बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने खलाई तहकीक के निजी शोबे पर जोर दिया कि वो जिद्द तराजी की एक आलमी शनाख्त कायम करे, ताकि दुनिया भर के लोगों को ये महसूस हो कि अगर वो खलाई शोबे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें भारत आना चाहिए।
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि लागत के लिहाज से भारत इंतहाई मुसाबकती मुल्क है और यहाँ खतरा मोल लेने की मजबूत सलाहियत रखने वाले बासलाहियत अफराद मौजूद हैं। वजीर आजम ने कहा कि इन दोनों खूबियों का इम्तिजाज भारत को आलमी सतह पर खलाई शोबे में तेजी से एक नुमाया मुल्क के तौर पर खुद को कायम करने की सलाहियत फराहम करता है।
3: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। कॉस्ट में हम कॉम्पिटिटिव है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज्यादा होती है और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी के एतबार से अहम नवी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: दो रोजा कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में होगी। मुल्क भर में मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज के 850 से ज्यादा अफसरान मौजूदा मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे।

0: डिफेंस के दौरान कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजों पर भी गौर व खोज किया जाएगा। इस सालाना कलीदी नौइयत की कॉन्फ्रेंस से दाखिली सलामती, सरहदी इंतजाम और उभरते हुए खतरा से मुतालिक इंटेलिजेंस, पैरामिलिट्री और पुलिस क्यादत के दरमियान तालमेल कायम किया जा सकेगा। 2016 में DGP और IGP कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी और पुलिस सरबराहान को हिदायत दी थी कि वह हर साल NSSC का इनेकाद करें, जिसका मकसद ये होना चाहिए कि सिक्योरिटी के अहम कौमी चैलेंजों का हल तलाश किया जा सके। मुतालिका माहरीन के इश्तराक से ज़मीनी सतह पर काम करने वाले जदीद सतह के अफसरान के ज़बरदस्त तजर्बे को बरूए कार लाया जा सके। दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अव्वल नायब वजीर आजम डेनिस मोंद्रो के साथ तिजारत, मईशत, साइंस, टेक्नोलॉजी और सकाफत में तआवुन IRIGC टेक से मुतालिक 27वीं भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मुश्तरका सदारत करेंगे। जनाब एस जयशंकर रूस के अपने हमनसब सरगई लावरोव के साथ भी मीटिंग करेंगे और इलाकाई व बैन अक्वामी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने दो रोज़ा सरकारी दौरे पर कल मास्को पहुंचे थे। वह रूस के अव्वल नायब वजीर आजम डेनिस मंत्रोव की दावत पर रूस का दौरा कर रहे हैं। रूस और भारत के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान वक्त की कसौटी पर खरी उतरने वाली शराकत दारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस कलीदी शराकत दारी से मुतालिक एलामिये पर दस्तखत के बाद से सियासी, सिक्योरिटी, दिफा, तिजारत, मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफत और आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत तकरीबन सभी शोबों में ताउन की बढ़ती हुई सतहों के साथ भारत रूस ताल्लुकात ने एक जदीद और मयारी शक्ल इख्तियार कर लिया है। कलीदी शराकत दारी के तहत सियासी और सरकारी दोनों सतह पर बहुत से इदारा जाति और मैकेनिकी मुजाकरात होते रहे हैं ताकि मुस्तकिल तौर पर मुजाकरात को यकीनी बनाया जा सके और ताउन की सरगर्मियों को आगे बढ़ाया जा सके। दिल्ली से यशस्वी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: 18वीं ब्रिक्स तालीमी मुजाकरात कल लखनऊ में शुरू हो गए। भारत की ब्रिक्स सदारत के हिस्से के तौर पर ये तालीमी मुजाकरात मंगल तक जारी रहेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तरक्की पजीर मुल्कों के लिए तहकीक और इत्तला के निज़ाम RIS और लखनऊ यूनिवर्सिटी के इश्तराक से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन फोरम के कन्वीनर्स हैं। लचक, इख्तिरा और पायदारी को कायम करने के मौजू के तहत ये फोरम ब्रिक्स मुल्कों के माहिरीन तालीम, मुहक्किकीन, माहिरीन और पॉलिसी साजों को यकजा कर सकेगा ताकि अहम आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया जा सके और ताउन को मुस्तहकम करने के लिए अमली पॉलिसी से मुतालिक तौर तरीकों पर भी बहस व मुबाहसा किया जा सकेगा। सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन आज आंध्र प्रदेश के इलूरू ज़िले में वाक़ गांव मुसनूरू का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया मुसनूरू में भारत के पहले गैर जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा आला तोसी मकई के हाइब्रिड बीज का इफ्तिताह करेंगे। वो किसानों की हौसला अफजाई करेंगे और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद और दीगर शुरका से खिताब भी करेंगे। बिहार सरकार ने रियासत के इम्तिहान के निज़ाम में जामे इस्लाहात के लिए 5 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के कोई मौजूदा या रिटायर्ड जज करेंगे। ये कमेटी 3 माह के अंदर अंदर अपनी सिफारिशात रियासती हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी पेपर लीक, पेपर की नकल, इम्तिहानी मराकज़ पर बदउनवानी, जवाबी कापियों में छेड़छाड़ और नतायज में गैर मजाज मुदाखलत को रोकने के लिए इकदामात की सिफारिश करेगी। यह कमेटी इम्तिहान के निज़ाम अवकात, सवालनामे की हिफाजत, जवाबी कापियों की जांच और नतायज के ऐलान के अमल को मजीद शफाफ और मुकर्रा वक्त के अंदर मुकम्मल करने पर भी तवज्जो मरकूज करेगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और मशरकी मध्य प्रदेश में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र और जनूबी कर्नाटक में कहीं कहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, मगरबी मध्य प्रदेश और मुल्क के शुमाल मशरक के इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। शुमाली खलीज बंगाल और मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के मुलहक्का साहली इलाकों के ऊपर बनने वाला हवा के दबाव का हल्का शुमाल मगरब की जानी बढ़ रहा है। तफसील हमारे नामा निगार।

0: इसके गंगा के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए शिमाली उड़ीसा की जानिब बढ़ने का इम्कान है। इसके नतीजे में आज झाड़ग्राम और पुरुलिया जिलों में बाज मकामात पर शदीद बारिश के लिए येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। मशरकी मिदनापुर और जनूबी 24 परगना जिलों में गरज चमक और बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। माहीगीरों को आज समंदर में ना जाने का मशवरा दिया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले मजाज मुल्कों के जहाज़ों को अब तेहरान को सर्विस फीस अदा करना होगी। ईरान के कौमी सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रिजाई ने बताया कि ये फीस बहरी माहौलियाती और लॉजिस्टिक शिकों का अहाता करेगी। सरकारी नशरे के मुताबिक तर्जुमान ने मजीद बताया कि अदायगी का तरीक़ेकार नरम माली शर्तों के साथ डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई ने बताया कि आबनाए हुरमुज बंद है और उस वक्त तक दोबारा नहीं खोला जाएगा जब तक ईरान के अपने वादों को पूरा नहीं करता। और ईरान और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाता। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तासुर देते हुए कि आबनाए हुरमुज अमेरिका का नया इलाका है, इस अहम आबी गुजरगाह पर अमेरिकी कंट्रोल का दावा दोहराया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज से इस माह की 27वीं तारीख तक जापान के 4 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो टोक्यो, नागोया और ओकासा जाएंगे। जापान जाने वाला भारत का ये सबसे बड़ा कारोबारी वफद होगा। इस वफद में मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, साफ तवानाई, माली खिदमात, हिफ्जान सेहत और स्टार्टअप्स, स्टील और ऑटोमेटिव शोबों के 200 से ज्यादा कारोबारी नुमाइंदे शामिल होंगे। आज पवित्र सावन महीने के आखिरी सोमवार के मौके पर झारखंड में बड़े पैमाने पर मजहबी तकरीबात जारी हैं। अकीदतमंद बड़े शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, जहां वो बोलबम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
0: देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में हजारों कांवड़िए सुल्तानगंज से पवित्र गंगा नदी का पानी लेकर जमा हुए हैं। अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए इंतजामिया ने खसूसी इंतजाम किए हैं, जिनमें ड्रोन के जरिए निगरानी, AI कैमरों और एक डिजिटल हेल्पलाइन का इंतजाम शामिल है। दुमका के बाबा बसुकीनाथ मंदिर में भी सावन के मेले के आखिरी सोमवार के दिन वसी सिक्योरिटी और भीड़ पर काबू पाने के इंतजाम किए गए हैं। रांची में अकीदतमंद दरमियाने शब से तारीखी पहाड़ी मंदिर का रुख कर रहे हैं। गिरिडीह के झारखंड धाम और रियासत भर के दिगर शिव मंदिरों में भी इसी तरह के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। जल अभिषेक को पुरामन और महफूज तरीके से मुकम्मल कराने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। रांची से महफिश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: तिब्बी तहकीक के भारतीय कौंसिल ICMR ने वजाहत की है कि H1N1, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, की किसी नई किस्म की निशानदेही नहीं हुई है, लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कौंसिल ने यकीन दिलाया है कि मौजूदा वैक्सीन अभी मौसर है। ICMR के सीनियर साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस साल 2025 से गर्दिश में है। ICMR के मुताबिक मौसमी इन्फ्लुएंजा बशमूल H1N1 ज्यादातर खुद को महदूद रखते हैं। कबायली उमूर की वजारत कर्नाटक के मैसूरू में आज से बुध के रोज तक कबायली जुबानों और म्यूजियम से मुतालिक एक 3 रोजा कौमी कॉन्क्लेव का एहतमाम करेगी। ये कॉन्क्लेव कबायली जुबान की हिफाजत और महफूज रखने के साथ साथ उनके दस्तावेजी सबूत बरकरार रखने से मुतालिक कौमी मुजाकरात को यकजा करेगी। शतरंज में भारत के 19 साल ग्रैंड मास्टर परनेश एम हंगरी के नाग कांजिसा शहर में पुरवकार कांजिसा ओपन 2026 में चैंपियन के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के नतीजे में ग्रुप ए का खिताब हासिल किया है। परनेश ने सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए टूर्नामेंट के आखिरी राउंड में जर्मनी के वेदिम पेत्रोविस्की को शिकस्त दी। हंगरी में भारत के सफारतखाने ने परनेश की शानदार कामयाबी पर उनकी सताइश की है और उन्हें मुबारकबाद दी है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने खलाई स्टार्टअप्स के बानियों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात को सफाई अव्वल पर शाया करते हुए वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि भारत का खला से मुतालिक शोबा नुमाया तौर पर वसी हुआ है और ये सेक्टर जामे इको निज़ाम तश्कील देने का अहल है। रोजनामा प्रताप ने भारत में अमरीका के सफीर سرگیو گور کے اس بیان کو نمایاں کیا کہ بھارت امریکہ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے حتمی مرحلے میں، بھارت ہمارے لیے انتہائی اہم ملک ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے، تجارت اور صنعت کے

सावन के इस प्यारे और मस्ती भरे मौसम में बारिश की बूंदों का आनंद ही कुछ अलग होता है। ठंडी हवा और सुहाने मौसम के बीच गर्मा गर्म चाय की चुस्की पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। हमें छोटे बच्चों जैसे अपनी सेहत को भूलकर इस मौसम में भीग जाने की इच्छा होती है। बारिश के मौसम में मौसम की मस्ती, ठंडी हवाओं के बीच खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान रखना बेहद ज़रूरी है। बारिश में भीगने से अक्सर सुस्ती महसूस होती है। इस मौसम में संक्रमण और बीमारियां जल्दी फैलती हैं, हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और हमारी इच्छा तो गर्मा गर्म चाय, कुरकुरे, पकौड़े, समोसे, भुट्टा और मसालेदार खाने को होती है। ठंडे और सुहाने मौसम के कारण शरीर को गर्माहट देने वाले, मन को सुकून देने वाले व्यंजनों की चाहत बढ़ जाती है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं सावन और बारिश की मस्ती पर। तो सावन की इस बारिश की मस्ती पे हम जो बात कर रहे हैं, तो सभी को ध्यान रखना होगा कि अपने स्वास्थ्य का। बारिश में नमी के कारण पाचन अग्नि थोड़ी धीमी हो जाती है, इसलिए तले भुने खाने से पेट की समस्या हो सकती है। बाहर का खुला या बासी खाना खाने से हमें बचना चाहिए। कटे हुए फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रिज में रखा हुआ पुराना खाना पेट की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए श्रोताओं, सेहत का ध्यान हमें विशेष तौर पर रखना होगा। गर्मा गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन करें। बाहर जाते समय छाता या रेनकोट साथ रखें। भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहने। गंदे पानी और जल भराव से दूर रहें। एक बात और, स्वस्थ रहने के लिए बारिश में खुले आसमान के नीचे योग करने से बचें। घर के अंदर साफ हवादार जगह चुनें। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका जैसे प्रमुख योगासन और प्राणायाम करें। बारिश प्रकृति का एक सुंदर और महत्वपूर्ण वरदान है, जो गर्मी में राहत देती है, वातावरण को ठंडा और ताज़ा रखती है। पेड़ पौधों और फसलों के विकास के लिए जीवन का आधार है बारिश।

कार्यक्रम में चलते चलते हम यही कहेंगे, सावन के महीने में बारिश में मस्ती करें, परंतु अपने आसपास सफाई रखें, पीने के पानी की शुद्धता बनाए रखें, और पानी की शुद्धता से कोई समझौता ना करें। पानी उबाल कर पिएं, उन्हें साफ रखें और खुद सफाई से रहें, आसपास के लोगों को भी सफाई से रहने के लिए कहें। हिम्मत हमेशा दहाड़ नहीं मारती, कभी कभी हिम्मत दिन के अंत में एक छोटी सी आवाज़ होती है जो कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूँगी। कोशिश करते रहिए, जीत अवश्य होगी। खुश रहिए, सुनते रहिए कार्यक्रम। नमस्कार प्रयागराज।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिल्लू बार्बर फिल्म से, आवाज सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान की, बोल गुलजार की और संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत सुनिए जन्नत फिल्म से, आवाज केके की, बोल शहीद कादरी के, फिर संगीत प्रीतम का।

0: This is Akashwani. Time for a weekly program, Our Guest. I hand over the mic to the show host, Nitish Arora, for the same.
1: Continuing with our Independence Month series and a special focus on...
2: जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो गई है। 11 और 12 अगस्त को अंतिम दौर के साक्षात्कार हुए। कुल 5,585 आवेदन मिले थे, जिनमें से कई चरणों की स्क्रीनिंग के बाद 16 उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया। अब चयन समिति 3 नामों का पैनल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपेगी, जिसके बाद अंतिम नाम पर फैसला ट्रस्ट की 2 सितंबर को प्रस्तावित बैठक में हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 15 अगस्त से अर्चकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास के मुताबिक सभी अर्चकों ने पीत वस्त्र धारण किया, गर्मी में नीचे धोती और जबकि सर्दी में मौसम के अनुसार ऊनी वस्त्र होंगे, लेकिन रंग पीत ही रहेगा। बिना सिले रेशमी वस्त्रों की व्यवस्था से रामलला की सेवा में एकरूपता और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। श्रावण शुक्ल तृतीया पर अयोध्या में झूलनोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। रामलला के चल विग्रह को पालकी में विराजमान कर श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया, जिसके बाद रामलला तीनों भाइयों के साथ कुबेटिला पहुंचे, जहां झूलनोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ। अयोध्या में झूलनोत्सव सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा है, जिसमें सावन के दौरान भगवान को झूले पर विराजमान कर भजन कीर्तन और झूलन के पदों से उन्हें रिझाया जाता है। मणि पर्वत मेले में भी अयोध्या के अलग अलग मंदिरों से भगवान के विग्रह शोभा यात्रा के साथ पहुंचे और झूलनोत्सव में शामिल हुए। धार्मिक समिति के सदस्य स्वामी रामानंद दास कहते हैं,
3: जैसे अयोध्या अनादि है, वैसे ही भगवान का गोलमोत्सव जिसको झूला कहते हैं, यह अनादि है और पद्म पुराण में इसका विशेषता से वर्णन है। हमारे यहाँ ये भाव रहता है कि भगवान झूले में पधारते हैं और श्रावण में उनको गीत गवनई के माध्यम से प्रसन्न किया जाता है।
2: विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन पूजन किया। रामचंद्र दास परमहंस की 23वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा कि ट्रस्ट की सिफारिश पर SIT जांच हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वही गौ संरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि गाय सनातन धर्म और भारत की धरोहर है तथा प्रदेश में करीब 16 लाख गायों के संरक्षण का काम गौशालाओं के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
4: श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, SIT बनी, SIT के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। दूध का दूध पानी का पानी ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए।
2: डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। 166,055 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं और 120 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसमें 86 छात्राओं और 34 छात्रों ने बाजी मारी। इस बार स्वर्ण पदक विजेताओं के माता पिता और अभिभावकों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने और शिक्षा को शोध नवाचार कौशल और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का आह्वान किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने अयोध्या में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। उन्होंने तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया और रामलला व हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और कई महिलाएं 25 से 30 हजार रुपए प्रतिमाह कमा भी रही हैं। सिविल लाइन स्थित ऐतिहासिक राजकीय पुस्तकालय के उच्चीकरण और नई गैलरी के निर्माण का काम शुरू हो गया है। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भूमि पूजन कर परियोजनाओं की शुरुआत की। करीब 3 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से होने वाला काम लगभग 9

0: महीने में पूरा होने का लक्ष्य है। पुस्तकालय में करीब 60,000 किताबें मौजूद हैं, जिनमें कई दुर्लभ पुस्तकें भी शामिल हैं। मिल्कीपुर के रामपुरवा गांव स्थित विघ्नेश्वर महादेव मंदिर में 60 फीट लंबा और 8 कुंतल वजनी विशाल त्रिशूल स्थापित किया गया। सावन के पहले सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इसकी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 12 जिलों के रास्ते अयोध्या लाया गया यह त्रिशूल अब मंदिर की नई पहचान और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर रामनगरी शिव में नजर आई। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। सुबह से ही शिवालयों में लंबी कतारें लगी रहीं और हर हर महादेव के जयकारे से अयोध्या गूंजती रही। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए।
1: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जनपद में मेरा युवा भारत के समन्वय में अभियान का व्यापक आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालदेवपुर में आयोजित हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री के संदेश का सजीव प्रसारण किया गया और 200 से अधिक युवाओं ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न खंडों में कार्यरत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों द्वारा स्थानीय युवा मंडलों, स्वयं सेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से भी प्रधानमंत्री के संदेश के सामूहिक श्रवण का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेते हुए नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। कुलपति ने अपने उद्बोधन में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमें केवल अधिकार नहीं देती बल्कि अपने कर्तव्यों का बोध भी कराती है। आज हमें संकल्प लेना होगा कि अपने राष्ट्र को ज्ञान, नवाचार, अनुसंधान, तकनीक और मानवीय मूल्यों के माध्यम से सशक्त बनाएंगे। इस अवसर पर वंदे तरम गीत गाया गया। इस गीत का महत्व जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया।
3: वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना मातरम से देश की गौरवशाली विरासत और राष्ट्रीय एकता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2: बलिया जिले में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में स्थित सभागार में गोद लिए गए 6 रोगियों के बीच पोषण पोटली का वितरण CMO अभय नारायण राय द्वारा एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर CMO ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना TB मुक्त भारत हो अपना TB को हराने के लिए पोषण पोटली का वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। बलिया प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु तहसील बांसडी क्षेत्र के ग्राम महाराजपुर के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने कटान और बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पात्र प्रभावितों को नियमानुसार मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद तहसीलदार को निर्देश दिया कि कोई भी बाढ़ पीड़ित मुआवजे से वंचित न रहे। जिन ग्रामीणों के मकान और खेत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनकी नियमानुसार पूरी सहायता सुनिश्चित की जाए। बलिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत राष्ट्रभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से शहीद पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अधिकारियों, कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों समेत करीब 2000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों के कदम बढ़े तो पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। वहीं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा नशा मुक्ति, स्वच्छता और तिरंगा यात्रा का विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृषि प्रभारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर लाल विजय सिंह ने बताया कि
4: बलिया में विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता, नशा मुक्ति एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन उत्साह पूर्वक किया गया। विद्यार्थियों ने मंदिर एवं विश्वविद्यालय परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता

0: ता का संदेश दिया, साथ ही नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाते हुए नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, एकता एवं देशभक्ति का संदेश दिया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: कहाँ?
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: तो उस वक्त हम ये उनसे बहुत बालिग नज़रिए की या बहुत मैच्योर उसकी फिक्रों की हम ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो उम्र थी एक टीनेज की उम्र थी,
1: जी
0: और उस उम्र में जो उनकी ज़हनी कैफियत थी, जो जज्बाती कैफियत थी या जो नफसियाती कैफियत थी,
1: जी
0: उसी को उन्होंने सलमा में पेश किया। लेकिन हमको ये ध्यान देना चाहिए कि 17-18 साल की उम्र में ही उन्होंने अफसाना लिखा, ये हम ये काम की बात
1: जी
0: है, क्योंकि उस ज़माने में हम अगर देखें तो हमारे पास ख़वातीन अफसाना नगारों में कोई नाम नहीं है।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए शायद उनको तरक्की पसंद तहरीक की खातून अव्वल कहा जाता है,
0: जी
1: क्योंकि उससे पहले कोई ऐसी खातून नहीं थी। प्रेमचंद के बाद हकीकत निगारी में इस
0: जी
1: तरह से पहले कोई ऐसी खातून नहीं थी जो इस तरीके से कलम उठाती और फिक्शन में जो है एहतजाजी रंग होता, जो समाज पे वार की माशरे की बुराइयों पे वार करती हूँ और अंदर की बिल्कुल अंदरून खाना जो मसाइल हुआ करते हैं, सास बहू के झगड़े हैं, रिवायती जिस तरह से है औरत, कभी कभी ऐसा भी उन्होंने दिखाया है कि सिर्फ मर्द औरत पे जुल्म नहीं करता है। उनका एक अफसाना है जिसमें वो दिखाती कि औरत भी औरत पे जुल्म करती है।
0: जी
1: जो छिद्दा की माँ जो उनका अफसाना है उसमें वो उसकी सास का जो रोल है वो यही दिखाते कि वो बार बार अपने लड़के की शादी करती है,
0: जी
1: शादी करती है, उसको सताती है, फिर उस पर इल्ज़ाम लगाती है, बहुतान तराशी करती है, उसका सारा जहेज का सामान ले लेती है, उससे तलाक दिलवा देती है। इस तरीके से उसे 9 या 10 शादियाँ कराई। तो
0: जी
1: इस जुल्म के खिलाफ उन्होंने जो एक एहतजाजी रंग वो किया है कि आखिरी शादी से उसको सबक मिलता है।
0: जी तो उनकी हकीकत निगारी के अगर हम पस मंज़र में जाएँ तो हमको प्रेमचंद से थोड़ा सा मुख्तसर में ही उनका भी हमको वहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमचंद के पहले अगर हम उर्दू फिक्शन की बात करें, हिंदुस्तानी फिक्शन की बात करें, तो जीनो परी और जो मफ़ुक़ुल फ़ितर नासिर हैं वो सारे अफसानों में दास्तानों में पाए जाते हैं। हालांकि डिप्टी नज़ीर अहमद के वक्त से फिर कुछ इस्लाही चीज़ें शुरू हो गई थी, लेकिन वो इस्लाही जो तख्लीक़ात थी
1: प्रेमचंद क्या
0: वो
1: इस्लाही रंग
0: जी
1: था,
0: इस्लाही रंग था और एक
1: आइडियलिज्म था,
0: आइडियलिज्म था।
1: उनके यहाँ शिद्दत नहीं थी,
0: जी
1: एहतजाज भी नहीं था।
0: जी
1: एहतजाज का जो रंग है वो अंगारे में ही देखने को
0: जो
1: मिलता
0: हम
1: है।
0: बदलाव की हम देखते हैं कि अदब
1: जी
0: के जरिए जो बदलाव की बात है वो हम रशीद जहाँ के यहाँ देखते हैं, जबकि
1: जी
0: प्रेमचंद के यहाँ ज़्यादातर शुरुआती तख्लीकात अगर हम देखें तो उनके यहाँ एक आइडियलिज्म का, एक
1: जी
0: मिसालियत पसंदी का रुख हमें ज़्यादा मिलता है। हालांकि बात की कहानी
1: नहीं,
0: उम्र का
1: बगावत
0: रुझान
1: उनके यहाँ भी आई थी,
0: जी
1: सोजे वतन वो हुआ लेकिन वो बरतानिया हुकूमत के खिलाफ
0: जी
1: था।
0: जी
1: वो बगावत की जो बू आ रही थी, वो स्वराज लेने की जो कर रही थी, क्योंकि वो गांधी जी से
0: लेकिन
1: बहुत
0: उन्हीं हम
1: मुतासिर
0: अगर
1: थे।
0: देखें उनके नक्शे कदम पर भी कुछ हद तक ही देखें
1: जी
0: लाशौरी तौर पर ही, तो
1: जी
0: रशीद जहाँ भी चली, क्योंकि उनका
1: जी
0: भी जो पहला जो अफसानी मजमुआ
1: जी
0: था जिसमें 4 दूसरे लोगों
1: जी
0: के अफसाने शामिल थे और रशीद जहाँ का भी अफसाना शामिल था,
1: जी
0: उसको भी अंग्रेज़ों के जरिए जब्त कर लिया गया
1: जी
0: था।
1: जी लेकिन उस पे सबसे ज्यादा जो एहतजाज किया गया वो समाजी ठेकेदारों, मजहबी
0: जी
1: ठेकेदारों की तरफ से किया गया, फतवे जारी कर दिए गए
0: जी
1: भाई।
0: उनके अंगारे के अफसानों की बात करें तो उनका जो 1932 में शाया हुआ
1: जी
0: था
1: जी
0: हम
1: जी
0: अंगारे
1: जी
0: की
1: दस
0: सैर,
1: कहानियों का मजमुआ है, महमूद जफर साहब की
0: जी
1: है और अहमद अली की है, सज्जाद जहीर की 5, इस तरीके से करके जो है उसमें सिर्फ एक ही कहानी है,
0: जी
1: रशीद जहाँ की दिल्ली की
0: नहीं
1: सैर, और एक ड्रामा
0: और
1: है
0: ड्रामा
1: पर्दे के
0: है,
1: पीछे।
0: ड्रामा पर्दे के पीछे है। तो दिल्ली
1: जी
0: की सैर में हम देखते हैं शौहर की जो जिम्मेदारी होती है अपनी बीवी के तई, वो
1: जी
0: उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है। वो
1: जी
0: जो पुरानी तहजीब चली आ रही थी कि हमको औरतों की कोई अहमियत नहीं है, वो
1: जी
0: प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है तो बैठी हुई है,
1: जी
0: तो वो सारी
1: इंतजार
0: चीज़ें
1: करती रह जाती
0: उन्होंने
1: हैं पिशौर का।
0: पॉइंट आउट किया
1: जी
0: और उसको फोकस किया कि नहीं औरतों की भी कुछ न कुछ अहमियत होनी चाहिए। फिर अगर हम उनके दूसरे अफसाने की बात करें, उस पर पर्दे के पीछे था वो वन एक्ट ड्रामा था,
1: हाँ
0: तो उसमें भी देखें तो विलायत से शौहर लौटता है
1: जी
0: हमीदा बेगम का,
1: जी जी
0: उसको एक जिंसी रिश्ते तक ही महदूद देखता है, उसमें जो एक शरीक हयात का जो पहलू होना चाहिए, हर तरह से उसकी इज्जत नफ्स करना, ये सारी चीज़ें उसमें कम पाई गई। मतलब कि औरत सिर्फ जिंस का ही जिंसी
1: जी जी जी
0: ज़रूरियात
1: जी जी
0: की
1: जी
0: तकमील
1: जिस
0: के लिए
1: जरूरत
0: ही
1: की एक चीज़
0: उसको,
1: समझी जाती
0: हाँ
1: है, उसके जज्बात को अहमियत नहीं दी जाती, उसके एहसास को अहमियत नहीं दी जाती। तो इसी सब चीज़ों पे उन्होंने एहतजाज किया है,
0: जी
1: एहतजाजी रंग है। और उनकी एक कहानी सौदा
0: जी
1: अगर आपने पढ़ी हो
0: जी
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब,
0: पढ़ा
1: उसमें
0: है
1: एहतजाज का रंग गालिब है।
0: जी जी
1: वो मर्दाना समाज की वो चीज़ है, जिंस परस्ती की, किस तरीके से मर्द का मेयार गिर जाता है, हवस परस्ती जब उस पर हावी होती है तो उसका मेयार कितना गिर जाता है कि एक औरत के पीछे तीन तीन मर्द है।
0: जी जी
1: इस चीज़ को उन्होंने दिखाया और वो जबान जो इस्तेमाल की है जिसके लिए बहुत मशहूर है असमत चुगताई, लेकिन शायद रशीद जहां ना होती तो असमत चुगताई ना
0: हाँ, ये
1: होती।
0: बड़ा अच्छा पहलू आपने निकाला है
1: जी
0: कि अगर हम इसमें चगताई की तहरीरों में देखें तो हम क्या चीज़ पाते हैं कि वो रशीद जहाँ पेशरव थी, अगर रशीद जहाँ ना होती तो शायद गिरजिया सज्जाद जहीर की भी तख्लीकात होती या किस तरह की होती, या इसमें चगताई ने

0: लिखा तो वो किस तरह से लिख पाती कि ना
1: नहीं,
0: लिख
1: अजमत
0: पाती, क्या
1: चुगता
0: तो
1: है।
0: क्या रशीद जहां ने राह हमवार की बात की
1: बिल्कुल
0: अफसाना
1: बिल्कुल,
0: निगारों
1: वो
0: के
1: उनकी
0: लिए, खासतौर पर
1: पेशवाओं में
0: खवातीन।
1: मिशले राह का काम करती हैं। बल्कि अजमत चुगताई ने उनकी बायोग्राफी, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर रशीदा आपा ना होती
0: जी,
1: तो मैं ना होती। और उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने उनसे क्या लिया है, उनसे सिर्फ समाजी वो नहीं लिया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो ना होती तो खदीजा मस्तूर भी ना होती, हाजरा मसरूर ना होती, कुरतुल अयन हैदर ना होती, इसमें चुगताई ना होती। ये इन लोगों के लिए राह हमवार।
0: तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो भी उनकी तख्लीकात थी उसमें तरक्की पसंद तहरीक का, या जो महमूद ज़फ़र भी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े थे, जो 1936 में लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेमचंद ने कहा था कि हमें हुस्न
1: उन्नीस सौ
0: का मेयार
1: छत्तीस में
0: बदलना
1: जी जी जी
0: होगा,
1: जी जी
0: उसके अनासिर तो हमें रशीद जहाँ की पहले की तहरीरों में भी मिलते हैं, लेकिन
1: जी
0: जब वो बाकायदा तौर पर तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गई तब उनकी तख्लीकात में भी तब्दीली हुई।
1: उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। लेकिन हाँ, जो मेयार बदला, बल्कि ये समझ लीजिए कि प्रेमचंद का वो जुमला अदब के हुस्न का मेयार तब्दील करना होगा, ये एक कलीदी जुमला है
0: जी
1: उन तमाम लिखने वालों के लिए, जो सिर्फ तरक्की पसंद तहरीक के लिए नहीं, बल्कि आज भी जो लोग फिक्शन लिख रहे हैं या अदब लिख रहे हैं, चाहे वो नज्म निगारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक संग मील का दर्जा रखता है। और
0: का एक
1: उन्होंने यही बताना चाहा कि हमें ऐसा अदब नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा अदब चाहिए जिसमें तफक्कुर हो,
0: सुलाए नहीं
1: हाँ, जो
0: बल्कि
1: जिसमें
0: जगाने का काम
1: माशरे की
0: करे।
1: अमासिर मतलब रूह हो। और वो अदब हमें सुलाए नहीं, जैसे
0: हाँ
1: कि दास्तानें हुआ करती
0: जी
1: थी, लोग जो कहानी सुनाते थे हम सो जाते थे
0: जी
1: दास्तान
0: पहले
1: सुनने।
0: पहले हम देखते हैं लोकगीत में इस तरह, तो वो लोरी को अगर हम देखें तो वो सुलाने के ही काम में आता
1: जी
0: था,
1: जी
0: लेकिन
1: जी लेकिन जो फिक्शन प्रेमचंद ने लिखा और प्रेमचंद के बाद तरक्की पसंदों ने लिखा, ये फिक्शन के उरूज का जमाना, एक सुनहरी दौर है प्रेमचंद के बाद का।
0: उस जमाने में तो औरतों का जो हाल था, तो उस जमाने में तो बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा, उस वक्त उनकी
1: बहुत
0: मुखालफत भी हुई
1: चैलेंजिंग था, बहुत
0: होगी,
1: था, लेकिन इन लोगों ने वो
0: उनको समाज
1: चैलेंज,
0: ने कैसे कबूल किया होगा, या जो मजहबी लोगों की तरफ से भी कुछ मुखालफत हुई
1: बहुत
0: होगी।
1: मुखालफत। इसीलिए तो जाहिर सी बात है कि जो अंगारे जब्त कर लिया गया और कॉपियां जला दी गईं,
0: जी
1: क्योंकि उन्होंने मजहबी जबर पे भी और इस तरीके से जो जबरदस्ती मजहब को
0: जो हम
1: मोड़
0: बाह
1: लिया जाता
0: मजहब के
1: है,
0: नाम पे हम औरतों का जुल्म सितम करते हैं, अगर हम ये
1: जी,
0: कहें कि मजहब की आड़
1: रियाकारी
0: लेकर
1: भी,
0: हम
1: रियाकारी
0: औरतों
1: भी,
0: पर।
1: ऐसी भी बहुत सारी कहानियां हैं, और भी कहानियां हैं। उनकी भगवान है, उनकी पुन है,
0: जी
1: इस्तखारा है,
0: जी
1: और भी इस तरह की उनकी कहानियां हैं जिसमें उनका मजहबी जबर देखने को मिलता है, समाजी जबर भी देखने को मिलता है, उसमें माशी भी इस तरह का है। जैसे चोर है, भाई
0: जी
1: चोर क्यों चोरी
0: हाँ
1: करता है?
0: हाँ जो चोर कहानी है उस पे उन्होंने सारा, जो चोर आता है उनके यहाँ इलाज कराने,
1: जी
0: तो वो उसकी दौरान बातचीत से पता चल जाता है यही चोर है जो इसने चोरी की थी मेरे घर
1: जी
0: में, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की, कोई FIR नहीं की, क्योंकि चोर का भी एक जुमला था कि जैसे उसने पैसे के जरिए सारे सिस्टम पर वो करप्शन हावी है, तो वो चोर जाती तौर पर से जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं उस चोरी में पूरा सिस्टम की प्रॉब्लम है वो। अच्छा, अगर हम उनकी और अमली ज़िंदगी को देखें, तो वो डॉक्टर थी और उन्होंने लेडी हार्डिंग कॉलेज दिल्ली से MBBS किया था,
1: जी
0: उन्होंने सरकारी खिदमात भी अंजाम दी एक
1: जी
0: बहसी डॉक्टर से, तो उनका जो तजर्बा था एक डॉक्टर की, इसमें दो पहलुओं में अगर हम
1: जी
0: बात करें, तो एक तो जो उनका तजर्बा था एक डॉक्टर की हैसियत से, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अफसानों में शामिल किया, जैसे हम
1: हाँ, उनका
0: आसिफा की बहू,
1: आसिफ जहाँ की बहू
0: आसिफ
1: में
0: जहाँ की
1: देखिए, वो
0: बहू।
1: दिखाते हैं कि जब दाई जो है वो करती है
0: जी
1: कि वो कहती हैं कि ऐसे नहीं करना, नाल काट नहीं देना, तो वो उसकी जबान किस तरह से वो अदा करती है कि आए
0: जी
1: है मिसन, पूरी उम्र गुजर गई यही जो यही काम करते हुए, और तुम जो है हमें सिखाती हो हमारी गोदों की खेली हुई हो,
0: जी
1: ये चीज़ बताती हैं। लेकिन उसमें ये कहना चाह रही हैं कि डॉक्टर है,
0: जी
1: ऐसे लोग क्या करते हैं कि दाई और नर्सों से काम करा लेते हैं,
0: जी
1: लेकिन
0: एक
1: अगर
0: तरह से बेदारी का भी उन्होंने
1: बेदारी,
0: काम किया कि
1: जहनी
0: हमको डॉक्टर
1: बेदारी,
0: के पास जाना
1: माशरे में
0: चाहिए,
1: बेदारी के लिए जो है आसिफ जहाँ की बहू
0: क्योंकि बहुत उस जमाने में ऐसा भी था कि बहुत बच्चों की पैदाइश के वक्त भी
1: घर में
0: जिच्चा
1: ही हो
0: को भी,
1: जाया
0: बच्चे
1: करती
0: को
1: थी और
0: भी
1: दाइयाँ बुला ली
0: हादसे
1: जाती
0: कभी
1: थी,
0: शिकार हो
1: जी
0: जाते
1: बहुत
0: थे।
1: सारी हो
0: जी
1: जाती थी।
0: तो उन्होंने एक तरह से बेदार किया कि हमको एक बाकायदा डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
1: जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: और तड़पते हुए आपने कफन में तो देखा ही है,
0: जी
1: प्रेमचंद का जो है जो अफसाना कफन है,
0: जी
1: उसमें जो बुधिया का किरदार है वो इसी हालत में तो मर जाती है, तड़प तड़प
0: जी
1: करके,
0: जी जी
1: है ना, हालत
0: जी
1: जचकी में वो जो है दर्द
0: हाँ
1: जहर में तड़प तड़प के
0: तो
1: मर
0: एक तरह
1: जाती
0: हम
1: है।
0: देखें तो ये
1: वो, हाँ,
0: उसी का
1: इतनी
0: एक्सटेंशन
1: जहालत
0: है।
1: थी जी, उसकी
0: जी
1: इतनी जहालत थी कि न शौहर लेकर के किसी डॉक्टर दाई को बुलाता है, ना किसी पड़ोस की औरत को बुलाता है, ना उसका ससुर बुलाता है, और वो तड़प तड़प के मर जाती है।
0: तो कहीं ना कहीं वो तौर पर वो प्रेमचंद से

0: भी मुतासिर थी।
1: हाँ उससे आगे
0: हाँ
1: चली
0: उससे
1: जाती
0: आगे
1: हैं,
0: चली
1: उससे
0: जाती
1: आगे
0: हैं
1: जाती हैं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी होती
0: जी
1: हैं और ये डॉक्टर होती हैं, ये माशरे में खिदमत करती हैं और ये ख्वातीन के मसाइल को ज़्यादा अच्छी तरीके से
0: जी
1: समझती हैं, उनके अमराज को भी ज़्यादा अच्छी तरीके से गहराई से समझती हैं, क्योंकि उनके पास दिन में बहुत सारी औरतें आती हैं, हर तरह के अंदर की बातें जानते हैं कि हालत जचगी में किस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है, कैसी खुराक दी जाती है, उनकी उनके साथ क्या सलूक किया जाता
0: जी
1: है, ये सारी असर आने वाली नस्ल पे पड़ता है।
0: एक डॉक्टर की हैसियत से भी उन्होंने बहुत सारी खिदमात अंजाम दी।
1: हाँ
0: हम देहरादून में भी रहीं,
1: जी जी
0: दिन
1: जी
0: भर वो डॉक्टर का पेशा था, वो काम
1: जी जी
0: करती
1: जी
0: थी,
1: जी
0: रात में अदब की तख्लीक करती थी। तो कहीं ना कहीं हम अगर ये देखें कि उन्होंने डायरेक्टली चीज़ों को महसूस किया, उसको जज्ब किया, ये नहीं कि उन्होंने किसी किताब से पढ़ के फैशन के तौर पर
1: नहीं बिल्कुल
0: तख्लीकात देख दी,
1: नहीं,
0: बल्कि
1: क्योंकि
0: उन
1: देखिए
0: चीज़ों को
1: उनके,
0: बराहरास महसूस
1: देखिए
0: किया, उनको
1: उनको
0: अपनी
1: इर्द
0: तख्लीकात
1: गिर्द
0: में
1: वही
0: पेश
1: माहौल
0: किया
1: मिला, उनके वालदैन से मिला,
0: जी।
1: फिर उसके बाद उनकी शादी से पहले ही मुझे लगता है कि सज्जाद ज़हीर और महमूद ज़फ़र साहब से इन
0: जी
1: लोगों से मुलाकात रही होगी,
0: जी
1: क्योंकि वो
0: अमृतसर कॉलेज में
1: आला
0: फैज़ अहमद
1: तबके के
0: फैज
1: लोग थे,
0: जी
1: पढ़े लिखे लोग थे।
0: जी
1: उधर उनके वालिद साहब भी एक तरीके का इनकलाब ले आ रहे थे कि जहाँ पे सर सैयद खान ने जो है तालीम निस्वा के लिए नहीं वो किया, वहाँ पे जो है शेख अब्दुल्ला साहब ने
0: जी
1: किया।
0: जी
1: और इधर उनको जो है 1934 में शादी होती है उनकी
0: जी
1: महमूद ज़फ़र, वो खुद भी
0: जी
1: अदीब होते हैं,
0: जी
1: अदीब भी हैं और वो इस्लामिया कॉलेज उसमें टीचर भी होते हैं, मदर्रिस
0: जी
1: भी होते हैं
0: जी
1: अमृतसर में,
0: जी जी
1: तो उनको वहाँ से भी अदबी माहौल मिलता है। शोहर का साथ भी, मंगेतर का साथ भी कहिए, उनको मिल जाता है, कहीं रुकावट नहीं है, वालदैन से भी नहीं है, शोहर से भी नहीं है, वो शादी तो उससे पहले ही 32 में आ जाता है अंगारे।
0: जी
1: तो वो दोस्तों का एक ग्रुप रहा होगा जिसमें
0: जी
1: उन्होंने, उन नौजवानों ने जो है, इनकलाबी नौजवानों ने ये तहरीर पेश की और वहाँ से उनका जो है अदबी सफ़र जो है वो शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे जो उनके कई मजमुओं में हैं, जैसे उनका जो है औरत और दीगर अफसाने है, पहला मजमुआ
0: जी
1: 1937 में होता है, फिर शोले जवाला है जो
0: जी
1: 1967 में होता है, फिर आखिरी जो है वो और दीगर अफसाने करके जो मजमुआ है वो
0: जी
1: 1977 में आता है।
0: जी
1: उनके इंतकाल के बाद ही ये सारे अफसाने आते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक ही आता है 1937 में जो है अफसानी मजमुआ रशीद जहाँ के अफसानों। चूंकि हम बैठे हैं और उनकी अदबी ज़िंदगी पे गुफ्तगू हो रही है, तो हम ये बताना चाहेंगे अपने सामईन को कि उनके अफसानों के मुताले से जो है बात सामने आई ये कि उनकी तहरीरों में बेजा रोमान नहीं था, आराइशों से बाइश नहीं थी, एक मकसदियत पाई जाती थी और किसी न किसी जाविये से एक तल्ख और बेबाक हकीकत निगारी देखने को मिलती थी जो उनकी अफसाना निगारी की
0: जी
1: इनफरादी खसूसियत थी। ये बेबाकी सिर्फ जिनसी मसाइल और बाजारी जबान तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी तहजीब, पुरानी और नई नस्ल के टकराव, बाहमी टकराव, मजहब का बेजा इस्तेमाल, समाज की हर तरह की बुराइयों, खा जिंस परस्ती हो, चोरी हो, झूठा आइडियलिज्म हो, सब पर तीखे वार किए हैं।
0: तो अगर हम इख्तिसार में बात करें तो जो सर सैयद के वक्त से जो मुआशरे की इस्लाह का आगाज़ होता है, जो रिसाले से शुरू होता है, होते हुए उनके वालिद साहब शेख अब्दुल्ला साहब तक वो पहुंचता है, वो तालीम निस्वा पे काम करते हैं, और इसी रिवायत को आगे ले जाते हुए वो औरतों के मसाइल को और बेबाकी से और शिफाक हकीकत निगारी के ज़रिए पेश करती हैं,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: न सिर्फ
1: जी
0: वो अदब में पेश करती हैं बल्कि ज़ाती ज़िंदगी में भी औरतों की बहुत
1: हाँ,
0: खिदमत
1: और
0: करती
1: असमत
0: हैं।
1: चौगताई नहायत सदाकत के साथ वो इतराफ़ करती हैं, कहती हैं कि गौर से मैं अपनी कहानियों को जब देखती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ, तो मालूम होता है कि मैंने सिर्फ उनकी बेबाकी और साफगोई को गिरफ्त में लिया है,
0: जी
1: उनकी भरपूर समाजी शख्सियत मेरे काबू में ना सकी, यानी कि वो समाजी कारकुन भी थी, समाज की भी
0: जी
1: खिदमत करती थी। तरक्की पसंद अदीबों में प्रेमचंद के बाद रशीद जहाँ तन्हा थी जिन्होंने उर्दू में समाजी और इनकलाबी हकीकत निगारी की रवायत को मुस्तहकम बनाने की कोशिश की। उर्दू में पहली बार एक इनकलाबी और साइंसी जहन रखने वाली खातून ने जिंदगी को तारीखी और मार्क्सी अवामिल के तनाजुर में देखा, इसलिए उनकी नजर उन पहलुओं पर भी गई जिन पर सिर्फ मर्द बल्कि खातून अफसाना निगारों की रसाई भी नहीं हो सकी। ये खूबियां थी रशीद जहां की,
0: इसलिए उन्हें खातून अव्वल
1: खातून
0: कहा
1: अव्वल कहा
0: गया।
1: गया।
2: अभी आप डॉक्टर अब्दुल मुही और डॉक्टर कहकशा इरफान की गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। मौजू था रशीद जहां की तहरीरों में हकीकत निगारी। अब आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और लखनऊ मरकज से नशर किया गया।
3: उर्दू प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रद्धा शुक्ला।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं मल्लिका चटर्जी। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये भजन।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।

0: मल्लिका चटर्जी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र की वैश्विक प्रतिभाओं को भारत की ओर आकर्षित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे और जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ और मंगलवार तक ये विचार विमर्श जारी रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का महाकाल मंदिर मध्य रात्रि 2:30 बजे खुल गया। भगवान महाकाल को पहले पंचामृत से स्नान कराया गया और फिर पवित्र राख से सुशोभित किया गया। वहीं झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। विश्व प्रसिद्ध देवघर स्थित 12 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ से लेकर राज्य की राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर तक हर हर महादेव के जयकारे पूरे राज्य में गूंज रहे हैं, जहां श्रद्धालु भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने उन्हें एक तीक्ष्ण कानूनी विशेषज्ञ, एक कुशल वक्ता और एक निपुण प्रशासक बताया। गृहमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली ने प्रभावी संवाद के माध्यम से आम जनता तक सरकार की नीतियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने प्रतिष्ठित कनीजा ओपन 2026 शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम किया। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोमांचक 9वें दौर के बाद प्रणेश ने मध्य यूरोप के सबसे प्रतिस्पर्धी ओपन टूर्नामेंटों में से एक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। लीजिए सुनिए प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शुक्ला से बातचीत। भेंट करता है अभिनव प्रज्ञ पांडे और ये विशेषज्ञ हैं नाक कान गले के।
1: श्रोताओं नमस्कार, फिर से हम हाजिर हैं
2: वॉइस ऑफ प्रयागराज का नया अंक लेकर।
1: आज हम बात करेंगे ENT यानी नाक कान और गले में होने वाले रोगों के उपचारों पर, जो नई तकनीकें इस समय आई हुई हैं। क्या नई तकनीकें हैं ENT के चिकित्सा के क्षेत्र में, किस तरह से हमको अपने नाक कान और गले का ख्याल रखना चाहिए कि आगे का जो हमारा जीवन है वो किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, क्या आम समस्याएं होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, कब ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो अगर हमें दिखाई पड़े अपने शरीर में तो हमें तुरंत बिना देर किए अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के प्रख्यात ENT यानी कि नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शुक्ला हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं।
2: आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग।
1: डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी प्रयागराज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद अभिनव जी यहाँ मुझे बुलाने के लिए आपको।
1: सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि नाक कान गला विशेषज्ञ के चैम्बर के आसपास इतनी ज़्यादा भीड़ हो जितनी मैंने आपके केबिन के आसपास देखी है। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखी है। बहरहाल ये बातचीत हम अपनी शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे नई तकनीकों के ऊपर जो ENT के क्षेत्र में, नाक कान गला रोगों के उपचार के क्षेत्र में आई हैं। सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि पिछले कुछ वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या आए हैं ENT चिकित्सा के क्षेत्र।
3: अभिनव जी, पहले क्या होता था कि हमारी ENT सर्जरी होती थी, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे
1: जी।
3: जैसे कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने बहुत अच्छा चिकित्सा जगत में नाक कान गले के क्षेत्र में बहुत ही चेंजेस ले आए हैं। दूसरा इंडोस्कोप
1: जी।
3: इंडोस्कोपी सर्जरी होने से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे नाक के अंदर से हम इंडोस्कोप के माध्यम से अब हम जो दिमाग के ट्यूमर को भी निकाल लेते हैं।
1: अच्छा।
3: यस, नाक के अंदर जा करके जो हमारा ट्यूमर होता है ब्रेन के नीचे पार्ट में, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी एडेनोमा। पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, स्कल बेस सर्जरी बोलते हैं। स्कल बेस सर्जरी हम लोग इंडोस्कोप के माध्यम से जाके कर रहे हैं इस समय।
1: क्या बात है। जैसे कि आपने बताया तब माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, दूरबीन नहीं थी, उसने बहुत मतलब क्रांतिकारी बदलाव लाया है चिकित्सा के क्षेत्र में। हमको ये बताइए कि एक टर्म होता है मिनिमली इन्वेजिव यानी कि कम चीरे वाली या ना के बराबर चीरे वाली सर्जरी, ये क्या है और ये कितनी लाभप्रद है, किस प्रकार?
3: इस सर्जरी में क्या होता है ना कि एक तो जो पहले लंबे चीरे मारे जाते थे, अब लंबा चीरा मारने का अवस्था नहीं है। पहली बात के बाद कॉस्मेटिक हो गया, आपका चीरा नहीं मारा गया, बहुत छोटा चीरा मारा गया। उस छोटे चीरे से आप जो सर्जरी कर रहे हैं, अपने छोटा दूरबीन डाला, एंडोस्कोप डाला, उसको जो भी चीज़ है डिजीज पैथोलॉजी है उसको आपने रिमूव किया, तो ऑपरेशन के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या ऑपरेशन के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ये एडवांसमेंट हो गया मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के माध्यम से।
1: ये ठीक भी जल्दी हो जाती है, जो घाव
3: रिकवरी जल्दी हो जाती है, घाव जल्दी भर जाता है। कई बार मान लीजिए आपने 7-8 टांके लगाने का अवस्था है, आपको एक ही दो सिंगल स्टिच से काम चल जाता है। तो नेचुरली सी बात है कि अगर आप चीरा लंबा मारेंगे तो चांसेज आप इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। अगर आप मिनिमली करेंगे, बहुत छोटा स्मॉल चीरा मारेंगे, उससे कोई चीज़ निकालेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम उसके होते हैं।
1: ये एंडोस्कोपिक सर्जरी क्या है और किन रोगों में हम इनका उपयोग कर सकते हैं या आप करते हैं?
3: इंडोस्कोपिक सर्जरी मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं नोज के केस में, जो नाक की बीमारियाँ होती हैं, जैसे नाक के अंदर पॉलीप आ गया है, नाक के मांस बढ़ गया है
1: जी,
3: DNA से हड्डी नाक की टेढ़ी हो गई है, इवन आँख का जो पानी आता है, जो नाक का जो नली ब्लॉक हो जाती है, आंसू की नली ब्लॉक हो जाती है, उसको हम लोग इंडोस्कोप के माध्यम से, नोज के माध्यम से ठीक करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ब्रेन ट्यूमर है
1: जी,
3: स्कल बेस्ड ट्यूमर होते हैं, उसको हम लोग इंडोस्कोप के माध्यम जाके ट्यूमर को निकालते हैं। ऐसा करने से चीरा मारने की अवस्था नहीं पड़ती, सारा काम इंडोस्कोप नाक के अंदर से दूरबीन के माध्यम से सब सर्जरी पॉसिबल हो जाती है।
1: आपने कहा कि आँख में पानी आता है, मतलब आमतौर पर व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट या नेत्र सर्जन के पास जाता होगा, ये ENT की समस्या है?
3: नहीं, इसमें ये आई और ENT की कम्बाइंड प्रॉब्लम है। इसमें जो नली होती है आंसू की, वो आके नाक के अंदर खुलती है, तो कई बार क्या होता है कि वो नली ब्लॉक

0: हो जाती है, तो आँख के निचले पार से पस आना स्टार्ट हो जाता है या लगातार पानी आता रहता है। तो ऐसे केस में जो आई सर्जन सर्जरी करते हैं तो वो स्टर्नल आँख के बाहर से चीरा मार की जाती है। ईएनटी में क्या होता है, ईएनटी सर्जन करता है तो वो नाक के अंदर इंडोस्कोप के माध्यम से उसी सर्जरी को करता है और जहाँ ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉक को रिलीज करता है। तो जो हमारा लेक्राइमल टीयर्स होते हैं, जो हमारे आंसू होते हैं, नेचुरली अपने आप से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं।
1: जी
0: तो इसमें समय कम लगता है,
1: जी
0: ब्लीड नहीं करता है, ब्लीडिंग के चांस बहुत कम होते हैं, सक्सेस रेट इसका बहुत अच्छा होता है
1: जी
0: इंस्टेड ऑफ अगर हम आँख के बाहर से चीरा मार करते हैं तब।
1: बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर शुक्ला। आप बीच में कुछ एक म्यूजिकल ब्रेक लिया जाए, कोई एक गीत अगर आप अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें।
0: जरूर अभिनव जी, लग जा गले इस।
1: क्या बात है, क्या बात है, लता जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। आइए सुनते हैं ये गीत।
2: Thank you.

0: बहुत ही खूबसूरत गीत था डॉक्टर अजय शुक्ला। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं डॉक्टर शुक्ला जो आनुवांशिक होती हैं ENT में?
1: जी, जैसे बहरापन है, इस समय देखा जा रहा है कि बहरापन पहले भी था, लेकिन पहले उसको हम लोग डायग्नोज नहीं कर पाते थे,
0: जी
1: उतने संसाधन नहीं थे डायग्नोज करने के लिए, ना उतने डॉक्टर्स थे। अब तो बहरापन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, लोग डायग्नोज कर ले रहे हैं, उसकी सर्जरी हो जा रही है, तो ये अनुवांशिक हो जाता है बहरापन।
0: कई लोगों में देखने में आता है और बच्चों में भी ये देखने में आता है कि नाक की हड्डी में उनके टेढ़ापन आ जाता है। खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आम तौर पर ये समस्या नज़रअंदाज की जाती है। क्या इसका भी कुछ सरल, सुगम,
1: जी,
0: दर्दहीन उपाय
1: अगर
0: है?
1: नाक की हड्डी में टेढ़ापन है तो उसमें मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है, लगातार जुकाम बनी रहती है, सांस उसको नहीं आ पाती है, तो उसको एंडोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं हम लोग, एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी, दूरबीन के माध्यम से नाक के अंदर से उसकी जो हड्डी टेढ़ी है उसको सीधा कर दिया जाता है। और एक तो ये हो गया, उसको सांस लेने में आराम मिल जाता है। सेकेंड चीज, जैसे बहुत सारे बच्चे उसमें पुलिस भर्ती में जाते हैं, आर्मी की भर्ती में जाते हैं,
0: जी
1: तो वहाँ पर ऐसे लोगों को अनफिट कर दिया जाता है, ये मानते हुए कि भाई अगर आपकी हड्डी नाक की टेढ़ी है तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप किसी काम में भेजा जाएगा, दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे, तो आपके नोज से प्रॉपर सांस नहीं आ पाएगी, तो अपना वर्क कायदे से आप नहीं कर सकते हैं, उनको उसमें अनफिट कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में भी उसको दूरबीन के माध्यम से, एंडोस्को के माध्यम से जो टेढ़ी हड्डी है सीधा कर दिया जाता है उसको।
0: आपने सांस लेने की बात की, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कई बार मुंह खोल करके सांस ले रहे हैं, क्या ये भी कोई समस्या है?
1: जी, इस समय बहुत ही अच्छा टॉपिक पूछा विनोद जी आपने। इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर बच्चे मुंह खोले सांस लेते हैं, और उनको हम लोग घर वाले सोचते हैं कि ठीक है, जुखाम सिंपली जुखाम है, बच्चा बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हमारा जहाँ यूला होता है, नेजोफेरिंग्स एरिया होता है, नाक के पीछे का पोर्शन होता है, उसमें एक मांस होता है, बोलते हैं एडिनोइड्स, ऐसे बच्चों में एडिनोइड बढ़ जाते हैं, तो बच्चे नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, लगातार मुंह खोल सांस लेते हैं, बच्चों के आगे के दांत बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। भाई नेचुरली सी बात है, अगर हम जैसे हम आप बात कर रहे हैं तो अपने आप सांस नाक से आ जा रही है, हमें पता भी नहीं है हम कब सांस लिए कब सांस नहीं ले रहे हैं। जब बच्चा लगातार मुंह खोल सांस लेता रहेगा तो उसका पूरा फोकस रहेगा कि मुझे सांस लेना है, बाकी चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं जाता है। तो इसमें हम लोगों ने डिबाइडर कॉर्बुलेटर मशीन्स आ गई हैं, कॉर्बुलेटर के माध्यम से जो एडनॉइड सर्जरी करते हैं, और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, और ये एक तरीके से रामबाण है, बूम माना गया है, कॉर्बुलेटर मशीन का जो आविष्कार हुआ एडनॉइड सर्जरी के लिए, उस सर्जरी में कोई चीरा कट नहीं मारा जाता है, एंडोस्कोप के माध्यम से, कॉर्बुलेटर मशीन के माध्यम से एडनॉइड्स को निकाल दिया जाता है, तो उसके बाद बच्चों को बहुत अच्छी सांस आती है।
0: एक और गीत हमारे श्रोताओं के लिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। वॉइस ऑफ प्रयागराज के अगले एपिसोड में इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शुक्ला से बातचीत कर रहे थे अभिनव प्रज्ञा पांडे। प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज के

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए लोकगीत का कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं शिवलाल गुप्ता। सबसे पहले सुनिए इनके स्वर में ये देवी गीत।

शिवलाल गुप्ता के गाए इस कजरी के साथ ही लोकगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही कलाकार।

ट्रांसमीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही कलाकार। आज के कलाकार हैं शैलेंद्र।

कला वही है जो समय बीत जाने के बाद भी इंसान के भीतर कुछ जगा दे। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे ही एक कलाकार थे शैलेंद्र। वे केवल गीतकार नहीं थे, वे उन भावनाओं के कवि थे जिन्हें एक साधारण इंसान महसूस तो करता है लेकिन शब्दों में कह नहीं पाता।

शैलिन का जन्म अगस्त महीने में 1923 में हुआ था। उनका जीवन किसी राजसी सुविधा से शुरू नहीं हुआ, संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी पहचान बनाई। शायद यही कारण है कि उनके लेखन में चमक दमक से ज़्यादा जिंदगी की सच्चाई दिखाई देती है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सादगी में गहराई।

वे कठिन शब्दों के पीछे नहीं छिपते थे, उनके शब्द इतने सहज थे कि एक आम आदमी उन्हें समझ सकता था, लेकिन इतने गहरे कि विद्वान भी उनमें अर्थ खोज सकता था। शैलेंद्र को उनके रचनात्मक योगदान के लिए 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकन मिला और वे हिंदी फिल्म गीत लेखन के सबसे प्रतिष्ठित नामों में गिने जाने लगे।

लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पुरस्कार नहीं थी, उनके सबसे बड़ी उपलब्धि थी तीसरी कसम। शैलेन ने इस फिल्म को केवल लिखा नहीं बल्कि स्वयं निर्मित भी किया। फिल्म को बनाने में उन्हें आर्थिक और व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। अंततः तीसरी कसम को 1967 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यही शैलेन हमें जीवन का पहला पाठ सिखा देते हैं।

सफलता हमेशा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अपने विश्वास पर टिके रहना अपने आप में एक सफलता है। उनकी सोच में इंसान सबसे ऊपर था, उनके शब्दों में प्रेम था, लेकिन साथ ही गरीबी, अकेलापन, संघर्ष और उम्मीद भी थी। उन्होंने सिखाया कि कविता केवल सुंदर शब्दों का नाम नहीं, कविता वह है जो इंसान के दर्द को भी आवाज़ दे।

आज की पीढ़ी के लिए शैलेंद्र का जीवन एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ता है। प्रसिद्ध होने के लिए अपने शब्द मत बदलो, अपने शब्दों में इतनी सच्चाई लाओ कि वे समय उन्हें बदल ना सके। शैलेंद्र आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और रचनाएं आज भी जीवित हैं, और शायद किसी कवि के लिए इससे बड़ा पुरस्कार हो भी क्या सकता है।

पुरस्कार अलमारियों में रखे जाते हैं, लेकिन सच्चे शब्द पीढ़ियों के दिलों में रह जाते हैं। शैलेन ने सिर्फ गीत नहीं लिखे, उन्होंने जिंदगी के अलग अलग रंगों को आवाज दी। कभी उम्मीद बनकर, कभी दोस्ती बनकर, कभी सवाल बनकर और कभी जीवन का दर्शन बनकर।

इस गीत के साथ ही एक ही कलाकार संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं AIR ऐप पर भी। जी, आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं अगम अग्रवाल को फिल्म महादेव का गोरखपुर में। देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, किए दूर दुख सबिन के, जिन जिन कर जोरे।

आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल को फिल्म गुरु में। कुछ रिश्ते मिट्टी की तरह होते हैं, बारिश पड़ते ही महक जाते हैं, और चाहे कितनी दूरियां हों, कुछ लोग दिल में रह ही जाते हैं।

आइए अब सुनते हैं बागी टू में मुलाली ठाकुर और अमाल को। हर बारिश कुछ कहती, हर बूंद एक पैगाम है, चाहे जिंदगी जितनी भी सूखी हो, उम्मीद का मौसम हमेशा कायम है।

आइए अब सुनते हैं सूर्यवंशी फिल्म में उदित नारायण और अलका याग्निक को सावन की बूंदों से पूछो कितना सुकून बरसाती हैं, कुछ यादें जब साथ हों तो बारिशें गजल।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह को। बारिश की हर बूंद करती है थोड़ा ठहर जाया करो, जिंदगी बहुत तेज चलती है, कभी खुद को भी जिया करो।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शिक्षा मनुष्य में आत्मविश्वास जगाती है, खुद शिक्षित बनिए और दूसरों को साक्षर बनाइए। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे।

दो दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक

0: वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सदस्यता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम सोमवारी के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी गेट खोलने का अनुरोध किया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। चायकाल तक भारत ने 6 विकेट पर 419 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today urged Japanese companies to expand their operations in India and create success stories similar to Suzuki, and said the country would like to see 1,580 Suzukis emerge from the Japanese firms operating in India. Addressing a roundtable meeting with the Japan-India Business Consultative Committee of the Japan Chamber of Commerce and Industry and the Embassy of India, Goyal said India's young workforce, expanding economy and long-term growth ambitions offer significant opportunities for Japanese businesses. Goyal said India and Japan should use the 75th anniversary of diplomatic relations to deepen business collaboration and shape their economic partnership for the coming decade. External Affairs Minister S. Jaishankar will co-chair the 27th India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में दोपहर 12:15 पर पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन हम आपको सुनवाएंगे। रात 10:30 मधुसूदन भावे का ख्याल गायन होगा। 12:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में महिलाएं सुनेंगी रूपक, हिंदी फिल्मों में सावन। 2:30 NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम होगा। शाम की सभा में नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम नन्हे दुनिया। 5:15 यूजन अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवा वाणी। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे शिवलाल गुप्ता के स्वर में लोकगीत के

अलावा नागेंद्र मणि मिश्र से लोक भाषा कविता पाठ, पशुओं में नस्ल सुधार, इस विषय पर डॉक्टर प्रिया दर्शना राव से चंद्रजीत यादव की बातचीत सुनवाई जाएगी।

7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में सूर्य नारायण की वार्ता हम आपको सुनवाएंगे, दलित साहित्यकार और प्रतिरोध के स्वर। 7:45 पर सुगम संगीत की कलाकार होंगी मंजू नारायण। 8:30 विज्ञान जगत में हम आपको सुनवाएंगे वार्ता डॉक्टर आशुतोष शुक्ल की, क्वांटम कंप्यूटिंग अगली तकनीक क्रांति। 9:30 कहकशा कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजलें। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचना सुनिए। मोना देवी पत्नी सुधीर कुमार, निवासी ग्राम खुजा थाना मोहम्मदपुर पायंसा जनपद कौशाम्बी। मोना देवी की उम्र है 22 वर्ष, रंग गोरा है, कहरा बदन है और ये साड़ी ब्लाउज पहने हुए हैं। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9035600308 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 9035600308। एक और सूचना सुनिए। कविता देवी पुत्री राजकुमार पाल, निवासी हिसामपुर थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी। कविता देवी की उम्र है 20 वर्ष, एकहरा बदन है, रंगे हुआ है, ऊंचाई है 5 फुट। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 8953143148 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 8953143148। एक और सूचना सुनिए। नीरज केसरवानी पुत्र शिव पूजन केसरवानी, निवासी महमूदपुर थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी। नीरज केसरवानी की उम्र है 26 वर्ष, एकहरा बदन है, रंग सांवला है, ऊंचाई है 5 फुट 5 इंच। इनकी सूचना मिलने पर महमूदपुर थाना पिपरी जनपद पर सूचित करें। मानसी देवी पत्नी दिनेश कुमार, निवासी निखोदा थाना महेवा घाट जनपद कौशाम्बी। मानसी की उम्र है 20 वर्ष, गोरा रंग है और ऊंचाई है 5 फीट। इन्होंने पीले रंग का सलवार सूट और लाल दुपट्टा पहना हुआ है। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 9792531483 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 9792531483 पर सूचित करें। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन राग शुद्ध सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सी आर व्यास का ख्याल गायन राग शुद्ध सारंग। इनके साथ हारमोनियम पर संगत की थी पंडित पी वालवारकर ने, तबले पर पंडित नाना मूले ने, तानपुरे पर सुहास व्यास और गायतोंडे ने। विलंबित रचना झपताल पर निबद्ध थी बोल थे ख्वाजा दीन दुनिया में। द्रुत रचना तीन ताल पर निबद्ध थी बोल थे परायण पारो तोरे। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ, एक और एक मिलकर दो हो जाएं ये गणित है, और एक मिलके 11 हो जाएं तो ये संगठन है, एक और एक मिलकर एक ही रहें।

तो ये प्यार है। इन पंक्तियों के साथ ही हम शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत से। तो इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है, चलिए पहले उनके नाम बता देते हैं। हमीरपुर से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा, पार्थ कश्यप, उमेश और प्रमिला वर्मा। दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब। ग्राम सुखरी कला से अमित जंघैल, शकुन जंघैल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघैल। आर्यनगर छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघैल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का सीता और गीता फिल्म का ये गाना।

देखिए, किसी ने क्या खूब बात कही है, किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो, और किसी की नीयत देखनी है तो उसे कर्ज दो, और किसी का सब्र देखना है तो उसे हिदायत देकर देख लो। तो चलिए, आ गया है अब हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम है सौदागर और आवाज़ है लता मंगेशकर की। और इस गीत की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं की है, उनके नाम है धनौली से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान, नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विनी, मंगला बेन और राजेंद्र जी शाह, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और अंकित कांगड़ा, बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक, पीहू कुमार, विमल, ममता रानी, छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देव, देवांशु और डब्लू जी। तो चलिए सुनते हैं सौदागर फिल्म का ये गाना।

और कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है बिहार से हैं सनंदन कुमार, नंदन कुमार, मंजय कुमार और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं दिलशाद हुसैन, प्रयागराज से दीपा प्रजापति, ऋषभ, कुसुम, देवी, ऋतिक और इनके परिवार के अन्य सदस्य। सनावत से दिलीप मालकार, सुनीता मालकार, योगेश, मुस्कान, बाबूलाल चौधरी, निर्मलाबाई चौधरी। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ कुमार और इनके परिवार के अन्य सदस्य। आप सब सुनना चाहते हैं संगम फिल्म का ये गाना, आवाज मोहम्मद रफी की।

श्रोताओं, कौशाम्बी से शिवांश मौर्य जी ने एक संदेश लिखा है, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, पर दोस्त तो हमेशा दिल के करीब रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आँखों का पानी बनकर। अरे वाह भाई वाह, शिवांश जी आपने बहुत ही प्यारी सी, बड़ी ही खूबसूरत सी बात कही है। और देखिए, अब आ गया है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं और इस गीत की फरमाइश हमें आई है पंजाब से। जी हाँ, पंजाब से आई है और इस गीत को पसंद करने वालों का नाम है डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू और इनके परिवार के अन्य सदस्य जमशेदपुर से, विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार, आर्य कुमार, गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो चलिए सुनते हैं हम सब चोर हैं इस फिल्म का ये गाना।

और देखिए चलते चलते हम लोग आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत पर, और इस गीत की फरमाइश की है ताज मंजिल से मोहम्मद रफ़ीक पवार, बेनज़ीर, मोहम्मद सकीब, अलमास शंकर लाल, वनीता, मोहम्मद हुसैन, महाराष्ट्र से शंकर लाल, गणेश लाल शुभम और दुर्गेश्वरी देवी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, वामिका, वाणी और इनके परिवार के अन्य सदस्य आप सब सुनना चाहते हैं चलते चलते फिल्म का ये गाना। आप सुनिए ये गीत और दीजिए मधु को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर आज एलुरु जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गोमे पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की

से अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये फोरम लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम

फरीदाबाद में 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी लेनदेन के मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और फिल्ट्रेशन सिस्टम की सफाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोत, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्र तथा पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कम से कम 8-9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत के मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को कवर करेंगे। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 विकेट पर 437 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी सरजमी पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बरसाती बूंदों की रिमझिम में कुछ पल खुद से भी मिल जाइए, मोबाइल की दुनिया से निकलकर अपनों संग मुस्कुराइए।
1: सावन की फुहारें कह रही हैं, जीवन को फिर से महसूस कीजिए। स्क्रीन से नजरें हटाकर प्रकृति के रंगों को भी थोड़ा जी लीजिए।
0: नमस्कार श्रोताओं, सावन की सुहानी फुहारों और प्रकृति की मनमोहक खुशबू के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अपने प्रिय महिला कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में मैं हूँ रितंद्रा मिश्रा।
1: और मैं हूँ मंदाकिनी तिवारी। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज लगभग हर घर से जुड़ा है, लेकिन उसके पहले अपने कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: इस प्यारे से गीत के बाद अपने कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और चर्चा शुरू करते हैं आज के खास विषय पर, जो है स्क्रीन टाइम का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो श्रोताओं, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इनका बढ़ता उपयोग कई नई स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे रहा है। आइए जानते हैं कि स्क्रीन टाइम हमारे शरीर और मन को किस तरह प्रभावित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
1: तो श्रोताओं, आज बच्चे हो या बड़े, पढ़ाई हो या नौकरी, मनोरंजन हो या खरीदारी, हर काम के लिए स्क्रीन का उपयोग बढ़ गया है। लेकिन लगातार घंटों तक स्क्रीन देखने से कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंखों की। अगर आप लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर देखते हैं तो इससे आंखों में जलन, सूखापन, धुंधला दिखाई देना और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
0: और दूसरा प्रभाव पड़ता है नींद पर। रात में देर तक मोबाइल चलाने से स्क्रीन से निकलने वाली जो रोशनी होती है वो हमारे मस्तिष्क को
1: भ्रमित करती है,
0: जिससे नींद आने में परेशानी होती है और अच्छी नींद नहीं मिलती।
1: और इसका असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी होता है। लगातार सोशल मीडिया पर बने रहने से तनाव, चिंता, अकेलापन और दूसरों से तुलना करने की जो आदत होती ना, ये बढ़ सकती है। और कई बार लोग वास्तविक जीवन से अधिक आभासी दुनिया में खो जाते हैं।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा मंदाकिनी लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर स्क्रीन देखने से गर्दन, पीठ और कमर में दर्द, मोटापा और शारीरिक गतिविधि में कमी जैसी बहुत सारी जो समस्याएं वो बढ़ने लगती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अब सवाल है इससे बचाव के लिए, तो उसके लिए क्या क्या है
1: भाई? तो हर 20 मिनट बाद या 20 सेकंड के लिए लगभग 20 फीट की दूरी से किसी वस्तु को देखें, इससे आंखों को आराम मिलेगा। स्क्रीन का उपयोग सीमित करें और बीच बीच में छोटा ब्रेक अवश्य लें। और रात को सोने से कम एक घंटा पहले मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग बंद कर दें।
0: बिल्कुल। और बच्चों, स्क्रीन टाइम पर विशेष ध्यान दें, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और उन्हें खेल

0: तथा रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें। ये याद रखिए कि तकनीक हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन यदि हम उसका संतुलित उपयोग न करें या नहीं किया जाए तो वही सुविधा स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन सकती है ना?
1: बिल्कुल। तो श्रोताओं, आइए आज हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें। स्क्रीन का उपयोग जरूरत के अनुसार करेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य, परिवार और प्रकृति के लिए भी समय निकालेंगे। और देखिए, इसी के साथ अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो भाई इस खूबसूरत गीत के साथ अब कुछ चर्चा हो जाए
1: बिल्कुल
0: तो बच्चों से कहना चाहेंगे, नन्हे मन के अनगिनत सपने, नन्ही नन्ही उड़ान, और प्रश्नों से ही लिखता बचपन, प्रश्नों से पहचान।
1: जिज्ञासा की छोटी चिंगारी बन जाती है ज्ञान का प्रकाश, यही है बच्चों की सबसे सुंदर और अनमोल आस।
0: तो श्रोताओं, भाई बच्चों का मन एक कोरी कागज की तरह होता है, वे हर नई चीज़ को जानना, समझना, सीखना चाहते हैं। यही जिज्ञासा उन्हें खोज करने, नए अनुभव लेने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
1: श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि छोटे बच्चे दिन भर कितने सवाल पूछते हैं, है ना, कि आसमान नीला क्यों है, बारिश कैसे होती है, चिड़िया उड़ती कैसे है, है ना। तो ये सारे सवाल ये केवल प्रश्न नहीं होते बल्कि सीखने की शुरुआत होती है। इसलिए बच्चों, इन प्रश्नों का जो भी पूछते हैं उनका को भी कभी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो भी प्रश्न पूछिए उसका जवाब देना
0: बिल्कुल चाहिए। और सबसे पहला कदम है बच्चों की बात ध्यान से सुनना। जब बच्चा कोई प्रश्न पूछे तो उसे डांटने या टालने के बजाय धैर्यपूर्वक उत्तर देना। यदि उत्तर न पता हो तो उसके साथ मिलकर खोजने का प्रयास करें। इससे बच्चे में सीखने का उत्साह बढ़ता है।
1: और बच्चों की जो कहानियां हैं, पुस्तकें हैं, रोचक गतिविधियां हैं, उन्हें उसको उपलब्ध कराइए। अच्छी किताबें बच्चों की कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता को बढ़ाती है और बच्चों का जो नेचर है उसको आपकी प्रकृति से जोड़ने के लिए सहायक होती है।
0: बिल्कुल। और देखो बच्चों, तीसरा, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। उन्हें बगीचे, खेत, संग्रहालय, विज्ञान प्रदर्शनी या ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाएं। वास्तविक अनुभव उनकी जिज्ञासा को और गहरा बनाते हैं।
1: बिल्कुल। और श्रोताओं, बच्चों को प्रयोग अवश्य करने दें। छोटे छोटे विज्ञान के जो प्रयोग होते हैं उनको करने दें। जैसे इसके अलावा चित्रकारी है, हस्तकला है, म्यूजिक है, बागवानी है, ऐसी जितनी भी गतिविधियां हैं उन्हें जोड़ें, नई चीज़ों को सीखने का अवसर प्रदान करें और उनकी सहायता करें।
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है ये कि बच्चों से

0: कभी यह न कहें कि इतने सवाल मत पूछो, बल्कि उन्हें यह महसूस कराएं कि सवाल पूछना अच्छी बात है। यही आदत उन्हें जिज्ञासु, आत्मविश्वासी, रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच वाला बनाती है ना?
1: बिल्कुल।
0: और देखो मंदाकिनी, अब अपने खास प्रोग्राम जो आज का है हमारे रूपक, जो वंदना राठौर और कंचन पांडे लेकर
1: प्रस्तुत हैं
0: और उसका नाम है हिंदी फिल्मों में सावन। और सावन वास्तव में एक मनमोहक सावन होता है सभी के लिए, तो चलिए सुनते हैं।
2: ये अंबर पे बादल, ये बूंदों की कलकल, मंजर ये सारा हुआ देखो जलथल,
3: ये झूलों की हलचल, ये मन होता चंचल, भीगा हुआ जाता धरती का आंचल,
2: चमके है बिजली तो गरजे है बादल, हरियाली ओढ़े
3: यूं उतरा है सावन।

0: बारिश की पहली बूंद जब सूखी धरती को छूती है तो केवल मिट्टी की खुशबू ही नहीं उठती, उठती है स्मृतियों की एक पूरी दुनिया।
1: पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, आकाश में बादल उमड़ते हैं और मन अनायास सावनी गीत गुनगुनाने लगता है।
0: इसी मन भावन मौसम का नाम है
1: सावन।

0: जब सावन आता है तो भीग जाती है मन की रचनात्मकता भी। कविताओं में बादल उतर आते हैं, गीतों में झूले पड़ जाते हैं और प्रेम की भावनाएं बारिश की बूंदों की तरह शब्दों में झरने लगती हैं।
1: और बूंदों की तरह झरते शब्दों को अपनी सुरों की सरिता में ढाल संगीतकार जब इन गीतों का श्रृंगार करता है, तब सिने आकाश पे झूम के बरसता है सावन।

0: रिमझिम गिरते सावन की मखमली बूंदों से अभिसिंचित धरती का मन प्रेम की हरितिमा की विस्तारित सुर तरंगों पर जब नाच उठता है, तब भीगी हवा की थाप पर बजती पत्तियों का रिदम सृजन के न जाने कितने सावनी अध्याय रच डालता है।
1: सावन के महाकाव्य के सावनी अध्याय को बांचने, उसे जानने समझने के लिए ही तो भारतीय फिल्म संगीत में केवल प्रकृति का चित्रण ही नहीं किया गया, बल्कि उसमें हमारे मन और मन के भीगे एहसासों को भी डोलते देखा जा सकता है।
0: छम छम नाचती ये सावनी बूंदे कभी विरह की पीड़ा सी लगती हैं, तो कभी मिलन की खुशी, कभी समाया होता है इनमें कुदरत की खूबसूरती का जश्न।

0: हवस ऋतु नारी नर सावन रस रिमझिम संगीत सुहावन सारस के जोड़े सरवर में सुनते रहते बादल राग सतरंग चूनर नवरंग पाग।
1: वर्षा ऋतु का मंगल गान करती पंडित नरेंद्र शर्मा की ये पंक्तियाँ मन पर जादू टोने सा असर कर रही हैं।
0: एक ओर जहाँ आस्था श्रावण मास में शिव की आराधना की पवित्रता को उद्भासित करती है, तो वहीं दूसरी ओर रचना धर्मी अनुराग की स्याही से मिलन विरह के विरोधाभास का अद्भुत समन्वय रचते हैं।
1: अब देखिए ना, महाकवि कालिदास के मेघदूतम में बादल केवल आकाश में तैरता हुआ जल वाष्प नहीं है, वो संदेश वाहक है, एक विरही यक्ष का संदेश लेकर दूर अपनी प्रिय तक जाने वाला दूत।
0: और इसी मेघदूत को आधार बनाकर वर्ष 1959 में प्रदर्शित कवि कालिदास फिल्म में गीतकार भरत व्यास ने रचा, तो विरह वेदना की असीम धारा से सुनने वालों का मन द्रवित हो उठा।

0: सिने संगीत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी सुर सरिता में पगे सावनी गीतों में प्रकृति निर्जीव नहीं रहती, बल्कि हमारे सुख दुख की साथी बन जाती है।
1: बूंदों को निहारते हुए न जाने कब मन में जाग उठता है शैतानियों से लबरेज बचपन। बचपन जिसके लिए बारिश के मायने स्कूल से छुट्टी, शरारतें, उल्लास और मस्ती के रंग होते हैं।
0: कितनी ही यादें बावस्ता है बचपन की इस भीगी ऋतु से। जहन में तैरने लगे हैं तालाब बने मैदान, उन पर तैरती कागज की नाव और हंसती हुई खिलखिलाहटों के साथ चाक धूम धूम की अनगूंज।

0: दिल तो पागल है फिल्म का ये चहकता गीत गीतकार देव कोहली के भावपूर्ण चंचल गीत में सजकर और उत्तम सिंह के अद्भुत संगीत में ढलकर निश्चलता का बोध करा गया।
1: ये सारी रचनाकारी हमें इस बात का भी भान कराती है कि धरती का सबसे सुंदरतम रूप बारिश में ही उजागर होता है।
0: सावन का एक रूप लोक गीतों में भी दिखाई देता है। गांवों में झूलों की पेंग बढ़ती है, सखियां मिलकर सावन के गीत गाती हैं।
1: इसलिए सावन केवल बारिश का महीना नहीं, ये रिश्तों को फिर से महसूस करने का मौसम है।
0: आसमान से गिरती रिमझिम फुहारों को देख कहीं कोई मन ही मन अपने प्रिय की प्रतीक्षा करता है, कहीं नवविवाहिता अपने मायके की गलियों को निहारती हुई बाबुल से गुहार करती हुई कह उठती।

0: जरा सोचिए, अगर बारिश बोल सकती तो वो क्या कहती?
1: शायद वो कहती, जो सूख गया उसे फिर हरा कर दो,
0: या फिर जो मन उदास है उसमें फिर से उम्मीद भर दो,
1: या जो रिश्ते दूर हो गए हैं उन्हें फिर से आवाज दे दो।
0: सच यही संदेश सावन देता है। खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें हमें पुराने दिनों तक ले जाती हैं। मिट्टी की सौंधी गंध बचपन की गलियों की याद दिलाती है, और किसी पुराने गीत की धुन अचानक किसी भूले हुए चेहरे को हमारे सामने ला खड़ा करती है।
1: फिल्मी गीतों में सावन स्त्री मन की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अवसर भी बनकर आता है। झूले, कजरी, मल्हार और लोकगीत, इन सब में स्त्रियों की भावनाएं, सपने और विरह बोलते हैं।

बारिश जब बाहर होती है तो सड़कें भीगती हैं, लेकिन बारिश जब भीतर होती है तो मन भीगता है। अजीब रिश्ता है बारिश और मन का। आसमान में बादल घिरते हैं और न जाने क्यों मन के किसी कोने

0: में भी पुरानी यादों की खिड़की खुल जाती है।
1: बारिश की बूंदें सिर्फ मिट्टी की खुशबू नहीं लाती, ये साथ लाती हैं किसी का इंतजार, किसी की आवाज, किसी अधूरी मुलाकात की याद
0: और कभी कभी बिना वजह मुस्कुराने की एक वजह।
1: तो कभी दिल में उठती हूक अखियों के रास्ते पहचाने की विनती करती है।

0: कजरारी काली घटाएं, रिमझिम फुहारे, मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू मन को मोह लेती है। किसी ने सच ही कहा है, सावन मन का वो भागवत है जिसके आनंद को बस मन ही बांचता है।
1: सावन की झड़ी में नृत्य की पुलक समाई रहती है, जो बरसती नहीं थिरकती है।

0: खिड़की के बाहर गिरती बूंदें जैसे मन से कहती हैं, जो कह नहीं पाए उसे आज महसूस कर लो।
1: शायद इसलिए सावन का मौसम हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता।
0: किसी के लिए पहली मोहब्बत है,
1: किसी के लिए बिछड़ने की याद,
0: किसी के लिए बचपन की गलियां,
1: किसी के लिए बस एक कप चाय और लंबी खामोशी,
0: तो किसी के लिए सावन में दो दिलों के मिल न पाने की तड़प समाई होती है।

0: जब कभी सप्तरंग में झिलमिलाते गीतों का इंद्रधनुष रेडियो के वितान पर गूंजता है, तब हमारी भावनाओं का कैनवस भी बहुरंगी सावन के रंग से रंग उठता है।
1: बारिश रुक जाती है, सड़कें सूख जाती हैं, बादल छट जाते हैं, लेकिन मन का मौसम
0: वो इतनी जल्दी नहीं बदलता। कभी एक बूंद पूरा सावन जगा देती है और कभी पूरा सावन भी मन की एक बूंद को सुखा नहीं पाता,
1: क्योंकि बारिश आसमान से बरसती है और मन का मौसम भीतर से।

0: सावन की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि वो बाहर जितना बरसता है भीतर उससे कहीं अधिक बरसता है।
1: और गीत इन्हीं क्षणों को शब्द देता है। तो आइए इस सावन हम केवल बारिश को ना देखें, उसे पढ़ें भी।
0: बादलों में कविता खोजें, बारिश में कहानी सुनें,
1: झूले की पेंग में लोक गीत महसूस करें और भीगी हुई मिट्टी में अपनी स्मृतियों की खुशबू पहचाने।
0: क्योंकि सावन जब मनभावन गीतों से मिलता है तो मौसम सिर्फ मौसम नहीं रहता, एक अनुभूति बन जाता है।

0: आप जहाँ भी हो, इस सावन अपने भीतर के कवि को जरूर जगाइए। किसी किताब के पन्ने को खोलिए, खिड़की के पास बैठिए और बारिश को थोड़ी देर सुनिए।
1: क्या पता अगली कविता आपके

0: तो श्रोता, आप सुन रहे थे रूपक, हिंदी फिल्मों में सावन। वाचन स्वर थे वंदना राठौर और कंचन पांडे के, प्रस्तुति थी अभय कांत तिवारी की।
1: और मंदाकिनी भाई, जो कलेक्शन था गीतों का, फिल्मों के गीतों का,
0: बहुत ही
1: वास्तव में
0: लाजवाब।
1: आनंद कर गया। और मेरा भी मन कुछ, जैसा कि वंदना और कंचन ने कहा, कुछ लिखने को कहा, तो मैं अभी अभी एक लाइन मैंने सोचा, मगन मन मुग्ध होता है खुशी से, नाचती हूँ मैं कसौटी पर परस्पर नेह को जब जांचती हूँ मैं, मिलन की आस में सहसा तड़प उठता हृदय मेरा, तुम्हारी प्रेम की पाती को जब भी बांचती हूँ
0: क्या बात है। तो देखिए,
1: मैं।
0: इसका प्रभाव आप पे बहुत ही अच्छा पड़ा। हमारे
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं ने भी काफ़ी आनंद उठाया होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई, सावन की इन फुहारों के बीच हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है निखार का। तो रितंद्रा जी, आज हम निखार सेगमेंट में ले आए हैं कि जो मानसून का समय है, इसमें हम नाखूनों पर कैसे अपनी
1: बिल्कुल,
0: देखभाल
1: और
0: दें।
1: महिलाओं के लिए खास जरूरतमंद है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: तो श्रोताओं देखिए, भाई महिलाओं के नाखून हो चाहे पुरुषों

0: के चाहे बच्चों के, नाखून तो सभी के हैं
1: बिल्कुल
0: और सबको देखभाल की जरूरत है। तो बारिश के मौसम में अक्सर क्या होता है रितन्हारा जी, कि नमी बहुत ज्यादा हो जाती है,
1: बिल्कुल
0: मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिससे अक्सर फंगल इन्फेक्शन, इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। और ये इन्फेक्शन जो होता है सिर्फ हमारे स्किन या बालों में नहीं, नाखूनों में भी देखने को
1: बिल्कुल
0: मिलता है। और इसको बचाए रखने के लिए आपको करना क्या है कि जो अपने हाथ जब आप धोते हैं तो उनके बीच जो उंगलियों की जगह होती है,
1: हाँ
0: हाँ, उनको धुलने के बाद अच्छे से सुखाइए, क्योंकि जब अगर नमी रह जाती है ना तो वहाँ पे भी देखिएगा स्किन आपकी थोड़ी सी वैसे
1: बिल्कुल
0: हाँ एकदम श्रिंक सी हो जाती है और फूल सी जाती है, तो
1: बिल्कुल
0: ये इन्फेक्शन का ही आपको।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी एक चीज मुझे याद है कि देखो, नाखून बहुत लंबे न रखें, और लंबे नाखूनों में गंदगी और कीटाणु आसानी से जमा हो जाते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: तो समय समय पर नाखूनों को काट कर साफ रखें।
0: बिल्कुल। और देखिए, हाथ धुलने के बाद मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूर करिए। बार बार हाथ धोने से क्या होते हैं, जो नाखून के क्यूटिकल्स होते हैं वो सूख जाते हैं। और रात में सोने से पहले थोड़ा नारियल तेल और मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, है ना। और
1: बिल्कुल
0: नेल पेंट लगाते हैं तो उसमें भी सावधानी रखिए कि ज़्यादा ज़्यादा बार आप उसको रिमूव करके नेल पेंट को मत लगाइए, कोशिश करिए ओकेजनली ही उसको यूज़ करिए। और साफ़ सफाई के जो भी आपके टूल्स और औजार हैं, जैसे भाई नेल कटर है, फाइल है, इन सब का भी प्रयोग तभी करिए जब ज़रूरत हो। और ख़ास तौर पे खान पान का ध्यान देना है कि प्रोटीन, हरी सब्जियां, फल, दूध और पर्याप्त पानी जरूर
1: बिल्कुल।
0: पीजिए।
1: और मुझे लगता है मंदाकिनी, जो खान पान वाली बात है ना, ये हमेशा जो है हर मौसम में रखना चाहिए, हर आदमी को रखना चाहिए, है ना।
0: तो भाई अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें अपने श्रोताओं से विदा लेना है, तो फिर से मुलाकात होगी नई नई चर्चाओं के साथ। और अब दीजिए विदा, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: The water level of the Ganga continues to rise in Bihar, causing flooding in low-lying areas of the state. We have more from our correspondent.
1: Bihar, which is facing a shortage of rainfall, is seeing the water level of Ganga River continue to rise in Patna, Vaishali, Bhojpur, Buxar, Bhagalpur, Munger, Samastipur and Begusarai districts. Crops standing on hundreds of acres of farmland have been damaged. According to the Central Water Commission, the water level of the river has risen above the danger mark at all major ghats in Patna. In view of the worsening flood situation, Chief Minister Samrat Chaudhary spoke to West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari over the phone and apprised him of the gravity of the situation. West Bengal Chief Minister has assured prompt action in this regard. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall at isolated places over Chhattisgarh, Bihar, Odisha, East Madhya Pradesh till tomorrow. In cricket, India resumed their innings after lunch against host Sri Lanka in the day two of the second and final test in Colombo. India were 471 for 8 when reports last came in. Rishabh Pant, returning after retiring hurt on day one, battled through a barrage of short balls to remain unbeaten on 63, while Dhruv Jurel made 59 to power India through 419 for 6 at lunch. Devdutt Padikkal continued his impressive form, scoring his second consecutive test century. He made 117 off 193 balls. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 more groups of countries. Supreme Court issues notice to centre on plea seeking CBI probe into JPSC exam irregularities. Union Home Minister Amit Shah to attend 9th National Security Strategies Conference in New Delhi this evening. External Affairs Minister S. Jaishankar to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technological and Cultural Cooperation in Moscow today. And in Test cricket, India holds strong position against Sri Lanka with 471 runs in the first innings at Colombo. Devdutt Padikkal smashes 117 runs. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत वैश्विक व्यापार के 75% हिस्से को अपने दायरे में लाने के लिए 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन की डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
3: We have about 80 companies.
4: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां।

0: कहानियाँ हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
1: ओनली टू रिफ्लेक्ट दैट अ वाइड डाइवर्सिटी जॉइन दिस डेलीगेशन।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को, कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
3: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Fasal Bima Yojana, Kishan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance. And field demonstrations for maize farmers.
2: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
4: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
6: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा। 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे।
2: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना पीएमएफएमई से अब तक 2 लाख से अधिक व्यक्तिगत

0: सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लाभान्वित हुए हैं। नई दिल्ली में आज पीएमएफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और इनमें 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता न करने का आग्रह किया।
1: पीएमएफएमई की है हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटी प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की

0: स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार, जोहार और जय हिंद। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी जी ने।
2: आपने समय के मूल्य और महत्व को बताते हुए लिखा है, हम समय को पकड़ नहीं सकते, बस उसके साथ चल सकते हैं। धन्यवाद आप सबको इस बहुमूल्य विचार के लिए।
1: जी, और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है भटीपुरा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। आगे लिखते हैं, दिनांक 31 जुलाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राणदाता और संगीत की कथ्य मौखिक सामग्री को लिपिबद्ध करने वाले अनेक संगीत पुस्तकों के रचनाकार, समग्र हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को 10 थाटों में विभाजित करने वाले और लगभग 100 रागों का वर्गीकरण करने वाले संगीत के विद्यार्थियों के लिए ठोस पाठ्यक्रम तैयार करने वाले, साथ ही साथ सरगम लिखने की सुगम पद्धति के जनक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के संगीत में अतुलनीय योगदान पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाला कार्यक्रम सुनकर मुंह से बस यही शब्द निकले कि वाकई भातखंडे जी आधुनिक भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। इस महान संगीत पुरोधा पर इतनी गहन जानकारी उपलब्ध करवाने वाली पूरी उमंग टीम को हम

0: हृदय की अनंत गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया दी। आपकी विस्तृत प्रतिक्रिया के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
1: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं।
0: श्लाघनीय का अर्थ है प्रशंसनीय। हिंदी के शब्दों की जानकारी देने का ये प्रयास हमें बहुत ही अच्छा लगा।
1: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं।
0: अजीत जी और विमलेश जी, आपके कार्यक्रम उमंग में हमारे राज्य कर्नाटक के कोडवा समुदाय और उनके उत्सव कैलपोद की बातें सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। दरअसल मैं स्वयं कर्नाटक का होने के नाते इस विषय पर कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ।
1: कोडागु को कर्नाटक का कश्मीर भी कहा जाता है। कोडागु जिले को अंग्रेजी में मरकारा या कुर्ग भी कहते हैं। इसी जिले ने हमें भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ KM करियप्पा दिया है। कोडागु ने हमें कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने और विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, जैसे MP गणेश और BP गोविंदा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोडागु में हर साल कोडागु हॉकी उत्सव मनाया जाता है, जिसे हर साल अलग अलग कोडावा परिवार प्रायोजित करते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित हो गए हैं।
1: तो श्रोताओं, कई शब्द हैं, लेकिन सांभर, इडली, रसम, वड़ा और डोसा जैसे शब्द अब हिंदी के हो गए हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
1: खाकी शब्द फारसी से उर्दू भाषा में आया और फिर हिंदी में राख या धूल नहीं लेकिन रंग के अर्थ में बोला जाने लगा।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसी द्रव के कारण उसके पंख उड़ने के योग्य बनते हैं।
0: और हमारा अगला प्रश्न था श्रोताओं कि नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थे पिछले दिनों पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। श्रोताओं, आप सबका आभार प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मामीटर या ज्वरमापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था।
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
0: पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF आपको टाइप करना है।
1: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। ये विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएगा।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कैसे बना हिमालय कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बताया गया है कि विश्व के सबसे युवा पर्वत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इसे मोड़दार पर्वतमाला क्यों कहा जाता है।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय।
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक
2: कैसे बना हिमालय।

0: राज, रिद्धि,
1: नव्या
2: और रिदित
1: सब बहुत खुश है
2: क्योंकि उनका परिवार
1: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
3: चलो चलो दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
4: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
3: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
4: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
3: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है।
5: बहुत मजा आएगा।
2: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
1: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
2: वे इस सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
1: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
2: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
1: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
3: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
3: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
3: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
2: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
4: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
3: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
3: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
5: टैथिस महासागर।
2: वाह,
3: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
3: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
3: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
4: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
3: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
4: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
3: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
3: जी।
2: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
3: फिर क्या हुआ सर जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई।

0: गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा।
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
1: सर, मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा, क्यों नहीं।
1: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही हैं। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
2: अब समझ आया। सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
1: सर, एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
1: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
2: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली है। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
2: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं। हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।
1: ये कार्यक्रम एक यूनानी लोक कथा पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि हमेशा अपने अवसरों को पहचानकर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा यदि देर हो जाए तो बीता समय और अवसर दोनों वापस नहीं आते।
2: नमस्कार साथी, आज हम आपके साथ साझा करेंगे स्पेन की एक प्रेरक घटना।
3: तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं स्पेन की।
2: स्पेन यूरोप महादेश में है। इसकी राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड कला और व्यवसाय का बहुत बड़ा केंद्र है। मैड्रिड के बाद स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बार्सिलोना।
3: यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है स्पैनिश और मुद्रा है यूरो। यदि खेलों की बात करें तो यहाँ के मुख्य खेल हैं बुल फाइटिंग और फुटबॉल। ये दोनों ही खेल स्पेन में किसी राष्ट्रीय उत्सव से कम नहीं।
2: स्पेन संवैधानिक राजतंत्र के तहत संसदीय लोकतंत्र है। स्पेन के मुखिया यहाँ के राजा होते हैं। तो ये हुई स्पेन के बारे में थोड़ी जानकारी। आइए अब सुनते हैं स्पेन की ये प्रेरक घटना।
3: एक बार की बात है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मूर्ति कला की प्रदर्शनी लगी थी। बहुत से मूर्तिकारों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सारी मूर्तियां एक से बढ़कर एक थीं।
4: मार्वेलस।
2: लेकिन एक मूर्ति ऐसी थी जिसने लगभग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जो भी उस मूर्ति को देखता वो आश्चर्य।

0: आश्चर्य में पड़ जाता।
1: ये किस तरह की मूर्ति है?
2: ये किस तरह की मूर्ति है?
3: ऐसी मूर्ति तो मैंने
4: वाओ वंडरफुल।
5: साथियों, आप पूछेंगे कि भला ऐसी कौन सी विशेष बात थी उस मूर्ति में जो उसने प्रदर्शनी में आए सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
0: तो चलिए हम बता देते हैं। इस मूर्ति में खास बात ये थी कि ये मोम की बनी हुई थी और इसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था।
5: मूर्ति के हाथ नहीं थे लेकिन हाथों की जगह दो पंख लगे हुए थे।
0: लोग सोचने लगे, भला ये कैसी बात हुई? मूर्ति पत्थर की या किसी अन्य धातु से भी तो बनाई जा सकती थी।
5: इस प्रदर्शनी में बहुत से दर्शक आए। जो भी वहां आता उस मूर्ति के बारे में जरूर सोचता। लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती चली गई। हर एक के मन में एक प्रश्न था,
6: ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है?
2: कलाकार ने मूर्ति मोम से ही क्यों बनाई?
0: तो हुआ ये कि बहुत से लोग उस पवेलियन में आकर पूछने लगे कि भला ऐसी मूर्ति का क्या मतलब है जो मोम की बनी हो, बालों की वजह से उसका चेहरा भी दिखाई न दे और उसमें पंख लगे हों।
5: उस मूर्तिकार ने बताया,
7: इस मूर्ति का नाम अवसर है। जीवन में अक्सर जब अवसर सामने आता है तो उसका चेहरा हम पहचान नहीं पाते और जब तक उसे पहचानते हैं तब तक वह पंख फैलाकर उड़ जाता है।
0: लोगों ने उस मूर्तिकार के विचार की बड़ी प्रशंसा की।
8: ग्रेट, मार्वेलस।
2: हाँ, अवसर ऐसा ही होता है।
8: वंडरफुल।
9: हाँ, हम सहमत हैं।
0: लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, वो ये कि ये मूर्ति मोम से क्यों बनाई गई है? कलाकार ने बताया,
7: जैसे मोम पिघलता है उसी प्रकार अवसर भी लंबे समय तक बना नहीं रहता, वह भी धीरे धीरे पिघल जाता है, यानी मोम की भांति ही अवसर भी हाथ से निकल जाता है।
0: साथियों, कितना जरूरी है कि हम अवसर को सही समय पर पहचानें और उसका सदुपयोग करें, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किसी ने कहा है, अवसर सूर्योदय की तरह होता है, यदि आप समय से नहीं उठते तो इसे देखने से चूक जाते हैं।
5: साथियों, यदि आप दुनिया के सफलतम लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ऐसे लोगों ने कभी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। इस संदर्भ में कबीर दास जी का एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय दोहा है, काल करे सो आज कर,
0: आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करे का कब। अवसर सामने खड़ा है, इसका लाभ उठाइए।
5: कहीं ऐसा ना हो कि
0: जब तक आप पहचाने तब तक ये पंख फैलाकर उड़ जाए।
10: अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचाने। कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार शालिनी सिंह और वैभव श्रीवास्तव, तकनीकी नियंत्रण बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, आलेख निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
11: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम अवसर को पहचानिए।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। अगली सभा में शाम 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने सुने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: कैसे हैं आप सब? इस मानसून सीजन के मज़े ले रहे होंगे, है ना? बिल्कुल ले रहे होंगे। और आपके इस मौज मस्ती को दुगना करने के लिए हम आ गए हैं, यानी रितंद्रा दीदी
0: और मैं मंदाकिनी दीदी। तो बच्चों, आप सुन रहे हैं नन्ही दुनिया, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन उसकी कीमत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से भी ज्यादा है। जी हाँ, वो है मुस्कान।
1: और बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको देखकर मुस्कुराता है तो आपको कितना अच्छा लगता है? भाई, एक छोटी सी मुस्कान न केवल हमारे चेहरे को सुंदर बनाती है बल्कि दिलों को भी जोड़ देती है ना?
0: जी हाँ बच्चों, मुस्कान से दोस्ती बढ़ती है, गुस्सा कम होता है और मन खुश रहता है। अगर आपका कोई दोस्त उदास हो और आप प्यार से मुस्कुरा कर उससे बात कर लें, तो देखिए उसकी उदासी भी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। स्कूल में जब आप अपने शिक्षकों, दोस्तों और कर्मचारियों का मुस्कुरा कर अभिवादन करते हैं तो पूरा वातावरण खुशहाल बन जाता है। घर में भी जब हम माता पिता, दादा दादी या भाई बहनों के साथ मुस्कुराकर बात करते हैं तो परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ जाता है।
1: लेकिन याद रखिए बच्चों, मुस्कान हमेशा सच्चे दिल से होनी चाहिए। किसी का मजाक उपहार या हंसना या किसी को दुख पहुंचाना अच्छी बात नहीं है ना?
0: बिल्कुल।
1: और सच्ची मुस्कान वही है जो दूसरों को
0: खुशी
1: खुशी दे।
0: दे। तो बच्चों, आज से एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि हर दिन कम से कम एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी एक प्यारी सी मुस्कान किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। और रितंद्रा दी, हम भी बच्चों से कहेंगे हमेशा ऐसे ही मुस्कुराकर अपने स्कूल में अपने पेरेंट्स से बात करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे यूँ मुंह फुला लेते
1: बिल्कुल
0: हैं, है ना, जिद करते हैं
1: आपस में छोटी छोटी बातों पे। मंदाकिनी दीदी अगर झगड़ा करते हैं तो भी जो है वो मुधर मुकर लेगा, एक बच्चा उधर मुकर लेगा, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो उसको दूर करने के लिए एक मुस्कान की जरूरत ही है।
0: और चलिए, आपकी मुस्कुराहट को हम यूं ही बरकरार रखेंगे और आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत।

0: बहुत ही होशियार था, लेकिन एक उसकी आदत थी जो सबसे अलग थी, और वो ये कि वो हर किसी से मुस्कुराकर मिलता था। चाहे स्कूल का चौकीदार हो, सब्जी बेचने वाले अंकल हो, उसके दोस्त हो या उसके टीचर्स, आरव हमेशा मुस्कुराकर नमस्ते कहता। एक दिन स्कूल में एक नया छात्र आया, उसका नाम विवान था। नया स्कूल होने के कारण वो बहुत घबराया हुआ था।
1: अच्छा होता है दीदी कभी कभी कि जब बच्चे नए स्कूल में जाते हैं तो ये घबराहट होती है ना?
0: बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है रितंद्रा दीदी, भाई हम एक स्कूल को छोड़ के आते हैं तो हमारे टीचर्स जो हमारे वहाँ के फ्रेंड्स रहते हैं वो सब हमसे बिछड़ चुके होते हैं, तो एक अंदर हिचक सी रहती है कि हम कैसे सबसे मिलें, है ना। तो बच्चों विवान के साथ भी वैसे ही था। तो हुआ क्या कि नया स्कूल होने के कारण जब वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था, तो उससे कोई दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा ऐसा वो हमेशा सोचता रहता। तभी एक दिन आरव उसके पास गया और उससे मुस्कुराकर बोला, हेलो मेरा नाम आरव है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? आरव की प्यारी सी मुस्कान देखकर विवान का डर पल भर में दूर हो गया। दोनों साथ बैठने लगे, साथ खेलने लगे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। ये सब देखकर उनकी जो टीचर थी बहुत ही खुश हुई और बच्चों से कहा, देखो बच्चों, एक सच्ची मुस्कान वो कर सकती है जो कभी कभी बड़े बड़े शब्द भी नहीं कर पाते। मुस्कान दिलों के बीच की दूरी मिटा सकता है। उस दिन से पूरी क्लास ने एक रूल बनाया कि हर सुबह सभी एक दूसरे को मुस्कुराकर हेलो कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे। कुछ ही दिनों में स्कूल का पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। बच्चे आपस में कम झगड़ते और ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे। तो बच्चों ये बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली रितंद्रा दीदी? बच्चों से
1: मुझे लगा कि जो मुस्कान है, जो एक मुस्कुराहट जो हम, चाहे वो बच्चों के लिए भी वही लागू होता है और बड़ों के लिए ना, वो ऐसी चीज़ है कि मतलब अगर थोड़ी सी नाराज़गी है या अपरिचित हैं, अगर मुस्कुरा के हम परिचय भी उसी से प्राप्त कर लेते हैं, अगर मुस्कुराते हैं तो उससे हमें परिचय भी मिल जाता है ना।
0: तो बच्चों मुस्कान बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह होती है, जैसे सूरज की रोशनी अंधेरा दूर करती है, वैसे ही सच्ची मुस्कान उदासी और दूरी को कम कर देती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराइए, लेकिन दिल से। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी के चेहरे पर बड़ी खुशी ला सकती है। और इसी के साथ रितंद्रा दीदी, मैं एक छोटी सी पोयम भी सुनाऊंगी बच्चों को,
1: बिल्कुल,
0: कि मुस्कान बांटो प्यार के साथ, मुस्कान बांटो प्यार के साथ, रोशन होगा जीवन का हर पथ, हंसते रहो हंसाते रहो, खुशियों से भर दो अपना हर दिन और हर रात। तो इस प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो है आओ जाने। और इस सेगमेंट में हम बच्चों को आज बताने जा रहे हैं संवेग यानी मोमेंटम के बारे में। तो बच्चों, क्या कभी आपने देखा है कि धीरे धीरे चलती हुई साइकिल को रोकना आसान होता है, लेकिन जब तेज़ रफ्तार साइकिल होती है तो उसको रोकना थोड़ा मुश्किल? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है संवेग यानी मोमेंटम। किसी भी चलती हुई वस्तु में उसकी द्रव्यमान यानी वजन और गति के कारण जो प्रभाव पैदा होता है उसे हम कहते हैं संवेग यानी मोमेंटम।
1: और बच्चों शब्दों में कहें तो जितनी भारी वस्तु होगी और जितनी तेज चलेगी उसका संवेग उतना ही अधिक होगा।
0: बिल्कुल, और एग्जाम्पल के लिए धीरे चलने वाली जो एक साइकिल हो, चाहे छोटी सी गेंद का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उसका संवेग कम होता है, लेकिन तेज़ गति से आती क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका जो संवेग यानी मोमेंटम होती है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पकड़ते समय हमें सावधानी बरतनी पड़ती है।
1: बिल्कुल, और कभी कभी भाई बच्चे देखते होंगे कि जब क्रिकेट खेलते हैं हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, तो वो जो बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जितनी स्पीड में आती है, और बच्चे ही बताते हैं हम लोग को, है ना।
0: तो ये पूरा कंक्लूजन ये है कि अगर किसी भी बॉडी का मास यानी उसका द्रव्यमान यानी वजन ज्यादा होगा तो उस तरह से वो ज्यादा प्रभाव पैदा करेगा। ठीक है,
1: तो बच्चों मैं कहूंगी कि आपने अभी चलती हुई वस्तु या उसका जो अभी गति या संवेग की बात हमने किए, तो ये बच्चे अपने जो पढ़ाई है शिक्षा है उसमें भी लाएंगे, है ना।
0: बिल्कुल, तो रितंद्रा दीदी, हमें बच्चों को जाते जाते एक बात और बतानी है कि भाई जिस हिसाब से ये मौसम चल रहा है, हाँ, तो उस

0: तो बच्चों मजा आया ना भाई।
1: बिल्कुल
0: देखो बच्चे अगर अपने हिसाब से गाना सुनते हैं ना मंदाकिनी दीदी, तो वो उसमें मतलब सोचते हैं कि ऐसे ही खिलौने ढेर सारे या
1: हाँ
0: ऐसी जगह सफर पे चलो जहाँ वो खूब इंजॉय कर सकें, है ना।
1: बिल्कुल
0: और मंदाकिनी दीदी, अभी हम मुस्कान पर ही चर्चा कर रहे थे ना, तो जो हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हम ये सुन रहे प्रोग्राम नन्ही दुनिया, वो एक बार अपनी कहानी सुनाई थी,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे, और वो स्टोरी आज मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर करूंगी। तो बच्चों, एक गांव में आरव नाम का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। वो

0: में अपना ध्यान रख
1: ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन फैल रहे हैं। और बच्चों, इसी के साथ अब हमें और रितंद्रा दीदी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

कहते हैं ना, जिंदगी बिना हर दिन अपने साथ कुछ यादें छोड़ जाती है। कभी कुछ पल हंसाते हुए, कुछ सिखाते हुए, और कुछ तो बस यूं ही बीत जाते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, पर सच कहूँ तो परफेक्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और हाँ, परफेक्ट लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें हैप्पी लाइफ, यानी खुश रहना। वैसे मुझे इस बात पर एक पंक्ति याद आ रही है हरिवंश राय बच्चन जी की, कि जो बात गई, जो बीत गई, वो सो बात गई। शायद जिंदगी भी हमसे यही कहती है, हर पल को पकड़े रखना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ों को जानी देना भी लाइफ का एक पार्ट है। जो कल था वो अपनी जगह था, और जो आज है वो हमारे हाथ में है। तो आइए आज की शाम को थोड़ा खूबसूरत और यादगार बनाते हैं युवाणी के साथ। गुड इवनिंग टू ऑल डियर लिसनर्स, मैं हूँ आपकी दोस्त सेजल, और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो युवाणी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि युवाणी प्रोग्राम में हम ले आते हैं कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, और कुछ ऐसा जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे जाए। सो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन कीजिए, कुछ साल पहले जब चीज़ें इतनी डेवलप नहीं थी, मतलब अगर आपसे कोई कहता कि मैं गेम खेलकर अपना करियर बनाऊंगा, तो अक्सर जवाब हमें मिलता था कि पहले पढ़ाई कर लो फिर गेम खेलना। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में गेम्स को सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि करियर, कंपटीशन और लाखों लोगों तक पहुंचने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेमिंग सिर्फ अपनी फिंगर्स को स्क्रीन पर टैप करना नहीं, यहाँ स्ट्रैटेजी है, टीम वर्क है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉम्पिटिशन है। इट मीन्स कि जिस चीज़ को हम सिर्फ टाइम पास समझते थे, आज वही किसी के लिए टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो आखिर गेमिंग का ये बढ़ता क्रेज़ युवाओं के लिए क्या लेकर आया है? एक नया अवसर या फिर कुछ नई चुनौतियाँ? जी हाँ दोस्तों, आज की चर्चा भी इसी से रिलेटेड है। टॉपिक है ई स्पोर्ट्स

अवसर या चुनौती। तो चलिए आपको बताते हैं गेम के पीछे छुपे करियर और उसके चैलेंजेस के बारे में विस्तार से। वैसे ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जिसमें कोई स्टेडियम, ट्रैक या फिर क्रिकेट पिच नहीं, बल्कि ये स्पोर्ट बेसिकली डिजिटल स्क्रीन का है और इसके प्लेयर्स वो तो हमारे बीच कोई भी युवा हो सकता है। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेजल ने ई स्पोर्ट्स तो बताया, लेकिन क्या हर गेम ई स्पोर्ट्स है? तो भाई ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल गेम खेलना इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई स्पोर्ट्स। जब गेमिंग कॉम्पिटिटिव, ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल फॉर्मेट में होती है तो टूर्नामेंट्स होते हैं, टीम्स भी होती हैं, प्लेयर्स भी प्रैक्टिस करते हैं और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिशन्स भी होता है, तब वो ई स्पोर्ट्स का हिस्सा बनता है। यानी कि आज के यूथ्स टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं और गेमिंग अब अकेले बैठकर खेलने तक सीमित नहीं है। आज एक प्लेयर सिर्फ गेम नहीं खेल रहा, वो एक पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहा है और यही वजह है कि ई स्पोर्ट्स ने यूथ्स का अटेंशन खींचा है। तो करूँगी इस पर आपसे और भी चर्चा, पर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों। और अब वापस आते हैं अपनी चर्चा पर। और ई स्पोर्ट्स में जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो है करियर। इट मीन्स कि अगर आपको गेमिंग में करियर बनाना है तो सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बनना है। गेमिंग जोन में सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर के अलावा कोच, कमेंटेटर, एनालिस्ट, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर, कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर और टेक्नोलॉजी से जुड़े दूसरे रोल्स भी प्ले करने पड़ सकते हैं। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ टैलेंट काफ़ी है? तो नहीं। जैसे हमें किसी भी स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करनी होती है, डिसिप्लिन रखना होता है, प्रेशर को भी हैंडल करना पड़ता है, सेम यही ई स्पोर्ट्स पर भी लागू होते हैं। एक प्रोफेशनल गेमर को भी स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रेशर हैंडलिंग और डिसीजन मेकिंग जैसी स्किल्स की ज़रूरत होती है। और स्किल्स सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि डेली प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से बनती है, क्योंकि कई गेम्स में हमें कुछ सेकंड्स में ही कोई डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे अटैक करना, डिफेंड करना, टीम को सपोर्ट करना या फिर स्ट्रैटेजी बदलना। यानी सही तरीके से और बैलेंस्ड वे में देखें तो आपकी स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और साथियों, अगर कोई ई स्पोर्ट्स को करियर की तरह देखता है तो उसे रियलिस्टिक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे हर चीज़ के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, वैसे ही हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। और ई स्पोर्ट्स के चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला है हमें बैलेंस बनाना। गेमिंग और एक्सेसिव गेमिंग बोथ आर डिफरेंट। अगर कोई व्यक्ति लिमिटेड टाइम में गेमिंग करता है, फिर अपनी पढ़ाई, देन थोड़ी देर के नाप, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करना, फिर और तो इन सब चीज़ों की बात अलग है। बट प्रॉब्लम तो तब है ना जब गेमिंग इतना समय ले ले कि आपको और चीज़ों के लिए टाइम ही ना बचे। और दोस्तों, कंट्रोलर तो हमारे हाथ में है ना, तो हम तो कंट्रोल भी तो हमें ही करना चाहिए ना। गेम्स हम पर हावी हों उससे पहले हमें अपने लिमिट्स को तय कर लेना चाहिए। एंड देन सेकेंड इज़ एजुकेशन एंड करियर। अगर कोई स्टूडेंट ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो क्या उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल गेमिंग एक कॉम्पिटिटिव फील्ड है और हर कोई प्रोफेशनल प्लेयर तो नहीं बन सकता। इसलिए एजुकेशन और अपनी स्किल्स को साथ लेकर चलना ज़्यादा समझदारी है। और चूंकि कॉम्पिटिशन्स हैं तो इसका मतलब प्रेशर भी होगा, कभी जीत मिलेगी तो कभी हार, यानी हार को भी एक्सेप्ट करना तो एक स्किल है ना। और दोस्तों, हम स्पोर्ट्स सुनते तो एक दिमाग में हमारे मैदान ही आता है। लोग सोचने लगते हैं सिर्फ मैदान, वो पिच, लेकिन एक्चुअल में ई स्पोर्ट्स एक लार्जली डिजिटल एनवायरनमेंट में होता है। इसलिए अगर आपने अपना मोस्ट टाइम गेमिंग को दिया है तो इसके साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी, अपनी नैप, पोस्चर और ओवरऑल रूटीन को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल स्पोर्ट हो सकता है लेकिन हेल्दी रूटीन की भी ज़रूरत रियल लाइफ में ही रहती है। और अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा ना कि क्या ई स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉल या एथलेटिक्स को रिप्लेस कर देगा? तो भाई नहीं, बिकॉज दोनों के अपने अलग अलग फॉर्मेट्स और स्किल्स हैं। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में हमें फिजिकल एबिलिटीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो वहीं ई स्पोर्ट्स में डिजिटल एनवायरनमेंट, स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन की भूमिका ज़्यादा है। इसलिए दोनों को कॉम्पिटिटर मानने के बजाय हमें दोनों को अलग रूपों में देखना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए अगर आप में से कोई ये सोचकर गेम खेलता है कि उसका करियर बन जाएगा, तो ये सोच भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि स्किल्स के साथ एजुकेशन, प्लानिंग, डिसिप्लिन और अल्टरनेटिव करियर

ऑप्शंस भी ज़रूरी हैं। और अगर ई स्पोर्ट्स की कहानी की हम शुरुआत की बात करें तो इसकी जड़ें 1972 तक जाती हैं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पेस वॉर नाम के गेम की एक छोटी सी कॉम्पिटिशन हुई थी। शायद तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि गेमिंग की ये छोटी सी कॉम्पिटिशन आने वाले समय में एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री का रूप ले लेगी। और फिर इसके बाद साल 1980 में अटारी की स्पेस इन्वेडर्स चैम्पियनशिप ने इस सफ़र को नया मोड़ दिया, जहां हज़ारों प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। सो फ्रेंड्स, क्या ई स्पोर्ट्स अवसर है? यस। क्या ये चुनौती भी है? सो ऑफकोर्स, क्योंकि यही हमारी आज की चर्चा का इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है कि ई स्पोर्ट्स को हम ना ही पूरी तरह अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं और ना ही पूरी तरह चैलेंज। ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हम उसे किस तरह अपनाते हैं। सो गेम खेलिए, कॉम्पिटिशन का भी हिस्सा बनिए, अपने टैलेंट को मौका दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना है। टेक्नोलॉजी हमें यूज़ ना करे तो पैशन रखिए, एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखिए, क्योंकि गेम हो या पैशन, बैलेंस ज़रूरी है। इसी के साथ आइए आपको सुनवाती हूँ ये नेक्स्ट ट्रैक।

0: सो दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले वन मोर थिंग लेफ्ट। बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक वार्ता और जिसका विषय है भारत में विलुप्त होती जनजातियां एवं उनका संरक्षण। और वार्ताकार हैं अंशी यादव। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये वार्ता।
1: भारत एक विभिन्नता से भरा देश है। विश्व में किसी देश में अगर अनेक प्रकार के लोग, समुदाय, परंपरा और भाषाएं पाई जाती हैं, तो वह हमारा देश भारत ही है। इसी विभिन्नता का एक हिस्सा है भारत में पाई जाने वाली जनजातियाँ, जिन्हें हम अंग्रेजी में ट्राइब्स कहते हैं। जनजाति वास्तव में आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैज्ञानिक शब्द है। यह एक सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के वक्त अस्तित्व में था या अब राज्य के भूगोलिक नक्शे में बदलाव के बाद उससे बाहर है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ है और इनके लिए कई तरह के विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। इनकी भाषा, धर्म, त्योहार, खान पान, नृत्य व संगीत अलग है। ये भारत की जनसंख्या का 9% हिस्सा हैं। ये छोटे छोटे गांव में, जो कि उत्तर के हिमालय से दक्षिण के द्वीप अंडमान निकोबार तक फैले हैं, ये ज़्यादातर मध्य भारत में पाए जाते हैं। कई समुदाय जैसे मध्य प्रदेश के गोंड, राजस्थान के भील्स, पश्चिम बंगाल के संथाल्स विश्व में जनजाति प्रेमियों व शोधकर्ताओं का आकर्षण है। ये सभी जनजाति भारत के टूरिज्म क्षेत्र में इनकम जनरेशन में भी सहयोग करते हैं। ब्रिटिश काल के उपरांत डेमोक्रेसी अर्थात जनतंत्र आने के बाद ऐसी जनजातियों के अस्तित्व पर भारी असर पड़ा। आज़ादी के बाद सारी जमीन का मालिकाना भारत सरकार को सौंप दिया गया और इसी में जंगल की जमीन, जो कि अधिकतर जनजातियों का घर हुआ करती थी, उनसे छिन गई। इसी कारणवश देखते ही देखते जनजातियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। उनके साथ साथ उनकी भाषा, परंपरा भारत से कम होने लगी और आज के समय में ब्रिटिश काल के समय से कम जनजातियां हैं, जिनमें से कई विलुप्त हो चुकी हैं या उन्हें विलुप्ति का खतरा है। इनमें से एक है अंडमानी जनजाति। ये अंडमान निकोबार के द्वीप में पाई जाती हैं, जो कि कई वर्षों तक समाज से अलग या एकांत में रहती थी। इनकी पहचान इनके अलग तरह के शारीरिक कद, परंपरा व व्यवसाय से जाना जा सकता है। इनके प्रमुख व्यवसाय शिकार करना, सब्जियां उगाना या मुर्गे पालना है। 18वीं सदी के आखिर तक, जब ये जनजाति पहली बार दुनिया के परिचय में आई, अनुमान यह था कि ये 7,000 अंडमानीज 5 अलग अलग समुदाय में बट गए, जिनकी संस्कृति, रहने का स्थान बदल गया। 20वीं सदी तक इनकी संख्या पर बुरा असर पड़ा। बीमारी, लड़ाई व क्षेत्रों के खो जाने के कारण आज के वक्त 400 से 450 अंडमानीज ही बचे हैं। इनके 3 समूह विलुप्त हो चुके हैं और सिर्फ 2 ही बचे हैं। इन्हीं में अगली जनजाति आती है मध्य भारत, गुजरात, राजस्थान में पाई जाने वाली रबरी जनजाति। यह एक नोमैड यानी बंजारों की जनजाति है, जो खुले आसमान के नीचे झोपड़ी या तंबू में रहती है। इन्हें देसाई, रैबारी देवासी, हीरावंशी, रायका तथा मालधारी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में लगभग 1000 वर्षों तक रबनी ने राजस्थान या मैदानों पर राज किया है। माना जाता है ये समूह ईरानियन पठार से बहुत वर्षों पहले भारत में आया था। इनके प्रमुख व्यवसाय ऊंट बकरी को पालना और उनसे व्यवसाय करना है। रबरी जनजाति की औरतें अपनी एम्ब्रॉयडरी स्किल्स के लिए जानी जाती हैं। ये कई तरह के बैग, शॉल, रजाई को बना के बेचती हैं। यह जनजाति विश्व के विलुप्ति के खतरे की सूची में आती है। अगली जनजाति है झार

0: झारखंड की बिरहोर जनजाति, ये भी बंजारों की जनजाति है जो कि झारखंड में पाई जाती है और बिरहोर भाषा का ही प्रयोग करती है। बिरहोर दो शब्दों से बना एक शब्द है जिसमें बिर मतलब जंगल और होर मतलब आदमी है। इनकी पहचान इनके छोटे कद और लंबे चेहरे से की जा सकती है। इनका ये मानना है कि ये सूर्य के अंश हैं और खरवार जनजाति जो कि सूर्य का वंश मानी जाती है इनके भाई हैं। बिरहोर की जनसंख्या आज के समय में 8 से 9 हज़ार या उससे कम ही है जो कि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसी कतार में मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कमर जनजाति भी आती है जिनकी संख्या 1991 में 20,500 थी जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 666 ही बची। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जनजाति अनुसंधान संस्थान ने 1990 में इसका अनुमान लगाया था कि भुखमरी, बीमारी और कई और कारणों से इनकी जनसंख्या को खतरा है। उसके उपरांत भी इनकी व्यथा में कोई बदलाव नहीं आया और जनसंख्या बहुत ही तेजी से गिरी। इसी प्रकार केरला के कदर ट्राइब्स हैं जो कि कोचीन के पहाड़ों में खेती किया करते थे। 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या केवल 3,000 ही बची थी जो आने वाले कुछ सालों में और कम हुई। केरला में ही पाई जाने वाली कुरुम्बा जनजाति जो कि नीलगिरी पर्वत पर रहा करते थे गरीबी के कारण जनसंख्या में भारी गिराव देख चुके हैं। जनजातियों की विलुप्ति के साथ न सिर्फ हमारे देश को बल्कि पूरे विश्व को एक अलग संस्कृति, भाषा, विरासत और परंपरा को खोने का नुकसान होगा। विभिन्न संस्कृति एक देश के विकास का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी कारणवश जनजातियों की संख्या संरक्षण न केवल सरकार, एनजीओ बल्कि आम जनता का भी कर्तव्य है। 2015 के एक शोध के अनुसार झारखंड के संथाल जनजाति ने बताया कि उनकी संस्कृति का ज्ञान उन्हें सिर्फ शब्दों, कहानियों या उनके लोकगीतों के जरिए ही हुआ। उनका मानना है स्कूल में बच्चों को भारत के इतिहास के साथ उनकी संस्कृति के इतिहास में भी बताना चाहिए। आम आदमी को जनजातियों को समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहिए। लोग अक्सर उन्हें छोटा या अनपढ़ समझते हैं जिस कारणवश वो अपनी संस्कृति को भूलकर बाहरी दुनिया में घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। सरकार ने इनके लिए कई नियम बनाए हैं जैसे पर्यटकों को उनकी गली से गुजरना वर्जित होता है लेकिन लोग बार बार वहां से गुजर के उन्हें मजबूर करते हैं उनके ही क्षेत्र से चले जाने के लिए। आम आदमी को सरकार के बनाए ऐसे हर नियमों का पालन करना चाहिए। जनजातियां हमारे इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। इनका वर्णन हमने इतिहास में राजपूत काल की कहानियों में जरूर सुना होगा। जंगल को बचाना या जंगल के जन और जीव को बचाना भारत जो अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है उसकी विभिन्नता बरकरार रखने में जरूर सहयोग देगा।
1: तो दोस्तों आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था भारत में विलुप्त होती जनजातियां एवं उनका संरक्षण और वार्ताकार थी अंशी यादव। वैसे दोस्तों इस वार्ता ने हमें ये याद दिलाया कि भारत की विविधता सिर्फ अलग अलग भाषाओं और परंपराओं में नहीं बल्कि उन समुदायों में भी बसती है जिन्होंने अपनी संस्कृति और विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखा है। इन्हें संरक्षित करना हमारी साझा जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस विरासत को जान और समझ सके। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हर घर की वाणी।

आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

वैसे फ्रेंड्स, क्या जोश था ना इस गाने में। और यही जज्बा चाहिए हमें ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, आगे बढ़ने का और अपने सपनों को उड़ान देने का। तो इसी जोश को बनाए रखते हुए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी प्रेरणा पुंज की ओर। कहते हैं कि कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर नहीं आती, बल्कि अपने साथ इतिहास की एक पूरी कहानी लेकर आती हैं। आज है 24 अगस्त, और आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक ऐसे युवा क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए समर्पित कर दिया, और वो नाम है शिवराम हरि राजगुरु का। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी शिवराम राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के करीब खेड़ में हुआ था। बचपन से ही राजगुरु के अंदर देश और समाज के प्रति संवेदनशीलता दिखाई देती थी। उनका जीवन उस दौर में आगे बढ़ रहा था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने अलग अलग रूपों में तेज हो रहा था, और वाराणसी में विद्या अध्ययन करते हुए राजगुरु का संपर्क कई क्रांतिकारियों से हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत को स्वतंत्र कराना था। और फिर इतिहास ने एक ऐसा अध्याय देखा जिसमें तीन युवा नाम हमेशा के लिए एक साथ दर्ज हो गए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन तीनों के विचारों में देश को स्वतंत्र कराने का जुनून था, और इसीलिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। अब जरा उस दौर में चलते हैं। साल था 1928, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसके विरोध में विशाल प्रदर्शन हुए। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, और इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिसके कारण लाला लाजपत राय का निधन हो गया। और इस घटना ने देश के युवाओं के भीतर गहरा आक्रोश पैदा किया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का निर्णय किया। उनका निशाना पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट था, जिसे लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार माना गया था, लेकिन घटनाक्रम में पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई। फिर क्या, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन क्रांतिकारी गतिविधियों के मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कठोर सजा सुनाई गई, और सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या था, कि मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन उन युवाओं का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। जेल की कठिन परिस्थितियों में भी उनके हौसले को नहीं तोड़ सकी, क्योंकि उनके लिए स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और दोस्तों, फिर वो दिन 23 मार्च 1931, शिवराम हरि राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई। और उस समय राजगुरु की उम्र केवल 22 वर्ष थी। सोचिए, जिस उम्र में आज के युवा अपने करियर ड्रीम्स और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की योजना बनाते हैं, उसी उम्र में राजगुरु ने अपने देश की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत जीवन से ऊपर रखा। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनका योगदान, साहस और बलिदान भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। और आज जब हम राजगुरु को याद करते हैं, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इतिहास में क्या किया, सवाल ये भी होना चाहिए कि हमें उनके जीवन से आज क्या सीखने को मिला, या फिर हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहली सीख कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना, यानी हमारे सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, पर हमें अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं दूसरी सीख कि देश के प्रति जिम्मेदारी, हमें हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए, ताकि हम अपने देश को बेहतर बना सकें। और तीसरी कि युवा शक्ति की ताकत, यानी कि अगर आज हम युवा ये ठान लें कि हम इस काम को कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली उसे पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज 24 अगस्त शिवराम हरि राजगुरु की जयंती पर आइए उनके साहस और देश प्रेम को नमन करें। तो शिवराम हरि राजगुरु की कहानी हमें यही सिर्फ उनके बलिदान की याद नहीं दिलाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि देश के लिए समर्पण की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि सपने देखिए, उन्हें पूरा करने की के लिए मेहनत कीजिए, और अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगाइए जहाँ आपकी मेहनत सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके देश को भी आगे बढ़ाए। एंड

the end, a life lived for a great cause never truly ends. It becomes an inspiration for generations to come. तो ये थे हमारे आज के प्रेरणा पुंज शिवराम हरि राजगुरु। तो है अभी हमारे पास एक और सेगमेंट, पर उससे पहले आइए सुनाते हैं आपको ये नेक्स्ट ट्रैक।

तो बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनेयर की तरफ। और दोस्तों 22 अगस्त का प्रश्न था, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है, और इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कुल 9, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। और आज का प्रश्न है कि कैग की रिपोर्ट किस समिति द्वारा जांची जाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कैग की रिपोर्ट किस समिति द्वारा जांची जाती है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आप हमें अपना उत्तर दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर जो कि है yuvvaniald@gmail.com। और आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा आप वो भी हमें ईमेल कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी सेजल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जाँच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेले नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0

0: से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे डॉक्टर प्रिया दर्शना राव से चंद्रजीत यादव की बातचीत, पशुओं में नस्ल सुधार। इसके अलावा ग्रामीण भाइयों को सुनवाएंगे नागेंद्र मणि मिश्र से लोक भाषा कविता पाठ। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सूर्य नारायण की वार्ता होगी दलित साहित्यकार और प्रतिरोध के स्वर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आपको सुनवाएंगे मंजू नारायण से गीत। ज्ञान विज्ञान के कार्यक्रम में 8:30 पर सुनिएगा डॉक्टर आशुतोष शुक्ल से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत, क्वांटम कंप्यूटिंग अगली तकनीक की क्रांति। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा आपको सुनाएंगे 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनिएगा मधुसूदन भावे का गायन। ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब डालते हैं एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को हम सुनवाएंगे देवेंद्र स्वरूप से सुरेश कुमार की बातचीत, पशुओं के लिए आवश्यक खनिज तत्व। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर मुकेश खरे की वार्ता, नेत्रदान भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। सुबह 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी ममता सिंह की वार्ता, रक्षाबंधन सामाजिक महत्व। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5:00 सुनिएगा तेरस लाल और साथियों के स्वर में लोकगीत। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे राहुल त्रिपाठी की वार्ता, पर्यावरण संरक्षण एवं जन सहभागिता। इसके अलावा सियाराम मिश्र से रामायण पाठ। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा पूजा देवी से काव्य पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर मीरा तिवारी के स्वर में सुनिएगा गीत और भजन। कहकशा कार्यक्रम होगा 9:30 पर और खेल दर्पण कार्यक्रम सुनिएगा 10:00। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। कंचन पाल, जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। ये दिनांक 9 जून 2026 से वैद ग्राम जैनपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें चंद्रकेश पाल से, जिनका मोबाइल नंबर है 7380768828। नंबर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं 7380768828। मुस्कान, जिनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 4 फुट 6 इंच, रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 3 अप्रैल 2025 से ग्राम बिसौना थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें जीतलाल से, इनका मोबाइल नंबर है 8957873

0। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 8957873640। कौशल्या देवी जिनकी उम्र है 22 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, इकहरा बदन है, ये दिनांक 4 जुलाई 2026 से टेंचा आलमाबाद मंजनपुर कौशाम्बी से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें छोटे लाल से। इनका मोबाइल नंबर है 9044152889। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9044152889। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से। अब प्रस्तुत है देशगान।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्स और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः।

0: पंचो राम राम।
1: आ मोती भैया, का हाल चाल बाहू?
0: ये भाई हाल चाल तो बढ़िया बन हो। मुला एक बात कहे।
1: बतावा।
0: हम देखा भाई पंचायती आवत रहे न, तो देखे कि भैया अपने राम जतन भैया ने, कि भैया जोन जमीनिया ना खाली बहो, जोन रहिया जोन बा चक्रोटवा हो, वो हमें भैया घर ऐतिन के लिए आए के पेड़ लगावत रहन।
1: तो बड़ा नीक काम करत रहन हो राम जतन भैया।
0: हाँ, तो हम कहे देखा हो बरसात के मौसम में और जोन जमीन खाली बाय पेड़ पौधा लगावत है, तो भैया देखा हम तो कहब अपने पर्यावरण बदे भी बहुत बढ़िया है। और ये बात बाय कि जब पेड़ पौधा लगावत है तो ऐसे भाई छाया भी रहत है।
1: ना रहा फलदार पेड़ लगे तो फल भी मिले।
0: हाँ,
1: सबसे बड़ी बात भैया हो पर्यावरण को जोन बात के है, साथे साथे चिड़ई चिरोमन पे बैठत तहाँ छाया मिले बा, प्रदूषण दूर होत बा, तो बहुत फायदा बा। पेड़ लगाए से माटी कटाव भी रुकत है जोन।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भैया हो देखा खेती किसानी किसान भाई करते बाटे, वैसे भी खेती बाड़ी बाग बागवानी पशुपालन ये तो किसान भाई के लिए जरूरी भी बाटे। अब बात आवत है कृषि वानिकी बागवानी की, तो ये मौसम जैसे कहे ना पेड़ लगावे के लिए बड़ा माकूल बाटे है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: भैया हो कुछ किसान भाई जब बागवानी के लिए तैयारी किए रहा हुए, गर्मी में गड्ढा खोदे हो तो लगाए भी दे हुए, ना लगाए हुए तो लगावत हुई। और भी किसान भाई भाई ऐसा देखा मौसम अच्छा बाटे, अगर लगाए दे थी पेड़ तो भाई वो पकड़ ले है। बस जरूरत यही हो था कि भैया हो करे सुरक्षा के लिए कुछ करें, नहीं कि जानवर काट जाए।
0: नहीं भाई देखा हो अगर पेड़ पौधा लागत भाई तो चारों तरफ से भैया रून ही दें, ताकि कोनो जीव जंतु या पशु जोन है आए के नुकसान न पहुंचाए पावे।
1: सही कहे।
0: और ओकर देखभाल भाई जैसे हम तू अपने लड़का गदेला करत है न, वैसे भैया करे के जरूरत है।
1: कही गया भैया।
0: जब तनकी बढ़वार हो या इन हो तो अपने आप भैया बरसात के मौसम में पानी पावत बा तो बढ़त चला जाए।
1: हाँ, बाकी समय में जब पानी नहीं अगर जरूरत बाद पानी दे के भी चाहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हो बाग बागवानी बहुत जरूरी बा, उसे आमदनी भी बा, इमारती लकड़ी भी मिलत है भाई, बहुत फायदा बाटे है। तो भैया हो किसान भाई वानिकी वाला काम जरूर करें, बागवानी लगावें, फलदार पेड़ भय छायादार पेड़ भय चाहे इमारती वाला हो या तो भैया हो इस सब के पेड़ लगाई ही तो जोन बाटे। पहले देखा हमारा आजा दादा लगाए रहें तो हम सब मजा करें, लेकिन अगर हम तू ना लगाओ तो आवे वाली पीढ़ी कहे कि हमारा आजा दादा तो पेड़ ही ना लगाए रहें।
0: भैया देखा हो न कि हमें तुम्हें सचेत
1: चाहे जोन बात।
0: बिल्कुल भैया देखा हो आवत रहे पंचायती हमने, तनकी बरसतवम भैया भीज गए।
1: तब देखा तो जो खमाई गया।
0: हाँ, तो भैया पेड़ रहा तो वही के नीचे रुके, लेकिन अगर भाई गरजत हो तब तो पेड़ के नीचे न रुके थे।
1: नहीं, नहीं, नहीं,
0: लेकिन भाई हल्का हल्का बरसात भय तो हम कहे पेड़ के नीचे रुक के ओकरे बाद भागत आए हो, तो भैया कुछ सर्दी के असर आ गया रहा। तो एक चीज कहवैया रहे हो।
1: बतावा।
0: देखा हो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक चलात बा है
1: भैया, तो देखा भाई पानी के बात होत रही ना, तो हाँ। सिंचाई के बिना भैया बिन पानी सब सुन।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया हो बारिश में तो पानी मिल जाए, बाकी समय में अगर पानी नहीं बरसा तो पेड़ पौधा के तो पानी चाहे भैया, चाहे कोनो भी खेती करवा, बिना सिंचाई के तो पैदावार होए न।
0: बिल्कुल।
1: तो काफी कुछ ऐसा क्षेत्र अपने सबखिया बाटन जहाँ पानी के पहुँच नहीं, सिंचित क्षेत्र नहीं बाटन। तो भैया हो इस सब के देखते हुए जोन बाटा है योजना चलाई गई रही 2015 में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक उद्देश्य तरफ से रहा कि भैया हर खेत का पानी हर बूंद का उपयोग फसल तक पहुंचे, हर बूंद।
0: बिल्कुल,
1: भैया ई योजना और साथे साथे ई योजना में भैया किसान भाई इनके काफी अनुदान भी मिलत 45% से लेके भैया प्रतिशत से लेके 80% तक।

0: खास करके स्प्रिंकलर और जोन ड्रिप सिंचाई विधि होता, छिड़कवा छिड़काव वाली सिंचाई, उनमें जोन भी मशीन लागत है चाहे पाइप लागत है, सबके लिए अनुदान मिलत है भैया।
1: मतलब ये है कि यह विधि से अगर सिंचाई करत हैं तो पानी के भाई जोन जरूरत जितना बाय पौधा को उतने पानी वहां लगे
0: लागे, पानी के बचत हुए,
1: बचत हुए। तो
0: पानी
1: मतलब टपक
0: बर्बाद।
1: सिंचाई वाली जोन बतिया
0: हाँ वो
1: बताया
0: है
1: भैया,
0: ड्रिप जोन, वो है टपक सिंचाई।
1: मतलब जोन पौधा बाय ओकरे जड़ के पास भैया पानी गिरी जितना की
0: हाँ
1: जरूरत है।
0: हाँ
1: और जोन स्प्रिंकलर वाली बतावत
0: वो
1: रहा
0: भैया
1: हो,
0: छिड़क छिड़क देखे हो ना, छिड़कत रहा जना बारिश होत
1: था, वो
0: भी।
1: मतलब चारों ओर घूम घूम भैया बरसत
0: हाँ
1: जैसे बाय। ये तो
0: तो
1: भैया पौधा के हर जगह हर अंग में पानी चला
0: भाई
1: जात है।
0: ऊपर से जैसे बारिश का पानी हो तो ऊपर से नीचे तक पहुंचत बा, वैसे
1: हाँ
0: ही स्प्रिंकलर जोन बाटे भैया, ऐसे तो ये सब के लिए सरकार अनुदान भी देत है
1: यह
0: भाई। अपने बलाके में जाए उसका पता करें हैं भैया, कैसे का मिले जोन बाटे, तो भाई एक फायदा ले ही चाहे। तो भैया ये सब जोन बाटे अनुदान में सिंचित क्षेत्र के विस्तार होते, सबके मदद मिलत बाटे, तो ये योजना भाई यही बहुत बढ़िया योजना बा, जरूरत बा कि लाभ लें किसान भाई एकर।
1: बिल्कुल लाभ ले हो। आज पंचायती में भैया ने हम तो कहे एक ठी बात कही बाय, पशुओं में नस्ल सुधार,
0: अच्छा
1: यह
0: अच्छा
1: पे डॉक्टर प्रिया दर्शना से चंजीत यादव भैया बातचीत किए हैं। और साथे साथे भैया एक ठी लोक भाषा कविता पाठ नागेंद्र मणि मिश्रा जी के बाय,
0: अच्छा
1: उहो
0: अच्छा
1: भैया चल चल सुनवाई भी
0: हाँ
1: मुला कहता, पहले बात कही सुनवाई दी।
0: हाँ हाँ सुनवाए दे भैया
1: तो भैया
0: इस।
1: देखा बातचीत बाय, पशुओं में नस्ल सुधार, तो डॉक्टर प्रिया दर्शना से चंजीत यादव भैया बात कही किए हैं, तो भैया आवाज सुन लिया जाए।
0: सुनवाओ भैया सुनवाओ।
2: आप सब खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन के भी काम करते हैं, निश्चित तौर पे पशुपालन करे के आप सबके मकसद होते हैं कि भाई हमेशा के दूध के पर्याप्त मात्रा स्वस्थ रहे के लिए मिल जाए, और साथे साथे भाई जो दूध के अतिरिक्त उत्पादन होए ओका बाजार में बेच के अच्छा खासा पैसा उसी लिया जा सके। तब भाई देखा आप सबके जो मकसद होते हैं कि जानवर ऐसा हो जौने से ज़्यादा दूध उत्पादन होए, तो अब नस्ल सुधार के बात किया जाता पशुओं में, तो निश्चित तौर पे अगर नस्ल में सुधार किया जाए तो दूध के उत्पादन भी अच्छा होए, या मांस दे वाला जौन पशु में मांस में सुधार होए, तो भाई पशुओं में जौन नस्ल सुधार के बात किया जाता है भाई, विषय पे जानकारी देख ले आज हमारे साथे बाटी डॉक्टर प्रियदर्शना राव बनी जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, बनी आपके कार्यक्रम में स्वागत बाटे। और जाने चाहब कि पशुओं में नस्ल सुधार के काहे के जरूरत पड़ी, एकर विषय में बताऊँ।
3: सबसे पहले नमस्कार, और मैं नस्ल सुधार से पहले एक ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसे नस्ल सुधार में हम AI करते हैं, जैसे कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है,
2: जी
3: तो भारत में सर्वप्रथम इसका 1939 मतलब 1941 में इसका मैसूर डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर संपत कुमार सर द्वारा प्रयोग किया गया था।
2: जी
3: उसके बाद 1942 में भारतीय पशुपालन शोध संस्था में डॉक्टर भट्टाचार्य सर हैं उनके द्वारा नेतृत्व के अंदर AI प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाया, और इसको सफल बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को 4 केंद्रों में जो है भारत सरकार ने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, जिसमें पटना, कोलकाता, बैंगलोर और मोंटेंगारो आता है,
2: जी
3: जिसके रिजल्ट में स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में की विलेज स्कीम की शुरुआत हुई, और आज तक इसे अलग अलग नामों से पशुपालन विभाग में AI को महत्व दिया जाता है। अब मैं बताती हूँ नस्ल सुधार के बारे में। तो
2: जी
3: इसमें जो है हम जो गुणवत्ता होती है सीमन की, जिसे हम हाई क्वालिटी सीमन कहते हैं, उसमें उच्च प्रजाति के जो नर होते हैं उनका हम सीमन एक मानक अनुसार जो है फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ और फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ सेक्स सीमन में उपयोग करके उच्च की गुणवत्ता का संतति का उत्पन्न करवाते हैं। तो मेन हम इसमें ये कार्य करते हैं, और इसमें संतति जो उत्पन्न होती है उसमें हम देखते हैं कि जो उसकी दुग्ध की उत्पादनता है वो बढ़ जाती है,
2: जी
3: और जो उनकी नस्ल है उसमें सुधार होता है, और इन सब चीज़ों से जो पशुपालक हैं उनको भी आय में वृद्धि होती है।
2: बनी एक चीज़ जानना चाहे, जैसे गाय बा या भैंस बाटे, तो विशेषकर गाय में देखे में यह होता है कि ज़्यादा नस्ल सुधार के परिणाम जो है अच्छा परिणाम होकर देखे में आवत बा, तो ऐसा स्थिति में का कुछ अपने देश में जो गाय बाटी उनमें सुधार की है ऐसे।

0: सख्त नस्ल में।
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, और उन्होंने जो है बहुत सारी स्कीम पशुपालन विभाग को दी है, जिसमें अभी एक स्कीम चल रही है सेक्स सॉर्टेड सीमेन की स्कीम। इसमें हम जो है बताना चाहेंगे कि जो हम सीमेन यूज़ करते हैं उसमें ये दावा किया जाता है कि 90% बच्चिया ही उत्पादन होगी संतति में, और केवल 10% मादा जो नर है वो उत्पन्न करेगी।
0: जी
1: तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग आजकल देख रहे हैं कि जो पशु बाहर छुट्टा घूम रहे हैं उसमें सांड है, नर को छोड़ दिया जाता है, तो ये अब शिकायतें पशुपालन से कम हो जाएंगी और हमें बच्चिया रखने का जो है सहयोग मिलेगा।
0: का मतलब कि अब जो बच्चा पैदा हुई हैं
1: जी
0: उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा मादा पैदा हुई
1: जी
0: हैं
1: जी
0: यानी बच्चियाँ पैदा हुई हैं
1: जी
0: गाय से,
1: बच्चिया पैदा होंगी।
0: तो उसी अपने आप जो ना है जब इनकर संख्या बढ़े तो दूध का उत्पादन बढ़
1: जी
0: जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहनी ये देखे मावत है कि जानवर जब गर्म होते है
1: जी
0: तो ऐसा स्थिति में पशुपालक भाई जो ना है आसपास के जो खराब नस्ल के जो सांड होते हैं वहाँ जो ना है ओकर संकरण करावत हैं, तो ऐसा स्थिति में जो कृत्रिम गर्भाधान बा वो कितना महत्वपूर्ण हो जाते है, कैसे ओका का करे चाहे
1: जी
0: पशुपालक बहन के।
1: बिल्कुल, ये सही बात कही आपने कि जब पशु गर्म होता है तो लोग ये नहीं देखते हैं कि वो सांड जो है किस नस्ल का है, उससे जो जो संतति आएगी उसका क्या परिणाम होगा।
0: जी
1: तो ये जो सेक्स सीमेन या जो सीमेन हम यूज़ करते हैं अपने वेरीफाइड हॉस्पिटल पे, जिसे पशु चिकित्सालय कहा जाता है, और हमारे अंदर जो है एक ट्रेंड वर्कर होते हैं जो पर्टिकुलर इसी काम के लिए रखा जाता है,
0: जी
1: जो कि कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है, उन्हें संस्था से ट्रेनिंग करके और उसके उपरांत कुछ जो हम सहयोग लेते हैं वो घर घर जा करके, अगर कोई पशुपालक हमारे अस्पताल पे नहीं आ सकता है तो उनके घर पे ऑन कॉल भी जाते हैं, और वहाँ जा करके जो स्ट्रॉ की बात हमने की है उस स्ट्रॉ से उसका जो है संतति उत्पन्न होने का जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं सभी पशुपालकों से ये निवेदन है कि वो जब भी कभी उनका पशु गर्मी में आता है तो उसके उपरांत जो है अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पर जाके संपर्क करें,
0: जी
1: और वहाँ से निःशुल्क भी ये सेवा दी जा रही है और इसमें कोई आपको शुल्क नहीं देना है। और इससे ये भी एक चीज़ है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग तुरंत आ करके बताते हैं और ये सोचते हैं कि देर ना हो जाए और तुरंत कृत्रिम गर्भाधान का प्रोसेस शुरू हो जाए,
0: जी
1: तो ये बता दूँ कि गर्मी में आने के बाद मादा के 10 से 12 घंटे के बाद ही हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं,
0: जी
1: और इसलिए आप बहुत जल्दी में नहीं रहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि जब पशु गर्मी में होता है तो अगल बगल में जैसे कोई खुले सांड होते हैं उनसे उनको बचा के रखें, ताकि
0: जी
1: वो
0: जी
1: जैसे नेचुरल जो इंसेमिनेशन हो जाता है वो प्रक्रिया ना हो।
0: जी जी
1: जी
0: का मतलब कि अगर जानवर गर्मी का अवस्था में बाटे तो ऐसे स्थिति में जो नज़दीक के पशु चिकित्सालय बाटे
1: जी
0: वहाँ
1: जी
0: संपर्क करके कृत्रिम गर्भाधान के जो अच्छे नस्ल के बात होते है
1: जी
0: वो अच्छे नस्ल के गाय के जो बच्चा बाटे उसका पैदा किया जा
1: जी जी
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बनी एक चीज़ ये बताओ, जैसे पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए का पशुओं के स्वस्थ रहे के लिए भी कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है?
1: जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही सवाल किया है कि जब पशु स्वस्थ रहेगा तभी वो संतति भी स्वस्थ रहेगी।
0: जी
1: तो इसके लिए हमें शुरुआत से ही ध्यान रखना होगा कि पशु जो होता है एक समय के बाद, जब वो गाय है तो 18 से 20 महीने में जो है उसका पहला प्यूबर्टी जिसे बोलते हैं कि वो एक व्यवस्था आती होती है जिसमें शारीरिक में चेंज होता है, बदलाव आता है और वो आगे के लिए संतति उत्पन्न करने के लिए तैयार होता है। तो उसी समय से हमें ध्यान देना है कि हम उसका नियमित जो है टीकाकरण है,
0: जी
1: नियमित जो है उसको कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करवाएं जो हर 6 महीने पे हमें देनी होती है,
0: जी
1: नियमित जो है उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पे, जहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी के संपर्क करके आप इसका स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकते हैं। उसे संपूर्ण आहार दें,
0: जी
1: संपूर्ण आहार में आप उसे हरा चारा दे सकते हैं, जरी दे सकते हैं, चोकर दे सकते हैं, भूसा दे सकते हैं, आपके पास जो भी उत्पन्न है या फिर उपलब्ध है सुविधाएं वो आप उसे दे सकते हैं।
0: जी
1: इसके साथ साथ आप जब भी कभी पशु गर्मी में आता है तो अपने ट्रेंड सेंटर पे ही जाकर के उसका कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। जी
0: अच्छा बनी मान लें कि 18 महीना के बच्चा हो इसे पहले अगर खान पान पर करे विशेष ध्यान

0: रखा जाए, ओकरे स्वास्थ्य के ध्यान दिया जाए, तो निश्चित तौर पे 18 महीने के बाद वो गर्मी का अवस्था में आए तो गर्भाधान करावा जा
1: जी
0: सकत
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल
0: मैंने एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि पशुओं के जौन बांधे की जगह बाटे जहाँ पर गौशाला बनावत लोगे, वहाँ के रख रखाव, वहाँ के जौन व्यवस्था बाटे वो पे कैसे ध्यान दें जौन पशु स्वस्थ रहें।
1: हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी पशुओं को रखा जाता है वो कंक्रीट, मतलब कि एक पक्का जगह होते हुए भी एक समतल होना चाहिए जिसमें पानी का रुक मतलब रुकाव ना हो।
0: जी
1: पानी वहाँ रुकेगा तो उन्हें बीमारियाँ फैलेंगी, मच्छर वहाँ रहेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। उसके अलावा वहाँ पे हर महीने 3-4 महीने पे जो है आप उसमें चूने का या फिनाइल का छिड़काव करवाते रहिए,
0: जी
1: जिससे जो शरीर पे कीटे कीड़े होते हैं वो कभी कभी अंडे के रूप में वहाँ पनपने लगते हैं।
0: जी
1: आप उन्हों आपने अपने जो पशु को है वो तो टीकाकरण के साथ और अपने क्या कहते हैं कीटनाशक के साथ तो सेफ कर लिया, बचा लिया, लेकिन जो कीड़े के अंडे होते हैं वो अक्सर उन पे चढ़ जाते हैं और वो शिकायत आती है कि फिर अभी तो मैंने कीड़े की दवा खिलाई थी और साहब फिर से जो है कीड़े आ गए। तो
0: जी
1: ये आप जब वहाँ पे छिड़काव करवाएंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो ये दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। इसके साथ आप ऊपर की जो है छत वो ऐसी रखें कि पशु को बहुत गर्मी ना हो, बारिश से बचा के रखें। तो जहाँ हम उनको उठते बांधते हैं वो जगह भी बदलनी चाहिए।
0: जी
1: पशुओं का खाने का जगह अलग होना चाहिए और बांधने की जगह, उनको रात में रखने का जगह अलग होना चाहिए। ये
0: जी
1: ध्यान में रखेंगे तो पशु स्वस्थ रहेगा और दूध भी अधिक देगा।
0: बनी एक चीज़ दिमाग में पशुपालक भाइन के रहा थे कि जौन नस्ल सुधार से जानवर तैयार किया जाते हैं उनमें रोग लगे के कुछ ज़्यादा संभावना बनत है, तो ये कितना सही बात है और अगर कैसे वो जो ना है रोग से बचा सकत हमारे पशुअन के।
1: हाँ जी बिल्कुल, ये मैं बता दूं कि जो हमारे पास स्वदेशी नस्ल के कुछ पशु हैं जिनके मैं बता दूं, गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, ऐसी नस्ल जो होती हैं इनमें गर्मी सहने की और रोग सहने की क्षमता अधिक होती है।
0: जी
1: तो ऐसी नस्ल के हम नर मादा से जो सीमन उत्पन्न करवाते हैं और उसको स्ट्रॉ के द्वारा माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, तो जो संतति उत्पन्न होती है उसमें भी एक चीज़ें पाई गई हैं कि उनमें भी रोग की और गर्मी सहने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। और अगर जैसे पशुपालक बहुत पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहा है, उनको नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, और विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे जो पशु होते हैं वो भली भांति वहाँ रह पाते हैं,
0: जी
1: तो ये इस नस्ल की कुछ खूबियां हैं और इसी वजह से इन नस्ल के हम आगे भी बढ़ने की उम्मीद रखते हैं और इन नस्ल को हमने आगे जो है प्रयोग में लाया है।
0: का मतलब कि संकर नस्ल के अलावा अपने देश के जवान शुद्ध नस्ल बाटी गाय के
1: जी जी
0: उनमें भी खान पान पर सुधार करके और जौन भाई नस्ल सुधार की बात की जात है उनमें नस्ल सुधार करके अच्छा गाय के तैयार किया जा सकत
1: जी बिल्कुल
0: है। वहीं जौन भैंस में बाटी जौन जात बाटी मुख्य रूप से मुर्रा और भदावरी भाई तो ज़्यादा दूध दे वाली बाटी, का इनमें भी नस्ल सुधार की बात की है जात है।
1: अभी ये प्रोग्राम फिलहाल जो है जो बछिया और उसका हो चल रहा है वो गायों में ज़्यादातर हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं,
0: जी
1: भैंसों में कम ला रहे हैं, पर आगे आने वाले टाइम में इसको भी हम कोशिश में करेंगे कि भैंसों में ये चीज़ आए और
0: जी
1: इसमें भी हम कृत्रिम गर्भाधान करके इनका भी नस्ल सुधार किया जा सके।
0: एक चीज़ और हम जानने चाहते बाटी, जैसे पशुपालक भाई पशुओं में अच्छा खासा भाई धन लगाए के तैयार करते थे उनका, बीच बीच में उनके साथ कुछ घटना भी हो जाते है जेकरे लिए बीमा वगैरह भी करावत हैं उसी काफ़ी कुछ बचाव होते है,
1: जी
0: लेकिन ऐसा बीमारी जोन भाई बहुत जानलेवा बीमारी है वो ना हो पशुओं के एकरे लिए का कुछ उनका ध्यान दे चाहे अलग अलग मौसम में।
1: अलग अलग मौसम में देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि हर मौसम के 6 महीने पर जो है आप उन्हें कीटनाशक दवाइयाँ ज़रूर दें।
0: जी
1: कीड़े की बीमारी जब पेट में होती है तो पशु कम आहार लेता है, आहार का घटना मतलब कि पौष्टिक चीज़ों का कम होना शरीर में, जिससे
0: जी
1: बीमारियाँ फैलती हैं। और इसके अलावा जैसे आप खुरपका मुहपका बीमारी का नाम सुने होंगे,
0: जी जी
1: इसका
0: जी
1: नियमित टीका हर चिकित्सालय पे उपलब्ध है, तो पशुपालकों को इसका नियमित टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर किसी पशु को ये बीमारी हो गई है तो उसका नज़दीकी अस्पताल में जाकर के इलाज करवाएं। और
0: जी
1: कुछ लोग होते हैं कि घर बुला करके और पैसा ज़्यादा खर्च कर देते हैं, पशु फिर भी ठीक नहीं होता है, तो ऐसे पशुपालकों से निवेदन है कि नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाके इसका उपलब्ध कराया हुआ जो दवाइयाँ हैं उनसे उपचार कराया जाए। और गला घोटू की बीमारी है, जिस समय जब ये

0: होती है उसके पहले ही इसका टीकाकरण करवाया जाता है नियमित। उसके बाद अभी नई एक बीमारी आई है जिसमें लंपी स्किन डिजीज, सब लोग जानते हैं इसके बारे में कितनी
1: जी
0: बड़ी महामारी फैली इससे, तो इसका भी टीका जो है अब सरकार ने उपलब्ध कराया है। हर पशु चिकित्सालय पे इसका भी टीका आपको मिल जाएगा जो कि निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। तो इसीलिए जब आपको लगता है कि पशु स्वस्थ है उस समय आप टीकाकरण करवाते हैं तो ये आपके लिए भी फायदा करता है और पशु को तो फायदा करेगा ही। बीमारी में सबसे पहले पशुओं का इलाज करवाइए, उसके बाद उसको टीकाकरण के लिए रखिए।
1: जी
0: नियमित टीकाकरण और नियमित जो है कीटनाशक दवाइयों से आपका पशु स्वस्थ रहेगा।
1: बनी काहे मतलब कि भाई गांव में जो नीम हकीम होते हैं भाई, ऐसे लोग कम जानकारी में पशुओं के इलाज करे के लिए लोग बुला लेते हैं,
0: जी,
1: उनका ना बुलाए के जो पशु चिकित्सालय में भाई योग्य चिकित्सक बाटे उनसे संपर्क करें। अगर समय पे पशुओं के जो बीमारी हो कर इलाज करा ले ही, समय समय पे टीकाकरण के काम करा ले ही, पोषक आहार जौन बाटे ओका अगर पशु उनके देत रही तो निश्चित तौर पर पशु उनका स्वस्थ रही और ज़्यादा आय दही। बनी आप आई, इतना बढ़िया जानकारी दी है, सब जानकारी के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ
1: हाँ
2: भैया मोती,
1: देखा हो ये भैया जौन बत कही रही न हो कि पशुओं में नस्ल सुधार,
2: हाँ
1: तो डॉक्टर प्रिया दर्शना से चंजीत यादव भैया कितना फरिया फरिया बताया।
2: सही भाई, कैसे सुधार होए का आए, उस आधुनिक सुविधा का टीका लगे कि वे सब के बारे में फरियाए के बताएं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: पशुपालक भाई हमार समझें, उनका सुनें, उनके हिसाब से काम करें जौन
1: बिल्कुल
2: बाटे।
1: बिल्कुल भाई।
2: अब देखा हो हम तक कही ना कि आगे कोनो बात बत कही हो, अब बतावत रहे लोग भाषा कविता पाठ भी आज बाटे है,
1: बिल्कुल
2: सोमवार का
1: भैया।
2: दिन है ये, तो भैया हो पहले कुछ संझा के टाइम बाटे ही जोन बा गीत गौनाई हो जाए ना तो मजा आवे थोड़ा से।
1: नहीं भाई देखा सावन का महीना चले और कजरी न
2: आ
1: होए न हो।
2: आ तो रंगता ही ना आया
1: हाँ
2: आदमी।
1: बिल्कुल भाई, तो देखा हो शिवलाल गुप्ता भैया के गावा भाई कजरी भाई, तो केकरा के भैया भेजेला धानी चुनरिया,
2: अच्छा,
1: तो एका सुन लिया जाए।
2: सुनवाओ भैया।

0: हाँ
1: भैया
0: भाई।
1: मोती, देखा कजरी शिवलाल गुप्ता किसान भाई, सुनन बात कजरी को होत बा भाई। सावन में कजरी
0: बिल्कुल
1: अच्छी
0: बिल्कुल।
1: लागत है, जवन बाटे है सौना भदौना के नित्य अनहरिया तो कजरिया खेले जावे है न नदी। तो भैया हो कजरी सावन समय बा, सावन चारों तरफ हरियाली बा, बारिश होत बा, लेकिन अपने साथे साथे इस सावन कुछ ऐसा चीज भी लेके आवत था जे हम तो सोची कि भाई ये काम करे से ज़्यादा फायदा होए, ये बचाव करी तो हमार सेहत अच्छी रहे। काहे से जहाँ बहुत अच्छा भी रहा तो वहाँ कुछ ना कुछ रोग दोग बेरामी भी लेके आवत है हरियाली।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अब
0: बिल्कुल।
1: भाई भाई देखा बारिश के समय बाटा, यह समय पानी ज़्यादातर प्रदूषित हो जाता है। हम तो पानी पिए थे, अगर ऊपर सफाई के ध्यान नहीं देते तो उसे तमाम तरह के रोग दोख बेरामी हो सकत है
0: यह
1: आज।
0: भाई जब तू पानी की बात कह न, बरसतवा में हो देखा जो नला वाला पनिया हमें लोग पीत न, हम तो कहब कि ओहो भैया उबाल के छान के तव पिए।
1: ये बात सही कहे भैया हो, नल तो आजकल पानी सभी पिए थे, अब कुआं से पानी नहीं पिए थे, कहूँ कहूँ हो सकत पिए थे। तो भाई नल के पानी जैसे बताए उबाल के छान के पिए तो ज़्यादा अच्छा रहा है। साथे साथे नल के जौन पा आस पास के जगह बा हुआ गंदा पानी ना इकट्ठा हो रहे, वही जाए भैया ऋषि ऋषि के तो वही आए हैं।
0: या भाई अगर चारों तरफ साफ सफाई रही न हो तो भाई एक लोटा पानी भरे जाबा तो साफ सुथरा तो रही हो।
1: साफ सुथरा रहे।
0: अ भाई देखा घरे दुआरे के आगे पीछे अगल बगल, हम तो कहब कि राहे राहे पे अगर भाई कूड़ा कचरा बाए तो ओका भी साफ सफाई कई के चिक्कन मुक्कन कह दे, ताकि भाई कौनो जीव जंतु, जहरीला जीव जंतु या मच्छर
1: ना
0: माछी, एकर भैया प्रकोप कम हो जाई और ऐसे अपने पशुअन के भी बचाव होई, हमरे तोहरे लड़का गदेला के भी बचाव होई।
1: सही कहे भाई। तो साफ सफाई भी विशेष ध्यान दें, और बारिश में तो बहुत जरूरी बा कि पानी ना इकट्ठा हो पावे। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भाई पानी ओका इस तालाब में या पोखरा में ले जाएं, इकट्ठा करें जौने से भूजल स्तर भी बना रहा है। ऐसे नाली देखा आजकल तो भाई का कहा थी अपने प्रधानन के माध्यम से ऐसे योजना आई।

0: हैं कि भाई गांव के विकास होत बाटे,
1: बिल्कुल
0: सड़क भा, खड़ंजा भा, नाली भा, तो नाली वैसन जगह को पानी ले जाए गिरावे कि जहाँ तालाब हो पानी इकट्ठा भी हो।
1: बिल्कुल, बरसात के पानी भाई अगर छते पर से आवत बाय या गांव में बहके आवत बाय, ओका भैया अगर तालाब में गिरावत हैं तो जल स्तर ओकर बरकरार रहे,
0: बरकरार रहे।
1: अब आवे वाले समय में गर्मियम हो देखा तमाम जल जौन जलीय जीव जंतु हैं हमें राहत हैं, और जौन भैया जंगल में रहे वाले कुछ पशु हैं भैया उन्हें पानी पिए के सुविधा हो जाता,
0: सुविधा हो जाए जल स्तर बना रहा था, नहीं देखा तो गर्मी में नल पानी छोड़ देता है।
1: अरे भाई हमारे देखा गवना में न हो, अरे घनश्याम भैया के द्वारे के नल पानी नहीं दे तो समय तो बोरिंग भैया देखा चाहे जितना गहिर कराए लिया, जब तक तालाबे में पानी लबालब न रही
0: तब तो जल स्तर
1: जल स्तर बढ़े न।
0: एक साथे साथे भैया जब जल स्तर सही रहे तो पेड़ पौधा भी हरा रहा था, गर्मी में सूखे लागत इनके तो ना पानी बड़को पेड़ बन सूखे लागत।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो भैया जरूरी बा कि पानी बचाई के रखा, लेकिन अब पिए के बाद साफ सफाई से पिए। अगर का कहा थी मान लो कहूँ मजबूरी में क्यों बा पियत बा, मान लो कुआँ का पानी तो प्रयास करें कुआँ पक्का हो ढका हो, हमें समय समय पर दवाई डालनी है और आसपास वहाँ भी गंदा पानी इकट्ठा ना हो
1: ना हो। तो एक बात हम कहे बैजू भैया, देखा हो जहाँ पशु बांधत है न हुआ भाई, देखा यह समय बरसात के मौसम में कीच काच हो जाता है
0: भैया की,
1: तो गोबर अगर परा हो तो ओका बढ़िया तरीके से भैया साफ सफाई कर दिया, और हम ही कहब कि ओका सूखा करे बदे अगर राखी मिले भाई, राखी देख ले कि आग के भाई चिंगारी न हो।
0: सही कह भैया,
1: तो राखी मिले तो ओका भैया राखी छिड़क के एकदम बढ़िया से ओका सुखाई जाए तो पशुअन के हुआ बांधा।
0: हाँ जौन बाटे भाई साफ सफाई रहे, गीला ना रहे, नहीं वो बैठ नहीं सकते पशु बैठते ना, खास करके जौन गाय हैं भैया, गाय तो बैठबे नहीं करती गीले में, तो जरूरी बात साफ सफाई हो सूखा हो जौन बा तब का कहथिन पशुअन के लिए भी अच्छा रहे, पशुअन के भी नहवाए धोवाए साफ रखें। मान लगेन जौन बाटे जानवर रहे ना, मार कीचड़ा लगाए वह दूध दिहत है तो भाई भाई उसमें जौन बाटे न कहूँ से प्रदूषित हो जाता है, वो बीमारी के कारण बना था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, साफ सफाई पे विशेष ध्यान। दूसर बात यह है कि जवन नाद में भैया उनके खाए वाला चारा डारत है भाई, वो देखा चारा भी साफ सुथरा होए के चाहिए,
0: चारा साफ सुथरा हो, पानी अलग से पियावे और ताजा पियावे,
1: ताजा पियावे। हाँ एक बात देखे में आवत है न हो कि जौन लेरुआ है, तो लेरुआ का भाई विशेष ध्यान देवे की जरूरत है।
0: ये बात सही गया भैया, हम कही लेरुआ जौन बाटे न जौन बड़ा जानवर से थोड़ा दूर रखे के चाहिए, नहीं तो उनका भी दिक्कत हो जात है।
1: बिल्कुल,
0: और उनका साफ सफाई जरूरी बाटे, उनके खान पान भी देखे के चाहे जौन बट तब का कहा थे वो भी स्वस्थ रही, उनका स्वस्थ रही तभी आगे चल के बड़ा पशु बनी वो काम आई।
1: बिल्कुल भाई, देखा एक चीज कहा वो उनके खाए में जोन है न भाई चूनी चोकर ये तो देबे करा, हम तो कहा थोड़ा सा अगर खड़ा नमक मिला के दे देते हैं ना तो उनके पेटवा में जोन पशुअन के भैया कीड़ा मकोड़ा जाए से कुछ भाई कीरी परियात है, तो ऐसे पशु के भाई स्वास्थ्य बदे भी अच्छा प्रभाव पड़ी
0: करा, तो भाई पाचन भी सही रहा था भाई। संतुलित आहार की बात हो, हमें भूसा कितना हो चाहे चूनी चोकर कितना हो सब मात्रा अलग अलग बा, वह हिसाब से संतुलित आहार दें, हरा चारा भूसा सब मिलाई के तब ज़्यादा अच्छा रहा था। एक जो लगेन है उनका भाई ज़्यादा जरूरत हो, जो लागत ना है उनका कम जरूरत हो, तो वही हिसाब से जो बाटे अपन किसान भाई करें तो ज़्यादा फायदेमंद हुए। अब देखा हो हम तो कही ना लागे लोक भाषा कविता पाठ के जौन बात होत रही, पहले सुनवा दिया जाए तो फिर बात बात कही हो, तो केकर कविता पाठ सुनवा था भैया?
1: भैया नागेंद्र मणि मिश्रा का बाटे, एक आवाज सुन लिया जाए आगे बात बात कही हो
0: सुनवाओ भैया।
2: हम एक अवधि कविता प्रस्तुत करी था जेके शीर्षक बा अरे मोर काका अरे मोर काका, तो स्वार्थ के पठुआ सबे के पढ़त बा, कमजोर सिद्धी आहे मूल चढ़त बा, और जानत आहे ई कि हम फाट पर बे, मुला जे मुँह गड़वा उही मुँह बढ़त बा, जंगल में मस्ती और बस्ती में डाका, अरे मोर काका अरे मोर काका। पैसा रहे दुनिया चेला तुहारा, पैसा रहे दुनिया चेला तुहारा, मनई तुहार और मेला तुहारा, अब्बा पास पैसा तो तू सबके अब्बा, गरीब और गुरबा गदेला तुहारा, पैसा न होए

तो जा ब्या तू हाका, अरे मोर काका, अरे मोर काका। एक बंदी पर विशेष ध्यान चाहिए थे कि पहले के राजा भयन सब भिखारी, पहले के राजा भयन सब भिखारी, कतौ भाई झगड़ा कतौ मारा मारी, जे जौनी मुँह पावय उही मुँह हबोटय, शिकार एक बाटय 11 शिकारी, और चारियों कैत से अहय बंद नाका, अरे मोर काका, अरे मोर काका। ना जानी कैसे जियत बाय मनई, ना जानी कैसे जियत बाय मनई, जखम इतना कैसे।

अहे बंद नाका, अरे मोर काका, अरे मोर काका। ना जानी कैसे जियत बाय मनई, ना जानी कैसे जियत बाय मनई, जखम इतना कैसे सियत बाय मनई। और स्वार्थ का साधे बरे आज देखा कि भाइयों के खून अब पियत बाय मनई। और घुट घुट मरे सब मुला बंद बाका, अरे मोर काका, अरे मोर काका। और दाना न पाऊब तो हम खाब भूसा, दाना न पाऊब तो हम खाब भूसा, मूल अब गरीबोन के खुनवा न चूसा। समझत अही डेर से बोलत नहीं ना, कि सुनब्या गिरे लागे फिर लात घूसा। अरे डायन अहा हमरी किस्मत में डाका, अरे मोर काका, अरे मोर काका। और ये रचना के अंतिम बंद पर विशेष आशीर्वाद चाहिए था कि घर और गिरिस्ती के ई मेहरबानी, घर और गिरिस्ती के ई मेहरबानी, मुस्कान जर गए सुलुक गई जवानी। और आज का लियावा तो कल ऊ चुकावा, यही तेल नोने मगे जिंदगानी। और यह सोच जियरा दुखे जैसे पाका, अरे मोर काका, अरे मोर काका। और एक कविता और आजकल अपने गांव घर परिवार समाज में कुल एक परसंताप शब्द ओलियान बा, तो ई रचना वही भावभूमि पर प्रस्तुत करा चाहिए था, विशेष ध्यान चाहिए था कि छल प्रपंच तिकड़मबाजी से मची यह कुल आपा धापी, छल प्रपंच तिकड़मबाजी से मची यह कुल आपा धापी। और तोहरे आगे पूछ हिलावे कितनो बड़का होए प्रतापी, अस पिचाल फैलाया भयवा हम सब तोहसे थर थर कापी। फाट परे सब तोहरे गोड़े लुच्चा चोर लफंगा पापी, आहा बहुत तू परसंतापी, आहा बहुत तू परसंतापी। और आपके विशेष गुण का है कि कान भरे माँ माहिर बाट्या, कान भरे माँ माहिर बाट्या, तू एहमा जग जाहिर बाट्या। एहमू ऐठ्या ओहमू ऐठ्या, कुर्सी लेहा फरकते बैठ्या, जौन मने माँ आवा बोल्या, भेद केहू के केहू से खोल्या, केहू के काने ऐसा फुसक्या, आग लगाया चुप्पे खुसक्या। इत्मीनान से गढ़न विधाता तोहरे सारी विद्या व्यापी, आहा बहुत तू परसंतापी, आहा बहुत तू परसंतापी। आई रचना पे विशेष पर ध्यान चाहिए था कि सल कंते केहू रहा न पावे, सल कंते केहू रहा न पावे, दुख तकलीफ कहे ना पावे। और बिना बात के आग लगावा तू ही दौड़ दमकल बोलवावा, डार फरी मूल नई न तनिको, हया शरम छुई गई न तनिको, मगर मच्छ तोहरे झोली मा गजब दहाड़ आहे बोली मा। और चमड़ी तक खलियाए लिया तू तोहरे हाथे ऐसी रापी, आहा बहुत तू परसंतापी, आहा बहुत तू परसंतापी। ऐ कविता के अंतिम बंद कि कब तक तू मनमानी कर ब्या, कब तक तू मनमानी कर ब्या, गांव बेच परधानी कर ब्या। और घड़ा पाप के जब भर जाए सोने के लंका जर जाए, और अब जब तक तू हारी न जाब्या, चार लात तू मारी न जाब्या, तब तक भाई सुधरब्या ना तू, काम नीक कुछ कर ब्या ना तू। अब पाप तुहार बनेरी चढ़ गया, अब हम कब तक मूंदी ढांपी, आहा बहुत तू परसंतापी, आहा बहुत तू परसंतापी। एक कविता और जौन गांव घर की माटी से और ये घर घर के किहानी शीर्षक से प्रस्तुत करी था, आप सबके विशेष ध्यान चाहिए था कि जियरा सांसत माँ परा आहे, निकुरा से ऊपर पानी बा, घर घर के यह किहानी बा। जियरा सांसत माँ परा आहे, निकुरा से ऊपर पानी बा, घर घर के यह किहानी बा। और बंद देखें कि बड़कवा भाई बगिया बेचे का मारा मारी कहे है, बड़कवा भाई बगिया बेचे का मारा मारी कहे है, छोटकवा खेत बांटे खातिर दुई दुई पटवारी कहे है, मेहर चूल्हा अलगावे के अलगे तैयारी कहे है, जीते जीव कुछ ना बटे देव ई जिद महतारी कहे है। और सब अपने आपन बरत हैं चारू मुँह हींचा तानी बा, घर घर के यह किहानी बा। अगला बंद कि सब चका चौंध माँ परा अहें अब जीवन सादा भूल गयन, सब चका चौंध माँ परा अहें अब जीवन सादा भूल गयन, फिर नेक काम के कौन बात जब नेक इरादा भूल गयन, अपनी मेहरी के मुँह देखते सब माई दादा भूल गयन, केहू का समाज के डर नाहीं इज्जत मर्यादा भूल गयन, भयहू के कहे मजेठ चले देवरा के कहे जेठानी बा, घर घर के यह किहानी बा।

0: घर घर के ई है कि हानि बा। आ ई बंद पे विशेष ध्यान चाही था कि भाइन मा उ जे बड़ा आहे दुई पैसा जेकरे हाथे बा, भाइन मा उ जे बड़ा आहे दुई पैसा जेकरे हाथे बा, ओहके लड़िका अंग्रेज बना मेहरारू साथे साथे बा, माई बप्पा खेती बारी सब जेकरे मूड़े माथे बा, उ कथरी वाले डोरा से अपन पैजामा नाथे बा, एहमू रोटी के जोग नहीं ओहमू कबाब बिरयानी बा, घर घर के इहे किहानी बा। और अंतिम बंदी रचना के कि जब भयन रिटायर राम लखन सब पैसा बेटवे बाँट लेहन, जब भयन रिटायर राम लखन सब पैसा बेटवे बाँट लेहन, अपना अपना का चारू जन सख सुख सुविधा से पाट लेहन, जब उम्र ढली हो गए बीमार मड़ही म टूटही खाट लेहन, बेटवन से कहन कि चेता तो सब पारी पारी डांट लेहन, महतारी कौरा मांग रही बहनी हुई चली सयानी बा, घर घर के इहे किहानी बा, घर घर के इहे किहानी बा।
1: हाँ भैया, घर घर के इहे कहानी बा जवन बा है। आई नागेंद्र मणि मिश्रा से लोक भाषा कविता पाठ किसान भाई सुनन भाई का बिताई में कुछ न कुछ संदेश रहा था जौने से बड़ा सीख भी मिला था।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई, देखा हो हम तो कही कि अगर मौसम का बात कही जाए तो मौसम में कहूँ कहूँ बारिश हो जाए तो कहूँ कहूँ नहीं भी आओ, तो हम तो रास्ता में आए थे देखी थोड़ी दूर बरसत वे बाद झूरा बाटे और फिर थोड़ी दूर बरसत बा। तो खेती किसानी में किसान भाई अगर लगा बाटे ना तो भाई अपने हिसाब से देख रहे उनके खेती में का जरूरत बा का नहीं, अगर सिंचाई की जरूरत बा कहे से धान जोन खरीफ का मुख्य फसल धान तो है ही बाटे खेते में,
2: बिल्कुल
1: पानी के ज्यादा जरूरत भी हो था, तो अपने हिसाब से काम करें। खास कर के इस समय में जोन बाटे इतना दिन हो गए लगाए धान, अब थोड़ा ऐसा स्थिति में आई गया बाटे है कि जरूरत बा का सही देखभाल के नहीं है, समय गड़बड़ाई जाए तो भैया हो खेती पूरी साल भरे खराब हो जाए।
2: बिल्कुल भाई, सांस सवेरे अपन देखत रहे कौन रोग बिरामी लागत बा तो ओकर उपचार करें।
1: ये दो चीज है, समय हो सका तो कोनो रोग बिरामी लग सकत है या तो खरपतवार बहुत हो जात है। सबसे जरूरी बात खरपतवार अगर ना निकली तो जवन खाद गोबर दे ही ना उन पता चली खरपतवार खींच लेगे ओकर ताकत, तो सबसे पहले खरपतवार निकाल दें। उसमें जवन दवाई छिड़कई वाली आवत अगर छिड़कें तो भाई तो उसे अगर हो जाए तो दवाई भी छिड़क दें, सलाह ले लें जो उनमें कृषि विशेषज्ञ से। जरूरी बात तो खरपतवार बहुत जरूरी बा है निकालब। एक बात अगर कहूँ भी कौनो खास करके मुरझावा रोग देखे में लग जाता है ना, जी कमी रहा था और कौनो भी रोग बेरामी देखें तो कृषि विशेषज्ञ सलाह के हिसाब से हमें दवाई के छिड़काव जरूर करें।
2: ए भाई तो हो गए धाने वाली बात तू बताया है, जौन सब्जी भैया लता वाली सब्जी ये ना है।
1: हाँ।
2: देखा हो कभो कभो बरसात हो जाता तो पानी लग जाता है,
1: उकट जात है भाई।
2: हाँ उकट जात है, तो हम तो कहा कि वह खेते में भाई ऐसा नाली बना दे कि बरसात के पानी भैया बहरे निकल जाए।
1: ये बात सही कहे,
2: और मेड़ बना दे ताकि पानी थालक लगे न लागे।
1: हाँ, चाहे बरसात वाली सब्जी हो भैया या खास करके मक्का के खेती अच्छे पैमाने पे करते हैं किसान भाई तो कर भी देखभाल कर रहे, बाली आवत समय कोनो दिक्कत ना हो, खास कर जानवर से बड़ा नुकसान हो जाए बाल जब बैठ जाए देखभाल कर रही। अब देखा समय समय स्कूट निकला गया था तो चले की बेला भी हो गई बाटे तो पंचन से विदा ले जाए तो पंचो
2: राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जनपद ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार

0: दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ, क्षेत्रीय सम्मेलन में युवाओं से सजग मतदाता बनने का किया आह्वान। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित, कहा मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली में 879 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टे के आवंटन पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रायबरेली के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। श्री योगी ने कहा कि इसी फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने की वजह से आज रायबरेली का नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है।
1: इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और पहली बार मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत ट्रेन बनी है। वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायबरेली में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति सभागार का लोकार्पण किया। साथ ही डाक विभाग की ओर से तैयार किए गए विशेष आवरण का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के करीब 150 संस्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम के तहत युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। श्री पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा।
2: मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है 29 तारीख को, उसको इस साल माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को सेलिब्रेट करते हुए वर्चुअली इंटरेक्शन करेंगे। हमारे देश के सारे युवाओं से जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि खेल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे हम फिट होकर एक विकसित भारत में एक युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे नशे से हम युवा को दूर रख सकते हैं अगर उसको हम खेलों की तरफ मोड़ते हैं।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर है। दौरे के पहले दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता साक्षरता क्लब और ईसीआई के नेट ऐप को लेकर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने पारंपरिक इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब को मतदाता जागरूकता और चुनावी शिक्षा के लिए एक मजबूत मंच में बदलने के लिए एक सशक्त और सक्रिय पहल की है। श्री कुमार ने कहा कि आज के संवाद ने इस बात की पुष्टि की है कि छात्रों को चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता की अच्छी समझ है और वे लोकतंत्र में भाग लेने पर गर्व महसूस करते हैं।
3: 20 जिलों से आए हुए प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और छात्राओं के साथ संवाद से इस बात की आश्वासना मिलती है कि हमारे छात्र और छात्राओं को चुनावी प्रक्रिया का पूरा ज्ञान भी है और उसकी पारदर्शिता और उसमें उनकी सहभागिता के ऊपर उनको नाज भी। भारत के चुनाव संविधान, कानून और निर्देशों के तहत ही होते हैं। इसी पारदर्शी प्रक्रिया को छात्रों ने स्वयं देखा।
0: लखनऊ के क्षेत्रीय सम्मेलन में शाहजहांपुर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ, अमेठी समेत 20 जनपदों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और मीडिया नोडल अधिकारी और लगभग 1500 विद्यार्थी, शिक्षक और संस्थानों के प्रमुख शामिल हुए। इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ के कॉलविन तालुकेदार्स कॉलेज में देश की

0: लोकतांत्रिक प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम की विश्वसनीयता और युवा मतदाताओं के महत्व पर छात्रों के साथ संवाद किया। ईवीएम को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीनें इंटरनेट या किसी भी वायरलेस तकनीक से नहीं जुड़ी होती हैं। उन्होंने छात्रों को फेक न्यूज से सतर्क रहने की सलाह दी। श्री कुमार ने छात्रों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित ये क्षेत्रीय सम्मेलन लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कल लखनऊ और आसपास के जनपदों के लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव और ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में आज 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलीला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। पेश एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने कहा कि ब्रिक्स एक विचार से आगे बढ़कर उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रमुख मंचों में शामिल हो गया है। जलवायु परिवर्तन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सतत विकास को लोगों और समुदायों की जरूरतों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक और सामुदायिक ज्ञान जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता मजबूत करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच का आयोजन लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक किया जा रहा है। इस दौरान ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ आकर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में चरणबद्ध तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। बाराबंकी स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए उरई, जालौन, झांसी, बिठूर, कानपुर समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उधर वाराणसी में तड़के मंगला आरती के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को काशी हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंज उठी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों भक्त रविवार रात से ही गंगा स्नान कर कतार में लग गए, जबकि कांवरिये बोलबम का जयघोष करते बाबा के दरबार की ओर बढ़ते रहे। भीड़ को देखते हुए धाम में जिग जग बैरिकेडिंग, छाया, पेयजल, मेडिकल कैंप और खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई थी। रात्रि में भोग श्रृंगार आरती से पूर्व बाबा की रजत चल प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान कर भव्य श्रृंगार किया जाएगा। आरती के बाद श्रद्धालु बाबा के दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली को दी 346 विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कर जनपद ने देश में बनाई अपनी पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे वर्चुअली संवाद। खेल, फिटनेस और अनुशासन का देंगे मंत्र। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। क्षेत्रीय सम्मेलन में युवाओं से सजग मतदाता बनने का किया आह्वान। ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता। और सावन माह के अंतिम सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विशेष प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में सुनिए सूर्य नारायण की वार्ता, दलित साहित्यकार और प्रतिरोध के स्वर।
1: हिंदी में दलित साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लोग हर परिघटना की ऐतिहासिक परंपरा के रेखांकन के समर्थक हैं, वे दलित लेखन की परंपरा को भी दक्षिण भारत की आलवार और नायनार भक्ति साहित्य तक ले जाते हैं। यह सच है कि दक्षिण भारतीय भक्ति काव्य और उत्तर भारत की संत काव्य परंपरा में वर्ण व्यवस्था और सामाजिक तथा स्थितिवाद, छुआछूत और तरह तरह के भेदभावों पर तीखा प्रहार किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन धाराओं में दलित श्रमिक समाज से आने वाले कवियों की संख्या अधिक है, इसीलिए समाज के दलित शोषित तबके का स्वर इनकी कविता में सुना जा सकता है। फिर भी उसे दलित साहित्य नहीं कहा जा सकता। दलित साहित्य के पहले दलित आंदोलन और उसकी वैचारिकी, जिसे दलित विमर्श कहा जाता है, का उदय महत्वपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में, जिसे नवजागरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, में मुक्ति और स्वाधीनता का दायरा बृहत्तर था। उपनिवेशवाद के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं और रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष और एक नया आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण भी स्वाधीनता आंदोलन की संकल्पनाओं में था। इसीलिए राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सांस्कृतिक आज़ादी के लिए भी आंदोलन चलाया गया। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक समाज सुधार, धर्म सुधार का आंदोलन विकसित हुआ। पेरियार, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, डॉ. भीमराव अंबेडकर, अछूतानंद आदि समाज सुधारक इसी आंदोलन की उपज थे। कई महत्वपूर्ण संगठन बने। इन महान चिंतकों ने मनुष्य मनुष्य के बीच वर्ण, जात, धर्म तथा लैंगिक आधार पर भेदभाव का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था विरोध को आधार बनाकर एक समतामूलक समाज की परिकल्पना की गई। यही दार्शनिक सामाजिक विचारधारा या वैचारिकी दलित आंदोलन की आरंभिक वैचारिकी के रूप में जानी जाती है। इसका मूल स्वर वर्ण व्यवस्था का विरोध है। यह प्रतिरोध सृजनात्मक है, क्योंकि इनका उद्देश्य सदियों से अधिकार वंचित लोगों को जीने के सामान्य अधिकार दिलाने का संघर्ष था, जो आज भी है। इतिहास लेखन की सबाल्टर्न धारा में इसे वर्चस्व का प्रतिरोध या हाशिए के समाज को मुख्य पृष्ठ पर लाने का संघर्ष कहा जाता है। दलित वैचारिकी की व्यवस्थित शुरुआत ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी और डॉ. भीमराव अंबेडकर का लेखन, विशेषकर उनकी पुस्तक जाति का उन्मूलन से मानी जाती है। महाराष्ट्र में महाड़ आंदोलन से लेकर मनुस्मृति आंदोलन तक जाति और वर्ण व्यवस्था विरोधी आंदोलन हुए। इसीलिए आधुनिक काल में सबसे आरंभिक दलित लेखन महाराष्ट्र में शुरू होता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी अछूतोद्धार को या दलित समाज के मंदिर में प्रवेश को आज़ादी के संघर्ष का हिस्सा बनाया। यह प्रश्न पूरे देश में अपने अपने ढंग से उठाया गया, लेकिन महाराष्ट्र का दलित लेखन ही अन्य क्षेत्रों में दलित साहित्य का आधार बना। महाराष्ट्र में इसकी अत्यंत सशक्त परंपरा है। दया पवार, नारायण सुर्वे, बाबूराव बागुल, कौशल्या बैसंत्री, लक्ष्मण गायकवाड़, शरण कुमार लिम्बाले, नामदेव ढसाल, भालचंद निमाड़े मराठी दलित साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि दलित समाज की मुक्ति का प्रश्न नवजागरण आंदोलन के दौरान एक केंद्रीय प्रश्न था। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के दूसरे भागों में लगभग सभी भाषाओं में सदियों से घृणा और यातना झेल रहे मानव समाज की मुक्ति को केंद्र बनाकर साहित्य रचना की गई। हिंदी में आधुनिक काल में इसका आरंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में प्रकाशित होने वाली

मशहूर साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में 1914 में प्रकाशित पटना के भोजपुरी कवि श्री हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत से माना जाता है। सामान्यतया इसे दलित आंदोलन के प्रभाव से मुक्त माना जाता है, क्योंकि इस कविता में याचना और असहायता का स्वर है। किंतु जिस कारण यह कविता महत्वपूर्ण है वह है इसका ईश्वर की न्यायप्रियता और समदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह उठाना। धर्म सहित सामाजिक परंपराओं और व्यवस्था को दलित समाज के प्रति असंवेदनशील सिद्ध करना। 20वीं शताब्दी को के चौथे दशक में प्रगतिशील आंदोलन ने साहित्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। प्रेमचंद के शब्दों में, जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, हुस्न के मेयार बदलने का आह्वान। प्रेमचंद, निराला, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन आदि महत्वपूर्ण रचनाकारों ने प्रगतिशील साहित्य की इस परिवर्तनकामी चेतना को अपने लेखन का आधार बनाया। प्रगतिशील चिंतन की धारा ने सामाजिक गैर बराबरी और इसके मूल में दलित समाज की उपेक्षा पर प्रहार किया। प्रेमचंद और निराला की कहानियों और उपन्यासों में दलित समाज के लिए गहरी पक्षधरता व्यक्त हुई है। इस धारा ने दलित समाज को विशेष रूप से केंद्रित न भी किया हो, लेकिन सामाजिक गैर बराबरी और शोषण के विरुद्ध मानवता के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद किया। एक तरह से दलित साहित्य के लिए पृष्ठभूमि निर्माण का कार्य किया। दलित साहित्य की अवधारणा में दलित समाज को केंद्रित कर लिखे गए साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। गैर दलित समाज के रचनाकारों ने जो लिखा है वह सहानुभूति का लेखन है। उसमें दलित समाज की मुक्ति की चिंता तो है, किंतु गुलाम बनाने वाली सिद्धांत की और संरचना के विरुद्ध उतना निर्णायक संघर्ष नहीं है जितनी अपेक्षा दलित साहित्य करता है। इसे सहानुभूतिपरक लेखन कहते हैं। दूसरी श्रेणी वह है जिसमें लेखक उसी समाज का जन्मना सदस्य होता है, अपने निजी और सामाजिक जीवन में भी उन्हीं कट अनुभवों से गुजरता रहता है जिसे वह साहित्य में चित्रित करता है। लेकिन इसके साथ ही दलित साहित्य की यह भी शर्त है कि लेखक की चेतना का स्तर वैसा ही होना चाहिए जैसा दलित साहित्य में अपेक्षित है। केवल जन्मना दलित समाज का सदस्य हो जाने मात्र से वह दृष्टि नहीं आ सकती। दलित साहित्य अपनी आधार दृष्टि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की करुणा तथा अहिंसा से ग्रहण करता है। उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था का विरोध एक नए समाज की रचना का मूलाधार है जिसकी बुनियाद लोकतंत्र है। इसलिए उसमें न हिंसा है न नकारात्मक विरोध, यह प्रतिरोध सृजनात्मक है नया समाज बनाने के लिए। दलित साहित्य की मुख्य विधा है आत्मकथा। दलित लेखक अपनी जीवन कथा के माध्यम से अपने समाज और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था के अंतर संबंध को उद्घाटित करता है। इसलिए दलित लेखकों की आत्मकथाओं का साहित्यिक मूल्य तो है ही, उतना ही समाजशास्त्रीय मूल्य भी है। हिंदी दलित साहित्य में दो तरह की आत्मकथाएँ हैं, एक वह जो हिंदी में ही मूल रूप से लिखी गई हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, मोहनदास नैमिष राय की दो खंडों में प्रकाशित अपने अपने पिंजरे, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर तथा तुलसीराम की मुर्दहिया। मुर्दहिया हाल में बहुप्रशंसित आत्मकथा के रूप में स्थापित हुई है। दूसरी श्रेणी वह है जिसमें हिंदी से इतर भाषाओं की, विशेषकर मराठी की आत्मकथाओं का अनुवाद किया गया है। मल्लिका अमर शेख, शांताबाई कांबले, शरण कुमार लिम्बाले, लक्ष्मण गायकवाड़, दया पवार, बेबी कांबले आदि की आत्मकथाएँ इसी श्रेणी में आती हैं। लेकिन अनुवाद होकर भी इन्हें हिंदी में मूल रचनाओं जैसी ही पाठकीय स्वीकृति मिली है। दलित लेखक के लिए आत्मकथा लेखन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की जटिलता का शिकार हुए बिना अपने अनुभव कह लेता है। दूसरी महत्वपूर्ण विधा कहानी है, जिसमें दलित लेखकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हिंदी में प्रेमचंद और निराला जैसे तरक्की पसंद सोच के लेखकों की कई कहानियाँ इस परंपरा की पूर्व पीठिका के रूप में याद की जाती हैं, लेकिन दलित लेखकों ने उनकी सीमा निर्धारित करते हुए उसी विषय को अपने अनुभव से पुनः सृजित किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, अजय नावरिया, अनीता भारती।

0: भारती, रजत रानी मीनू आदि महत्वपूर्ण कहानीकारों ने अपने लेखन से यह विश्वास पैदा किया है कि दलित कथा साहित्य भी अपनी गुणवत्ता में हिंदी कहानी की मुख्यधारा से पीछे नहीं है। सलाम और घुसपैठिए जैसी कहानी या उधर के लोग जैसे उपन्यास इसके उदाहरण हैं। दलित कविता के ऊपर यह आरोप है कि उसमें सपाट बयानी है, वह वक्तव्य की तरह है। दलित कविता कविता के सूक्ष्म तत्वों का दलित कविता में कविता के सूक्ष्म तत्वों का अभाव है, लेकिन दलित कवियों का यह कहना है कि कविता उनके लिए केवल एक कलात्मक रचना नहीं है, बल्कि वह दलित समाज को अपने शोषण के विविध रूपों से परिचित कराते हुए उनके जागरण का उद्बोधन है। ऐसी कविता यदि कलात्मक रचाओं में थोड़ी कमजोर भी हो तो भी अपनी सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के कारण प्रशंसनीय है। दलित वैचारिकी या आलोचना अत्यंत समृद्ध है। दलित लेखकों की ओर से दलित अस्मिता, अपेक्षा जैसी साहित्यिक पत्रिकाएं निकाली जा रही हैं जिनमें समृद्ध वैचारिकी उपलब्ध है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर तुलसीराम, कमल भारती, विमल थोराट जैसे अत्यंत प्रौढ़ आलोचकों का सैद्धांतिक और विचारपरक लेखन आश्वस्त करता है कि दलित आलोचना केवल हिंदी साहित्य की मुख्यधारा का विरोध ही नहीं कर रही है, साथ ही साथ साहित्य और आलोचना के नए प्रतिमानों की खोज और निर्माण भी कर रही है। यही दलित साहित्य और दलित आंदोलन की क्षमता का प्रमाण है।
1: दलित साहित्यकार और प्रतिरोध के स्वर, अभी आपने सुनी इस विषय पर सूर्य नारायण की वार्ता। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: ब्रेकिंग न्यूज, आज के सफर पर पापा हैं ड्राइवर और मैं उनकी नेविगेटर, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सीट बेल्ट ऑन। गाड़ियों का शोर एक दूसरे से आगे निकलने की हो, अभी अभी हमको गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए गुजरी है एक मोटरसाइकिल, 3 पैसेंजर और वो भी बिना हेलमेट। हम चल रहे हैं सीधे आगे क्रॉसिंग पर, हम लेंगे राइट टर्न, स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अरे हमारे सामने से हमारी लेन में क्यों आ रही है ये स्कूल वैन जिसमें है बच्चे जरूरत से ज्यादा, और ड्राइवर का ध्यान है विंडस्क्रीन पर नहीं मोबाइल स्क्रीन पर। अब सामने नजर आ रही है क्रॉसिंग और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है ग्रीन, पर समय है कम तो हमें बढ़ानी होगी अपनी रफ्तार इससे पहले कि सिग्नल हो रेड, पर ये होगा खतरनाक इसलिए हम चलेंगे नॉर्मल स्पीड। लीजिए आगे क्रॉसिंग और अब सिग्नल भी हो गया है रेड, तो अब वक्त है रुकने का, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, तो अब हम लेते हैं ब्रेक।

एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं मंजू नारायण के स्वर में भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मंजू नारायण के स्वर में भजन। अब आपको सुनवाते हैं कबीर दास की रचना, स्वर है मंजू नारायण का।

मंजू नारायण के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं सनम रे फिल्म का गाना, जिसे गाया है मिथुन अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला ने। गीत और संगीत है मिथुन का।

बाजीगर, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें हैं विनोद राठौर और आशा भोसले की। गीत जफर गोरखपुरी का है और संगीत है अनु मलिक का।

बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौर की मिलीजुली आवाज़ों में। गीत जावेद अख्तर का था और इसका संगीत तैयार किया था अनु मलिक और मिथुन ने। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, उसे हमने लिया है फिल्म एक पहेली लीला से। गायिका हैं तुलसी कुमार, गीत के बोल कुमार के हैं और इसकी धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

यारा दिलदारा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना जिसे गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार जतिन ललित।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के गाए यारा दिलदारा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। प्रस्तुत कार्यक्रम विज्ञान जगत, इसमें आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर नावेद जफर रिजवी की वार्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और कंप्यूटर का भविष्य।
1: I have seen Star Trek in my childhood, और उसमें मुझे ऐसे circumstances दिखाई दिए कि पूरी civilization सारी basic amenities के साथ एक time period से दूसरी time period पे shift हो जाती थी। मेरे जैसे सभी बच्चों के ये अरमान हुआ करते थे कि ऐसे lucky chances हमारी भी जिंदगी में हों। इन fantasies जो लोग देखते थे, scientists और researchers ने अपनी जिंदगी में day and night लगा के डिवोट करके इसको रियलिटी में प्रोड्यूस करने का काम किया है। एक ऐसा रेवोल्यूशन एक ऐसा है जहाँ पे ऑल ओवर द इंडिविजुअल्स इन द ग्लोब आर कनेक्टेड वायरलेसली थ्रू अ जस्ट अ नंबर और आईडी और मोबाइल फोन्स। वो एक रेवोल्यूशन है। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, चाहे वो डीएनए हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन बॉडी हो, गैजेट्स हो, वो कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और उनकी करेक्टराइजेशन और एनालिसिस हमें करनी होती है टू हैव अ रियलिस्टिक।

व्यू ऑफ देम। कंप्यूटर सिस्टम जो एक मिक्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, वो डेटा को एज अ इनपुट कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है इस इंफॉर्मेशन को फॉर अ रियल टाइम एप्लीकेशन। हर साल ये कंप्यूटर सिस्टम छोटे से छोटा स्केल डाउन हुआ जा रहा है और इसकी स्पीड बढ़ रही है। व्हेन दिस कंप्यूटर सिस्टम वाज इन्वेंटेड अराउंड वर्ल्ड वॉर 20, तो इसका साइज एक रूम के इतना हुआ करता था और इसकी कंप्यूटेशनल पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती थी। नाउ वी हैव कंप्यूटेशन कि हम बड़े से बड़ा कंप्यूटेशन अपने मोबाइल फोन हैंडहेल्ड डिवाइस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये कंप्यूटेशन, ये मिनिचराइजेशन कहाँ तक पहुँचेगा और कहाँ पे एंड होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इंटेल के को फाउंडर गॉर्डन मॉरे ने अराउंड 1965, और उसने ये प्रिडिक्शन दिया था कि एवरी 18 मंथ से 2 साल के अंदर नंबर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर्स विल बी डबल्ड इन अ सिलिकॉन चिप। दिस इम्फेसाइज दैट फीचर साइज ऑफ अ ट्रांजिस्टर, जो कि एक डिस्टेंस होता है सोर्स और ड्रेन के बीच में, वहाँ पे जहाँ पे चार्जेस फ्लो होते हैं, वो स्केलिंग डाउन और बहुत स्केल डाउन हो रहे हैं। ये प्रिडिक्शन आज भी ट्रू है और बहुत सी इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज अराउंड द ग्लोब इसको उन्होंने एक रोड मैप बना लिया है और अपना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस लॉ को बीट करने में। अराउंड 2015 इवन हमने ये लॉ बीट कर लिया है। प्रेजेंटली द स्मॉलेस्ट फीचर साइज ऑफ अ कन्वेंशनल डिवाइस ट्रांजिस्टर इज 10 नैनोमीटर, और 10 नैनोमीटर कितना है, ये अप्रॉक्सीमेटली 60,000 टाइम्स स्मॉलर देन द विथ ऑफ अ ह्यूमन हेयर है। थिंक दैट वी एज अ इंडिविजुअल कैरीज ट्रिलियंस ऑफ सच ट्रांजिस्टर्स ऑल ओवर द ग्लोब। कितने स्केल ऑफ द ट्रांजिस्टर्स हम कैरी कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिडिक्शन एक टाइम ऐसा भी आएगा, और जो ये प्रिडिक्शन अराउंड 2020-2024 का है, कि फीचर साइज हमारी इतनी छोटी हो जाएगी कि वो जो है एक साइज ऑफ द एटम के बारे के इतनी होगी। और ये प्रिडिक्शन हमें बताता है रोल ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, और यहाँ से हमारा रोल ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग स्टार्ट होगा। मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हमारे, जिनके अंदर माइक्रोचिप्स हैं इनसाइड देम, जो बाइनरी कोड्स के थ्रू वर्क करते हैं टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ट्रांजिस्टर फंक्शंस आर लाइक स्विच, एक रिप्रेजेंट करता है चार्ज, जीरो रिप्रेजेंट करता है जीरो चार्ज को। प्रोसेस ऑफ दिस जीरो एंड वन आर डन थ्रू लॉजिकल फंक्शन। स्टैंडर्ड कंप्यूटर डू कंप्यूटेशन थ्रू बाइनरी कोड, वन ऑपरेशन एट अ टाइम। सपोज वी हैव 2-बिट एंड ऑपरेशन परफॉर्म, देर आर 4 पॉसिबल सोल्यूशन विद दिस कंप्यूटेशन ऑप्टेन, और देर आर 4 स्टेट्स वी कैन ऑप्टेन थ्रू बिट्स। बट इन क्वांटम कंप्यूटिंग एक इंडिविजुअल एटम कैन बी सीन इन डिफरेंट स्टेट्स डिपेंड ऑन डिफरेंट लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यानी हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर बाइनरी कोड के थ्रू अपने ऑपरेशंस करता है जीरो और वन में। अगर हम 2-बिट एंड ऑपरेशन को ले रहे हैं तो इसमें 4 पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे जो एक एट अ टाइम चलेगा। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करें तो वो एटम्स को लुकअप करता है इन टर्म्स ऑफ मैनी स्टेट्स, और वो स्टेट्स जो मल्टीपल स्टेट होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं एज अ सुपर पोजिशन, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूब बिट्स। क्वांटम कंप्यूटर एक्सपोनेंशियली फास्टर है मॉडर्न कंप्यूटर से। द इंफॉर्मेशन यहाँ पे जीरो वन और सुपर पोजिशन ऑफ जीरो और वन में होती है, ये क्यू बिट्स कहलाती हैं, क्वांटम बिट्स या क्यू बिट्स। एक मैं आपको एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि अगर मैं इलाहाबाद से नई दिल्ली ट्रेवल कर रहा हूँ, तो अगर प्रेजेंट डे कंप्यूटर हम लेते हैं तो वो सारी रोड को एक बाई एक एनालाइज करेगा शॉर्टेस्ट पाथ को देने में। लेकिन अगर हमारा क्यू बिट्स के थ्रू, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू इस शॉर्टेस्ट रूट को एनालाइज करूं, तो वो सारे रोड्स को एक साथ एनालाइज करके एक शॉर्टेस्ट रूट दे देगा। तो कंप्यूटेशनल में हमें जो है बहुत ही प्रिसाइज स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड का अनुभव होगा। एक और मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो हैं एक जो ए, एक अपना टेलीफोन डायरेक्टरी से हम एक नंबर को चूज़ करें, तो अगर हम मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के थ्रू, कंप्यूटेशनल के थ्रू चूज करें, तो वो पहले पेज से एंट्री को कंप्यूट करेगा टिल लास्ट पेज, और जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो वो मुझे रिजल्ट दे देगा। इट कैन बी डन मे बी इन आवर, इट कैन बी डन इन मे बी इन सेक इन मिनट्स। लेकिन अगर हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू इसकी एनालिसिस करेंगे तो इट विल गिव मी रिजल्ट्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। क्वांटम कंप्यूटर इट्स विल गिव मी ऑप्टिमाइज सोल्यूशन इन द एक्सपोनेंशियल स्केल। इसकी द स्पीड ऑफ द

0: कंप्यूटेशन इंक्रीज मैसिवली थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग. अब बात होती है सिमुलेशंस की. सिमुलेशन कैन बी डन इन द प्रेजेंट डेज कंप्यूटर. देर आर मेनी सिचुएशंस इन विच सिमुलेशन कैन नॉट बी डन, लाइक एनालिसिस ऑफ द बैक्टीरिया, एनालिसिस ऑफ द वायरस, बट दिस कैन बी डन बाय थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग वेरी इजिली. सपोज हम एक और एग्जाम्पल साइट करते हैं कि वी वॉन्ट टू फुल्ली एनालाइज अ वायरस. वायरस कंपोज होता है एटम्स के थ्रू. इसमें हमें बहुत सी चीज़ों की एनालिसिस रिक्वायर्ड है, लाइक इंटरनल एनर्जीज, इंट्रैक्शन फोर्सेस, टेम्परेचर कैपेबिलिटीज, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसको फुल्ली अंडरस्टैंड करने के लिए. ये आज के प्रेजेंट टाइम कंप्यूटर से इसकी एनालिसिस बहुत कॉम्प्लेक्स है. इट कैन टेक इवन ईयर्स टू कंप्यूट दैट. और मॉडर्न टाइम कंप्यूटर्स इसको बहुत ही ईजिली और बहुत ही माइन्यूटली इन फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स और आवर्स इसकी इवेल्युएशन कर सकता है. दीज कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व मॉलिक्यूल सिमुलेशन कैन बी डन बाय टुडेज कन्वेंशनल बाय ट्रायल एंड एरर मेथड्स. तीन चैलेंजेस हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में. दैट वी शुड हैव अ क्यूबिट. दीज क्यूबिट हैज़ टू बी स्टोर्ड. We have to preserve this qubit and then we have to have interconnection of the qubit for the computational factors. Qubits ko store kiya jata hai a cold atmosphere mein. Around the requirement of the temperature is around 273 degree centigrade. और इसको फिर जो है एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है जिसमें इनकोडिंग की जाती है. आज के प्रेजेंट सिनेरियो में 4 क्यूबिट 8 क्यूबिट प्रोसेसर डेवलप हो गए हैं जिनकी कैपेबिलिटी O2 और H2 मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने से ज़्यादा नहीं है. हमारे बहुत सी हेल्थ हिजार्ड्स, बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होगी हो जाएंगी अगर क्वांटम कंप्यूटेशन कैन बी इन एग्जिस्टेंस. इंडिविजुअल बॉडी मॉलिक्यूल कैन बी मॉनिटर. पर्सन स्पेसिफिक ड्रग्स कैन बी इवेल्युएटेड. एनी वायरस एंड बैक्टीरिया कैन बी मॉनिटर्ड. वी कैन लिव मोर हेल्दी लाइफ इफ वी कम इनटू फुल्ली एग्जिस्टेंस ऑफ दी क्वांटम कंप्यूटिंग. कोई भी केमिस्ट्री, कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन कैन बी फुल्ली करेक्टराइज थ्रू दैट, विच इज नॉट पॉसिबल इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो. सम हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग इज दैट इन 1981 IBM की एक कॉन्फ्रेंस में फिजिसिस्ट रिचर्ड फ्राइमैन ने ये कहा था कि देर इज अ नीड कम दैट वी शुड बिल्ड अ क्वांटम कंप्यूटर. 1984 वी हैव इनकाउंटर्ड एंड सी द फर्स्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल डेवलप्ड. In 2005, researchers at University of Michigan, they built first semiconductor ion chip. In 2009, researchers at Yale University created first quantum processor, 2-bit qubit superconducting chip. 2010 में digital combinational circuits based on the qubit develop हो गए. In September 2011, researchers ने factorize किया 143 using 4 qubit systems. September 2012 में first memory building block analyze हुआ, जिससे ये emphasize हुआ कि the time has come, in next 5-10 years we will have computers which will work through quantum computing. November 2012 D-Wave पहली कंपनी encounter हुई जिसने ये कहा कि जिसने अपने आप को क्वांटम कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड लॉन्च किया. 2013 में गूगल ने फर्स्ट क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब लॉन्च की. 2016 give a way towards IBM. They started allowing computing, quantum computing through cloud to the public. In March 2007, see a revolution that a company in US, IBM, they encountered and see they have launched IBM Q and they said that they will come to market in 1 year or two. In July 2017, 51 qubit simulator announced hua by some US scientist. Quantum computing agar come into existence hua, तो हमारे माइक्रो सिस्टम जो ट्रांजिस्टर बेस्ड सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा. वैसे मेरी पूरी रिसर्च CMOS टेक्नोलॉजी, MEMS टेक्नोलॉजी, RF CMOS टेक्नोलॉजी के थ्रू है. वो हाउ दिस टेक्नोलॉजी विल वर्क, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड विल हैव हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो जिसकी कंप्यूटेशन विल बी इनकाउंटर्ड थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग एंड द बेस स्टेशन विल बी एट सम सेंटर्स विच विल बी इनेबल्ड थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग. सो ये रेवोल्यूशन है जो हम इसका प्रेजेंस बहुत जल्दी देखने वाले हैं.
1: क्वांटम कंप्यूटिंग और कंप्यूटर का भविष्य आपने सुनी इस विषय पर डॉक्टर नावेद जफर रिजवी की बात।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: विजयलक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त और विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। उड़ीसा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डिकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग

0: योग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
2: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
1: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ

0: संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
1: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रासायनिक क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों व नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

0: आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारतीय टीम सातवें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Peking for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. The Indian Ambassador to Russia, Vinay Kumar, and Joint Secretary

0: Rise in water level. The IMD has forecast further heavy to very heavy rainfall in parts of Odisha, keeping the flood threat alive. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Amid the rising water level of Ganga in several districts of Bihar, the West Bengal government has opened all the gates of the Farakka Barrage following a request from Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary. This is expected to help improve the flood situation in Bihar. In men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal powered India to a hefty 503 for 9 declared in their first innings against host Sri Lanka on a rain-disrupted second day of the Colombo Test. In reply, Sri Lanka lost two early wickets at just 8 runs when stumps were drawn today. Prasidhi Krishna and Manav Suthar scalped early wickets. For visitors, Dhruv Jurel produced a flawless display of risk-free batting to score unbeaten 115. Devdutt Padikkal had provided the foundation with a commanding 117 yesterday. And in hockey, the Indian men's team crashed out of the semi-final race of the FIH World Cup after losing to Argentina 3-5 in a second-round pool match at Amstelveen. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. UPI, which was launched on 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The US-Canada trade war has escalated sharply, with US President Donald Trump today announcing that tariffs on Canadian cars, trucks, automotive parts and steel imports will be raised to 50% from January 2027. In a social media post, Mr. Trump accused Canada of imposing high tariffs on American farmers and agricultural products. The announcement came after trade negotiations between Washington and Ottawa broke down, with Canadian Prime Minister Mark Carney describing US's last-minute proposed terms as unfair and uneconomic. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and Russian President Vladimir Putin discuss ways to strengthen India-Russia ties. President Putin offers to increase fertilizer supplies. National Security Advisor Ajit Doval arrives in Beijing for 25th India-China boundary talks. India calls for diversified and adequate international financing to support land restoration and build drought resilience. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh tomorrow. Incessant rain triggers waterlogging and rising river levels in Odisha. And in Colombo cricket test, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal power India to 503 against host Sri Lanka. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया। सदर पुतिन ने भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने जमीन की बहाली और कैद साली के तई मजाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनवे और खातिर खाब बैन अलावामी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में लगातार बारिश की वजह से कई मकाम पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज क्रेमलिन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मीटिंग में दोतरफा तिजारत, इकतसादी तआवुन और आने वाले आला सतही समिट्स पर तवज्जो मरकूज की गई। रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी ईआरएस मयंक सिंह भी वफद में शामिल थे। मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने बिलखसूस इकतसादी तआवुन, तिजारत और तवानाई के शोबे में भारत और रूस के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात और वजीर आजम का जाती पैगाम जनाब पुतिन तक पहुंचाया। डॉक्टर जयशंकर ने

0: ओडिशा में शदीद मानसून की सूरत हाल के जेर असर मुसलसल बारिश के सबब कई जिलों में पानी भर गया है। पानी की सतह में इजाफा होने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। खासतौर पर जुनूबी और शुमाली ओडिशा में सूरत हाल तशवीशनाक है, जहाँ पानी की सतह बढ़ने और मिट्टी के तोदे खिसकने से आम जिंदगी मुतासर हुई है और कनेक्टिविटी पर बुरा असर पड़ा है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ओडिशा के कोरापुट में पानी भर गया है, मकानात को नुकसान पहुंचा है और दरियाओं और नहरों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। इंद्रावती और भस्किल दरियाओं में पानी की सतह बढ़ रही है। नवरंगपुर के दरिया के किनारे वाले गांवों में बड़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। केवंजर में कौमी शाहरा नंबर 520 पर बाराबंका घाट पर मिट्टी के तोदे खिसकने से सड़क राबता मुतासिर हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई मकामात पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और सैलाब के खतरे का अलर्ट बरकरार रखा है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाज की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ईरान ने खबरदार किया है कि आज रात ऐलान की जाने वाली मुमकिन पाबंदियों से खित्ते में अमन नहीं आएगा। साथ ही ईरान ने किसी भी इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब देने का इंतबाह दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान तौसीई अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ सख्त रद्दअमल जाहिर करेगा, जिनमें वाशिंगटन के साथ तआवुन करने वाले ममालिक को निशाना बनाने वाले इकदाम भी शामिल हैं। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी इश्तियाल अंगेजी के सख्त नतायज भुगतने होंगे और कहा कि ईरान के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे पर मुजाकरात पर तातुल के हफ्तों बाद ईरान की जानिब से ये इंतबाह दिया गया। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया से नौजवान नस्ल को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने की तजवीज पेश की है। क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने बारिश से मुतासर मैच में 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन बना लिए हैं। इससे कबल भारत ने पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन पर डिक्लेयर कर दी थी। भारत की जानिब से ध्रुव जुरेल शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 115 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने भारत को खाद की सप्लाई में इजाफा करने की पेशकश की। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल 25वें भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए हैं। भारत ने जमीन की बहाली और कैद साली के तई मजाहमत पैदा करने में मदद के लिए मुतनवे और खातिर खा बैन अवी फाइनेंसिंग की अपील की है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल शरीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से कई मकाम पर पानी भर गया है और नदियों की सतह आब में इजाफा हो रहा है। और कोलम्बो क्रिकेट टेस्ट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 503 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कहकशा। श्रोताओं, कहते हैं कुछ रिश्ते वक्त के साथ भले ही दूर हो जाएं, लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं। मोहब्बत का वो दौर, वो मुलाकातें, वो वादे और वो बीते हुए लम्हे जब याद आते हैं तो दिल फिर उसी जमाने में लौट जाता है। ऐसे ही खूबसूरत यादों और गुजरे हुए इश्क की दास्तान को आवाज देती है कार्यक्रम की ये गजल, जिसे गाया है रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने। आइए सुनते हैं।

मोहब्बत जब दिल को छूती है तो एहसासों को एक बेहद खूबसूरत जुबान मिल जाती है। कभी ये एहसास किसी की याद बनकर सामने आते हैं तो कभी किसी की आवाज़ में ढलकर दिल को सुकून देते हैं। अब पेशे खिदमत है एक ऐसी ही सुंदर और कोमल एहसासों से भरी गज़ल, जिसमें मोहब्बत की नज़ाकत भी है और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली मिठास भी है। तो आइए कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर चलते हैं और सुनते हैं मोहब्बत के इन्हीं नरमो नाजुक एहसासों को, जिसे अपनी पुरकश आवाज़ से सजाया है रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने।

सावन की फुहारें जब बरसती हैं तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, दिल के मौसम भी बदल जाते हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू, भीगी हुई शाम और किसी अपने की याद सब मिलकर एक खूबसूरत एहसास बन जाते हैं। और श्रोताओं, जब यही एहसास गजल के अल्फाज में ढल जाए तो सावन की दो बूंदें भी मोहब्बत की पूरी कहानी कह जाती हैं। आइए सावन की इसी नर्म फुहार और दिल में उठती यादों के साथ सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गजल, जिसे गाया है रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर ने।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, बस उन्हें महसूस किया जा सकता है। मोहब्बत की नरमी, दिल की खामोशी और यादों की हल्की सी आहट, इन्हीं एहसासों से बनती है एक खूबसूरत गज़ल। अब जो गज़ल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके अल्फाज में भी एक नर्म सी रवानी है, एक मीठी सी कसक है और मोहब्बत की दिलकश खुशबू भी है।

रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम समाप्त करने के लिए मुझे यानी अंशुमान को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं जूली फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राजेश रोशन।

अगर तुम ना होते, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, गीतकार गुलशन बाबरा और संगीतकार आर डी बर्मन।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की गीत रचना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की। फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

दिल्ली का ठग, इस फिल्म में अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले को। गीत शैलेंद्र का था और संगीत रवि का था। अब जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और इसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं कभी कभी फिल्म का गाना, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं साहिर और संगीतकार हैं खयाम।

कभी कभी फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं श्री मधुसूदन भावे का राग कमोद में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में है, बोल हैं हूँ तो जन्म का। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं अति मन भावन। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं श्री लखनलाल भट्ट। तो आइए सुनते हैं श्री मधुसूदन भावे का राग कमोद में ख्याल।

अभी आप सुन रहे थे श्री मधुसूदन भावे का राग कामोद में ख्याल गायन। तबले पर आपके साथ संगत की थी श्री लखनलाल भट्ट ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
3: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
2: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: We are a young country.
5: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की

0: 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: The External Affairs Minister conveyed to Mr. Putin that Prime Minister Modi looks forward to meeting him at the SCO summit and to welcoming him to India for the BRICS summit. Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representatives talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and foreign minister Wang Yi scheduled tomorrow. Announcing the special representatives talks at a media briefing today, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jia said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. India has stressed the need for diversified, adequate, predictable and sustained international financing to support land restoration and strengthen resilience to drought. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav said this in Ulaanbaatar, Mongolia today. He was addressing the ministerial dialogue on innovation.